0: नमः नमः नमः नैऋत्यै वृदं लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमः नमः दुर्गाय दुर्गापाराय साराय सर्वकारिण्यै खत्यै तथैव कृष्णायै धूम्राय सततं नमः अति सौम्याति रुद्रायै नतस्तस्यै नमः नमः नमो जगत प्रतिष्ठायै दैव्यै कृत्यै नमः नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुवायेति शब्दितः नमस्तस्यै नमः नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनैत्याभिधीयते नमस्तस्यै नमः नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै नमो नमः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै
1: অমৃতবাণী অনুষ্ঠানে শুনলেন শ্রী শ্রী চণ্ডী থেকে পাঠ আকাশবাণী বিলোনিয়া। শুরু হচ্ছে ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠান সুরাঞ্জলি। অনুষ্ঠানে আজ শুনুন শিল্পী অমৃত সিং অরোরার কণ্ঠে ভক্তিমূলক গান।

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुराजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
3: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी हैव अराइव्ड एट द आइकॉनिक रेड रोड एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी लीडिंग द नेशन टुडे एंड ही विल personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging. And we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
1: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए। यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।
3: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष।
1: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
4: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके

0: सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
1: माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने अभी सभी का यहां पर स्वागत किया और साथ ही आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की है उनके बारे में बताया। हम आपको बताएं कि माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री आरएन रवि, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री जी स्वयं आज के दिन के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए परिधान में इस समय है। योग को परिलक्षित करती हुई टी शर्ट्स हैं और ही पतलून पहनी है और जो भी योगाभ्यर्थी यहां पर बैठे हैं, योग साधक यहां पर बैठे हैं रंग बिरंगे मैट्स पर, वो बेहद उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उल्लास है लेकिन साथ ही अनुशासन भी है।
2: यस एंड एवरी एंथुजियास्ट हियर एंड नाउ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी।
3: वंदे समवेत सुनागरिक भद्रमंडली, আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং যার হাত ধরে সিটি অব জয় এই কল্লোলনী তিলোত্তমা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে যোগ কামস টু হোম, যোগ বঙ্গে ফিরে এলো, সেই মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজিকে 11 কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হৃদয় থেকে স্বাগত, অভিনন্দন, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম নিবেদন করছি। মহামহিম রাজ্যপাল মাননীয় আরএন রবিজি রয়েছেন, ভারত সরকারের মাননীয় স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতাপ রাও যাদবজি রয়েছেন এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, মিডিয়ার বন্ধুরা এবং যোগপ্রেমী জনগণ রয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটু পরেই একটি সুবিশাল বৃহৎ ঐতিহাসিক কার্যক্রম হতে চলেছে। ইতিমধ্যে এই কার্যক্রমের আজকে যে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এতদিন এর সঙ্গে রাজ্য সরকার বা সরকার

इस जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में

बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं योग मानव जीवन के जीवन का चेतना के साथ ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मीन्स दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर एनर्जेटिक एट 50 देन वी वेर एट 30। Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm

0: stress-free life and keep and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं, तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta, on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister, who will lead in the day's yoga आसनास सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जनसमूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या न हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है, जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन हैं वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं, बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
2: जी, और इस समय यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहां पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं। प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते

0: करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
1: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था नहीं आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा।
0: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं,
1: हम सब
0: और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच
2: And the Honorable Prime Minister has just arrived and he will be going to the designated area and he has just arrived there and he will be performing the asanas from here and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
0: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की। विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूंगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं।
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है
0: जी।
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं
0: जी।
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि सारी जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है
0: जी। यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है। ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
3: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से
0: जी। और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
2: Guruji, Munish Naji, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
4: Yes, actually, asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रीवासन है इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है। मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहां से शुरू होती है और ये बहुत ही बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो
0: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है।

0: है अध्यात्म में?
1: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस जानता नहीं है, है ना। अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है, उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं, इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है, है ना। जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है, इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं, अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना, हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर उसका प्रेजेंस हमारे टोटालिटी पर रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
0: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं?
2: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
0: जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है, अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं?
2: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चलाए जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है।
0: जी,
2: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं। वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि।
0: जी, मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
1: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
0: जी,
1: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापिस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे। तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी

0: की तरफ जुड़ जाता है। आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है
1: जी। yes, and... और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है, लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है। और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
2: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं जी। एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन
1: जी।
3: यस, एंड एज यू वर मेंशनिंग नीलम दैट टुडे इज द International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhams Yoganand set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone, is indeed a gift for humanity by India to the world.
1: जी, यहाँ पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्धचक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को। हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है, जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
2: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
1: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ, लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
2: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
1: जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नजदीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है। और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नजदीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन

0: में सभी योग साधक.
1: And we can also see Neelam and the Honorable Prime Minister is going to many enthusiasts and volunteers who have come here and he is interacting with them and he is just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
0: Ji, bilkul. Aur ye jo aasan hai, इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है. वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं. लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन हैं और यहां हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए. और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए. अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए. और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं.
2: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है. और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है. साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है.
0: जी. और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है. माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में यहां पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य. कौशिक जी.
1: यस, एब्सोल्युटली. एंड एज वी मेंशनड अर्लियर आल्सो, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
0: जी, और अब यहां अभ्यास किया जा रहा है शशकासन का. खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशकासन करते हैं और यहां पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशकासन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है. और अब यहां पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए. उत्तान मंडुकासन, प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं.
2: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन. शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं. उसके जस्ट बाद जो काउंटर पॉस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन, ये स्पेशली लेडीज के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है. साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम कर

0: है, साथ में मन को भी शांत करता है और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये।
1: जी, और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है। तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है।
2: And now I think the enthusiasts are performing Vakrasan.
1: So जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा। तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी
0: बिल्कुल सही है कि हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये मोड़कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन।
1: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है आसन, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
0: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है
1: जी। और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और परखते हुए यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
2: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द आसन,
1: उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं
2: परफेक्ट मैनर। एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स।
0: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप जब हम जनरली पीठ के बल लेटते हैं, इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है। और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं, और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं, टोज बाहर की तरफ है, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है
1: जी।
0: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये
1: जी। और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है, हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है। तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चलें। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं, और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहां पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा,
0: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे, ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है, और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है, स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है
1: जी।
0: ये कहा जाए कि ये पूरे पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी ये आसन बेनिफिशियल कहा जाता है।

0: सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं।
1: जी गुरु मुनेश सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रहे हैं। आपका क्या विचार है, क्या योग को हमारे स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
2: जरूर जरूर। एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्सियसनेस से ही, जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं। और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूं कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही
1: जी
2: दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता
1: जी
2: हूं मैं। बहुत ही सुंदर,
1: जी
2: बहुत ही
1: और यहाँ पर हम
2: सुंदर।
1: अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना। और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन, इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी।
0: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम,
1: जी
0: बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है।
1: जी
0: और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से। और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन।
1: जी सेतु बंधासन। और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात ये भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान सी कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्धहल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है, और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके। अर्धहल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर, और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
0: पवन मुक्त आसन जो है, आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये,
1: जी
0: और पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्त आसन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु
1: जी
0: विकार से संबंधित होते हैं। तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन
1: जी
0: सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है।
1: जी गुरु मुनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
2: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध है।
1: जी,
2: हमारी चित्त की वृत्तियां अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं, तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आपकी वृत्तियां ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें। इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है, हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग और ये सारी चीजें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाए, ये बहुत जरूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की जिंदगी जिया जाए, है ना। योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त की कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
3: डॉक्टर प्रतिमा, नाउ आई थिंक वी आर सीइंग द कपालभाति, सो यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट।
0: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कपालभाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाति मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा, उसको जो धोकनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन कपालभाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और योग एज सच, जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपालभाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहां मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, गारंटी फॉर हेल्थ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरैक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
1: जी, और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं, और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में, सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा?
0: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन की क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयाम मीन्स लॉन्ग करना, लंबा करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामीन युक्तिन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगिन सर्व रोग समुद्भव। मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है, लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भव, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है, ये भी कहा गया है युक्तम।

0: युक्तम त्यजेद वायु युक्तम युक्तम च पूरयेद, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं
1: जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के, किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
0: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतल प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है वात सॉरी पित्त जो है हमारा, उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही।
1: जी, जठराग्नि को पूरी तरह से व्यवस्थित कर देता है जी। और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है।
0: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद। क्यों? क्योंकि ये हमिंग बी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षणमुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है। डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये
1: जी।
0: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
1: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज हैं, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी जी। भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें,
0: और बाहर कनेक्शन कट भी करना होता है ताकि हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है
1: जी,
0: तो हम अपने आप से जुड़ पाए।
1: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं, अपने भीतर हम जाते हैं जी।
2: नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द आसनास, दैट इज ध्यान और मेडिटेशन, विच इज अ टाइम फॉर आर सेल्फ असेसमेंट एंड becoming one with the universe. Dr. Pratima,
0: meditation is not just meditation, it is medication of body as well as mind.
1: जी,
0: क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है
1: जी। और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
3: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहां जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा है आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है, और कई लोग ध्यान की सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है। सारी अपॉर्चुनिटी इंफॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित हैं, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है, और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। सारी चीजें, मेरी खुद की लाइफ बताऊं कि मेरी स्पाइन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा। मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा।

0: और विद इन 3 मंथ्स मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ध्यान के, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी,
1: जी
0: आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है, और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप है, वही शिव है, वही अनंत है, वही
1: जी
0: चैतन्य है।
1: जी आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान। और यहाँ पर अब प्रार्थना
2: शांति
1: मंत्र का पाठ किया जा रहा है।
2: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों
1: और
2: पर
1: जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है
2: और धीरे
1: इसकी
2: धीरे
1: ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं। और मैं गुरु जी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं और साथ ही हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है, और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूं जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं और आप एक मैग्नेट की तरह हो जाते हैं। आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है। तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई।
3: And the Honorable Prime Minister is now making his way towards the exit of the Red Road, and everyone who were present here and who were led by the Honorable Prime Minister on the occasion of the 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yogasanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi.
1: Ji, jal, thal, nabh, sabhi योग में होंगे। हम जानते हैं कि भारत में तो सूर्योदय जब हो रहा है तो हमने नमस्कार किया है और साथ ही योग अभ्यास किया है। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें जहां जहां भारतीय दूतावास हैं उनकी ओर से विशेष आयोजन होंगे। और अब क्योंकि बहुत सारे देश दुनिया के योग को अपना चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं, और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है। तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाएं बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें।
3: योगा 365, दैट इज व्हाट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड मेंशनड, एंड वी वुड आल्सो लाइक टू इन्फॉर्म our listeners that as the Honorable Prime Minister has mentioned that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace but also yoga, and this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munesh Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform us?

0: फेवरेट जगह पे घर के किसी कोने में आप बैठें और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाएं, और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है, वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी। कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनस्पटल के इसमें चलती चली जाती हैं। आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस, मैं एक विटनेसर हूं जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूं। मैं एक दृष्टा हूं। द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है, आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं, जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है। जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है। फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है। फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और सिर्फ बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास, इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते। ह्यूमन जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं, उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है, इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं, और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो वर्ल्डी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूंगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं, तो ध्यान करें, इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीजें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस एक हो रही है, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है। जो हम है वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है।
1: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हमें बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं, लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है, और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियां यहां पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे, मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
2: यस, एंड एज गुरु मुनेश सिन्हा जी मेंशन्ड, एंड एज यू आल्सो मेंशन्ड नीलम जी, दैट द Today we saw the Honorable Prime Minister lead the nation in performing yogasana at the Red Road, Kolkata. But at the same time also, yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road, there flows the River Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats, yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans also, people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders, the Indian Army personnel.

0: the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our Border Security Force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल थल नभ सभी आज योग में होंगे और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं इन दिनों. माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो है वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं. 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े. माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए. और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है. देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं. हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं. और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनकी जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है. तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है. स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं. आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है. और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है. और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा. मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं. और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे जीवन शैली का हिस्सा है, क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है, सभी की एक निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना. विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा. और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं. आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया. इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग. आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना. मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स. मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से, आप वहां पर सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं. सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूं. नमस्कार.
2: नमस्कार.
3: अभी आप रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे.
4: आकाशवाणी बिलोनिया ये अनुष्ठान अपना सुनते 103.7 मेगाहर्ट्ज से फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रचार तरंगे. श्रोता बंधुरा, কিছুক্ষণের মধ্যে শুনবেন আকাশবাণীর দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সমাচার প্রভাত.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के

0: साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
1: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
5: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर,

0: आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: भारतीय ध्वज वाले तीन टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
3: धन्यवाद फरहत। एनटीए ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट यूजी पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्ध योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा। दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रस, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
1: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनः परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: देश के अलावा विदेशों में भी योग का आयोजन किया गया। अमेरिका में डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए योगाभ्यास का आग्रह किया। इस अवसर पर कल कनाडा के टोरंटो में सरकारी प्रतिनिधियों, राजनयिकों और योगाचार्यों ने ओंटारियो विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। वहीं ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया के नेतृत्व में विशेष योग सत्र हुआ। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित हो रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मॉक ड्रिल का भी अभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इसराइली हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन के भीतर ईरान के साथ अंतिम समझौता न होने पर जलमार्ग पर टोल लगाने की बात कही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। 2 वर्ष में एक बार होने वाला ये महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वृत्तचित्र, लघु कथा, एनिमेशन और एआई फिल्में प्रदर्शित की गई। आज रात एक भव्य समारोह के साथ इसका समापन होगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और ऑन स्पॉट पंजीकरण के लिए कल जिला मुख्यालय जम्मू में 75 डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंजीकरण की सुविधा महाजन हॉल, शालामार और तवी नदी तट जम्मू में उपलब्ध होगी। साधुओं के लिए निर्धारित केंद्र गीता भवन, परेड और श्री राम मंदिर पुरानी मंडी जम्मू है। गैर ईकेवाईसी पंजीकरणों को ईकेवाईसी पंजीकरणों में परिवर्तित करने का कार्य रेलवे स्टेशन जम्मू और यात्री निवास भगवती नगर जम्मू में किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, उड़ीसा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा, कराईकल, केरल और माहे में मंगलवार तक तेज वर्षा हो सकती है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। वहीं बिहार और तेलंगाना में भी आज लू चल सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारतीय का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: अमेरिका में डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए योगाभ्यास करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण किया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन।
1: विकसित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले हैं INS अग्रे, INS दूनागिरी और INS संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।
0: इन पोतों का विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सन्मार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इजरायली हमलों के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन के भीतर ईरान के साथ अंतिम समझौता न होने पर जलमार्ग पर टोल लगाने की बात कही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। 2 वर्ष में एक बार होने वाला यह महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वृत्त चित्र, लघुकथा, एनिमेशन और AI फिल्में प्रदर्शित की गईं। आज रात एक भव्य समारोह के साथ इसका समापन होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा, कराईकल, केरल और माही में भी मंगलवार तक तेज वर्षा हो सकती है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार और तेलंगाना में भी आज लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पोत रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं।
1: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएनएस दुनागिरी, अग्रय और संशोधक का नौसेना में शामिल होना भारत की समुद्री क्षमता के विकास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पड़ाव साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये तीनों पोत अब भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आज हो रही है। ये परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
2: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले तीन टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। अमरीका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इसराइली हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 12 ओवर में 2 विकेट पर 144 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

妈就吃那么，我妈了那么多，还有。

दा हम नो तो ले ले सी मैनी बुली तो खले मुनी बुली खम खम तयंगा सम सब तयंगा इंदा दा नोखला तबरा खाना वना ना करी बुले बावले तोंग तुई तोंग इथानी माया तोंग तुई तोंग इथानी

지금 모든 사람 야심해 부수고 야수고 낭만 뻥고 야신이 말해 아니다 너

ಅನುಗೋಚನ ಕರೋ

0: तिरिमानि नो यासाक दे काहम करंग तोंग दे काहम के साइमाना बगे टोल फ्री नंबर 1097 करंग दे
1: त्रिपुरा एड्स कंट्रोल सोसाइटी शाखाम ते नुकुं हामक्राय नायखुं त्रिपुरा हाफांबाय लुकु हामक्रायनि बागै आवायजाक।

ताकु तब खुक्सों आसु जतिन रखना का जी रसामुं अब सबाई रसाबजाग रसामुं नर साना नांगनाई टू थ्री टू सिक्स टू फाइव थ्री कॉक डुक नंबर मोबाइल यूजर जीरो थ्री एट वन अकूट नंबर नान टापुक दी

0: अवन भागिन सागर दि अरु सामु साबैर सबजागु सामु छाबैर सबजागु सामु
1: कुले समय लाबो न छैटा
0: साब
1: भाइ मालती भाइ दहेन रता
0: आ बखु मालती भाइ आ ताको हेमन्द्र आ तंगदि लगी तेबो कल यासंग नेन तेकानि से कल यासंग नेन दडी फट फट के 2326253 कगडुङ नम्बर मोबाइल युजर 0381 अकुट नम्बर नानी तापुगदि हेलो
2: हेलो
0: लामसगो साबुङ काताखु हेलो हेलो
2: आं लेफुङ के
0: लेफुङगानि साबुङका
2: जितेन तपलमा
0: अ ताखु जितेन आ लामसगो ताखु जितेन नो सागादै अर सामुङ साबैर सबजाग्र सामुङ मालती देवब्रह्मा बाय हेमेन्द्र देवब्रह्मा हाय मा थांदों बेलाय हामबाय आखन गोरोंबान बागिनै ते कैसे कल या साक्षिन लास्ट कल नरुजाथन साइम ते कैसे कल या संग 2326253 कॉकडुंग नंबर मोबाइल यूजर 0381 और कुछ नंबर है ना तबुने कमंग ताकू ते बुकुक सो अंगन साइड से ना शॉइंग गांग गांग के अब मालती देवब्रह्मा ते हेमंत्र देवब्रह्मा भाई रे सब जागर सामुनो दुग्राई नी बुकुक सो नमला अंग सामनी কাশা জাগন থিতিকে তঙ্গি নে সামনে নে পুইলা সামন থিং ন তমনে ফিয়া বারসুই থাঙ্গি নে আই আবো কুমুন জাগা আঙ্গি থাঙ্গা হাই কে নি নাবো সই তং মানি ন 2326253 কগডুক নাম্বার তে তাংছর সামুং নরং বাগাই খনার নাই তে তাংছর সামুং হাই না হাই ন ন খনার নাই তাবু খরং নে কে রে সাবজাং ন রে সামুং খনা নাই খনা নাই

krana kran sraya kisi sraya kran mothu

等个礼我唱了你一下不可不可把谁陪你都差都给你可能可能给我还不得给

ักเลยบ่สรกกอตมะเลบ่ซบยิงคออคลาสมายะจำโน

妈你路苦，唱起多心你路苦，你我不能路过哇，不能来路苦，什么呗？什么呗？半夜那弄谁的？羊吧，苦拉什么呀？羊吧。

Thank you.

0: tap ane kok tang ozom pakya
1: le khana to khana bin kok tang sung kok tang ritsap mung khana lai ke ba pa anda ka zara phaidi sung tabo kot khama kai sa khana lai nai na sung tabo kot khama sanai sujon sujon nin kot khama ni mung ta mo
2: kumir mai makhrani
1: kumir bai makhrani don ni na kot khama no khana to ka sai khana ra la
2: sal chan ta makhra ma sa तेरे कुंगा नानी जामो फंसा वो दिल्ली ना बहुत जामो चासा चंपन ता वो आज आगा जामो चाने ने बीन बगे कुनो बियाल करे वो आरो दिल्ली ना तंग ठोक जगे चासा वो हंके कुंबीर मासा बाय बहुत हल्से यार खला के हंता
1: आपको क्या मुखरा बाय कुंबीर यार खला के हंता ये बीन उल्लख हंता मुखा
2: हंके बो कुंबीर नो खा खा गए जामुक सासा रखा पो हंके कुंबीर बो बिन बिहिंग नो सासा रखा पो हंता
1: कुंबीर बिन बिहिंग नो जामुक तो तलांग गई सारे क्या हंता
2: हंके आ बिन बिहिंग माखन थोक जा का पो हंके बिन बिहिंग सिंग का पो नंबर ने आशक जामुक को तेरा तू तू फैशा र फैशा ने सिंग का पो हंके सा का पो कुंबीर आनी यार सासा रो छगंता हंके आनी नी यार नी बखा वाकर थोक जंखना ले जामुक सासक थोके बिन बखा माखन थोगु जोंखना बिन बखाना नि किसा सार फाजिन छाकांता
1: आपुरके कुंबिर जे बुरै बिन बु सायनो साका हंता बिन बखा जानम हुजागे
2: ए
1: कलखे
2: बरो कनै मखरानि बखानो जान बागै बुद्धि जावलाय खापो हंके ब बिन बु सायनो दागिरा का हंता के मखरानो ब सायगेपो ओ यार यार नों तिनि सिन नगस मा थांगनाय
1: आपुरके मखरानो बिन यार सायकेता
2: ए हंके मखरा माखन तंगथुजा गपो हंके बो बिनि फिगुंगो गबागै थांलाय गपो हंगा थांते थांते
1: बिनि फिगुंगो कासरे आफरके तैगजारो तलांगै थांका हमता
2: कुंबीर वानसुगु जोंफुरु नंगतिनि यगलियानि वानसुगु तंगमखन बो सायमेनै मखरा बो आतुमसा प्लान फाजा गपो हंके
1: आफरके कुंबीर सामानो मखरा आतुमसा बखाव सोंगन्याका हमता
2: ओ यार यार आनि बखाबो ओ बुफांग बेदेगोसे बेदिके फिजाक्सिबिले थोतसमानले फिगेनान थांगायगेपो
1: आपुरके आ मखरा बुदिकारे ओय बिन बखा बुफांग छाकाव बेरिकाय फैगानि छाकांता गलखे
2: हिंके थांगै छगैके फरक बाहर थांगाबा नंगरा आनि बखाना चानै बुटवासा ताबुक्सारि आनि कथमार रायखा
1: बिलेखना क तखाना बिन कथमा नरा कथमा खानाय ताम बुचिखा सायदामा मायाना बरक यार किसिं खालाय तमान बिसिङोसे कुंबीर हिंगा हिंगे बिन बिहिनि कक बाय बिन बखाना जानम हुजागैसे बिन यार न थकायना नायमानि आपुरके मखरा सायमानै थकगै मालायाता कनरक जतन दल कायसा तंगलाय पुरु यार किसिं तंगलाय पुरो ग माहके केमने के बता फेमलक दि ता केमने के बता तालता सादि सायमांका सिं सिनि लांगमा रगो थिनां रगो सिं काहामंग मांगला सायमाका दा बिलाइखोनो हामबाय बनो बिन कथमा सायखोनार मानि बागै फायदेखो सों ताबो रिसाब मुं खोनाना लायना सोंना ताबो रिसाब खोनानाय खमबोयबाय खमबा

0: STI ungkha thulaima chalaima bisingti sholonai bemar abo ungkha abo haika sha bemar abo bukhu khilam shitilam ni bisingti khorokshani shaknite khorokshani shako sholo
1: abo bacteria virus bayungi mano aboni bagino bemani yakni katwi tongna bagai hik saino kare kebo bai thuya sa ama tongnai kondom thu byawita chasma laide khorokshani sai kebang borok bai thuya sa yake tongke HIV bai HIV bai manjike tongi mannai
0: Tripura AIDS Control Society shakhamte nokhung hamkrai naikhung Tripura hapang bai luko hamkrai ni bagai awaijar
1: नंग साइड मान साग देरिया बुमाने ऐसे भी बिने ऑक्सिंग नहीं बुसानी सागो बस शालो इमानो
0: ऑक्सिंग को तंग फ्रू चेरे आचे फ्रू एबा बुमाने आबुक्ते चामनी बिशिंती ऐसे भी शालो इमानो
1: आवोनी बागे जो तो साग देरिया बुमार रोकनो ऐसे भी दे तंग आम जोगी मान आजा गो
0: तुमुंग ऐसे भी शाको मानजक फनो वानना मुंशा करी शोया प्रीरम के जोरा तंगशनी एआरटी राय दत्तई डॉक्टर बनाए जखे ऑक्सिंग निचराइनो ऐसे भी नियाक निपियोगे मानो
1: त्रिपुरा एज कंट्रोल सोसाइटी साख हमते नुकुंग हमग्रे नाइकुंग त्रिपुरा हापांग बाइलुको हमग्रे निबागे आवाजा

खबंग ताकू ते बुखुच नरखनाई तो एफ एम उज्जैन तो सारसा पर्यत खाई 101.6 मेगा हार्ज एफ एम उज्जैन तो ताबुन बेचब खनादी और सम बेले खाना तो

नरक खुनाका हिंदी तके तुम बिन्नी और सामुंग रसामदायो और सामुंग करंग खोलका सुन्दर निगम अनराधा परवार कमंग ताकुते बकुसं तबुने बेजे बते तंग सर सामुंग नरंग वागे नहीं

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इससे अधिक लाभ मिलते हैं। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री वेंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ए ने 8वें ओवर में 2 विकेट पर 48 रन बना लिए हैं। भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: खुश रहे तो बोल उठेंगे नैना।

शोर मचाए शोर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। और इस गीत की पसंद भेजी हमारे पास रायगढ़, खालापुर रायगढ़ से श्री प्रमोद पाटिल, श्रीमती ज्योति पाटिल, योगेश कुलकर्णी, शर्मिला महात्रे इसी गीत को सुनना चाहते थे। अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव, भीष्म दास मानिकपुरी, ये फरमाइश थी छत्तीसगढ़ से। और तिलहारा महाराष्ट्र से उर्वी बेन, नायाब बेन, प्रीति बेन, मनाली निधि सीजल की ये फरमाइश थी।

ये गीत आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल थे। इस गीत की पसंद भेजी राजस्थान से पूजा खटक, विमला देवी, शंभु दयाल खटक ने, और उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर की ये फरमाइश थी।

0: मशहूर हो जाए।
1: खिलौना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल की तर्ज थी श्रोता। इस गीत की पसंद की कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव, मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंद संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी। इसी गीत को सुनना चाह बीकानेर से कैलाश सोनी, गोविंदा सोनी, उत्तम सोनी और कोटा से शिखा, सीमा, प्रीति, सपना, संध्या मानस और शालू ठाकुर की फरमाइश थी।

जा।

Sokak.

धर्मवीर फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी मुकेश की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरज थी। श्रोताओं इस गीत को पसंद किया भाटापारा से, छत्तीसगढ़ भाटापारा से गनुलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम, छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन और शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार, नसीम परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा, हिना कौसर, सितारा और इस गीत की फरमाइश की जालंधर से रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। विविध भारती का ये कार्यक्रम है मन चाहे गीत।

लता मंगेशकर का गाया फिल्म आंखें का गीत आप सुन रहे थे। साहिल धानवी के बोल थे, रवि का संगीत है श्रोता, और ये और इस गीत को पसंद किया इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू सूर्यकांत राकेश साहू शुभम और सावित्री साहू।

इस गीत को सुनना चाहा शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरसी, नईम इदरसी, नदीम इदरसी ने, और इस गीत के लिए सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान की फरमाइश आई। और इसी गीत को सुनना चाहते थे बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज, विकास सक्सेना और चंचला कश्यप। मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम श्रोताओं अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को और भेजते रहिए पत्र मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए।

0: यह है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवा रहे हैं नाटक मृत्युहीन प्राण का दूसरा और अंतिम भाग। आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का ये हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवादक हैं दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार।
2: जुडू।
3: यस सर।
2: बेंजामिन कुछ बता रहा है? कुछ मुंह खोला उसने?
3: नहीं सर, कुछ नहीं बोलता।
2: व्हाट, 48 घंटे हो गए और अभी तक मुंह से बोल नहीं फूटे? दरअसल बात यह है जुडू कि तुम्हारे शरीर में काले लोगों का खून भी तो कुछ कुछ मौजूद है, तभी उनके मामलों में रहम की मात्रा जरा कुछ बढ़ सी जाती है।
3: क्या क्या कह रहे हैं आप सर?
2: मैं ये कह रहा हूं कि जरा सख्ती के साथ दवा का डोज तो अपने आप मुंह से बोल फूट पड़ेंगे।
3: मिस्टर थॉमसन, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, पर क्या करूं, कमबख्त के मुंह से एक बात तक नहीं निकल रही। बात के बदले कस के सिर्फ खून निकल रहा है।
2: खून के साथ साथ दांतें भी निकालनी होगी। इट्स मस्ट, कमिश्नर साहब का हुक्म है। चलो एक बार मैं खुद ही कोशिश कर देखता हूं।
3: यस सर।

0: हेलो मिस्टर मोलाइज, अपने बारे में नए सिरे से कुछ सोचा आपने?
1: अपने बारे में बाबा, मुझे सोचने की क्या जरूरत है? इसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों ने खुद ही ले रखी है।
0: फिलिस सिलेपी का खून आपने नहीं किया?
1: नहीं।
0: तो फिर किसने, किन लोगों ने किया, इसे तो आप जरूर जानते होंगे।
1: नहीं जानता।
2: हमारे पास ऐसी खबर है कि उस निरीह भले आदमी फिलिप्स को जान से मार डालने के लिए आप लोगों की एक गुप्त मीटिंग हुई थी।
1: एक काले आदमी के लिए अचानक आप लोगों को इतना दर्द क्यों होने लगा है?
0: ये देश की कानून व्यवस्था का प्रश्न है।
1: कानून व्यवस्था या आप लोगों के प्यारे जासूस की मौत हो गई है, इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है आपको मिस्टर थॉमसन।
0: जासूस समझकर उसे बुलेट से छल्ली बना डाला। वाह, बहुत खूब।
1: बुलेट चलाना तो आप लोगों का खानदानी पेशा है, मेरा हाथ कलम से सिर्फ कविताएं लिखता है।
0: कविताएं लिखता है? क्यों? यू ब्लैकी रास्कल, उस साथ को हम जॉन्स पर पैसे लूटते वक्त इसी हाथ में राइफल थी ना? क्यों थी ना?
1: नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं थी। अगर अगर किसी दिन रही तो समझिएगा, उसे ऐसा करने के लिए आप लोगों ने ही मजबूर किया है।
0: हम लोगों ने?
1: हाँ, आप लोगों ने। आप लोग बहुसंख्यक काले लोगों के पैरों में बेड़ियां डालकर सारे देश को लूट रहे हैं। मार खाते खाते दीवारों से लग गई है पीठ हमारी, लेकिन लेकिन जिंदा रहने की खातिर अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो क्या ये अन्याय है?
3: 100% अन्याय है।
0: जुडो, इस तरह काम नहीं चलेगा, इसके लिए खास इंतजाम करने की जरूरत है। देखते हैं कैसे मुंह नहीं खुलता।
3: यस सर।
0: बोलिए, कुछ तो बोलिए मिस्टर मुलेर, नहीं तो जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा। आग की तरह लाल दो सलाखें आपके बदन के कुछ खास हिस्सों पर तबाह कर रखी जाएंगी। कुचला जाएगा उन हिस्सों को सलाखों से। अब आप समझ ही रहे होंगे कि वो नजारा क्या होगा।
1: आप लोग खुद को शिष्ट समझते हैं, शिष्टाचार का दम भरते हैं, लेकिन लेकिन जी, जंगल के पशु भी शर्माते हैं आप लोगों के व्यवहार से।
3: सर, मैं रेडी हूं।
0: ठीक, देन स्टार्ट।
2: कहिए, फिलिप्स का खून किसने किया? बताइए, कब खून किया, कहां किया?
1: नहीं मालूम, नहीं मालूम,
3: नहीं मालूम,
1: नहीं मालूम,
3: नहीं मालूम, नहीं मालूम।
0: बोलिए, बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए ना। तो बेहोश हो गया लगता है, सहन शक्ति बहुत ही कम है। होश मिलाओ इसे, बाद में फिर कोशिश करेंगे।

0: ना ना जिनी, तुम मुझे खाने के लिए जिद ना करो बेटी। कोई भी खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा।
1: जरा सा दूध तो पी लो मौसी।
0: ना ना, इस वक्त कुछ नहीं लूंगी बेटी।
1: तुम बैठो, मैं गरम करके लाती हूँ।
0: जेल में बेंच को शायद खाने को भी नहीं देते हो। अब फिर कौन आ गया? क्या बात है, आप लोग फिर आ गए?
2: सॉरी मिसेस लॉरेंस, आपको थोड़ी सी तकलीफ देने आ गए।
0: आखिर आप लोग चाहते क्या हैं?
2: बस दो एक बातें पूछना चाहते हैं आपसे।
0: उसके पहले मेहरबानी करके बताएंगे कि किस जुर्म में मेरे बच्चे को जेल के सीखचों के अंदर बंद किया गया है?
2: फिलिप सिलेपी की हत्या के जुर्म में।
0: झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मेरे बच्चे ने हत्या नहीं की है। क्यों झूठ मूठ मेरे बेटे को खून के इल्जाम में फंसा रहे हो?
2: हम लोग तो कानून के गुलाम हैं मिसेस मलेस।
0: आप लोगों के कानून तो हमारे जैसे काले लोगों की गर्दन दबोचने के लिए हैं।
2: ओह नो नो नो नो, ये आप लोगों की गलत धारणा है।
0: अच्छा साहब बहादुर, क्या आप लोग कोई ऐसी दवा नहीं दे सकते जिसे बदन पर लगाने से हमारे शरीर के रंग भी सफेद हो जाएं?
2: सुन रहे हो जुडू, मिसेस मोलाइज क्या फरमा रही है?
3: हाँ सर, सुन रहा हूँ। अच्छा मान लीजिए अगर आप लोग सफेद चमड़ी के होते तो क्या करते मिसेस मोलाइज?
0: तो हमारे लिए कांटे वाले तारों से घिरा बांडुस्तान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
3: सर लगता है बेंजामिन ने अपनी माँ को भी तैयार कर पक्का कर दिया है।
2: अरे वो तो करेगा ही जुडू, नहीं तो खून खराबा करके आने के बाद हाथ धोने के लिए पानी कौन देगा?
0: आप लोगों को जो कुछ भी कहना है कह डालिए और मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए, मुझे खुशी होगी।
2: ओह यस यस यस, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपका बेटा बेंजामिन किन लोगों के साथ मिलता जुलता था?
0: बहुत के साथ, उसके बहुत से दोस्त हैं।
2: हाँ, बहुत से दोस्तों को तो हम पहचानते हैं। खास दोस्तों में जैसे समझिए जेने रोयांगा, रॉबिन खाबड़कर, मिस्टर।
0: नहीं, ये सारे नाम मैंने पहले कभी नहीं सुने।
4: मौसी दूध ठंडा हो रहा है, ले आऊं?
0: नहीं, मैं ही आऊंगी थोड़ी देर बाद।
2: ये कौन बोले? किसी युवती की आवाज लगती है।
0: मेरे एक पड़ोसी दोस्त की लड़की है।
2: जरा उसे बुलाइए।
0: क्यों, उसकी क्या जरूरत है?
2: घर में आपके सिवा और तो किसी को देखा नहीं इसके पहले, इसीलिए अब जरा हमें ये भी देखने की जरूरत है कि इस घर में किस किस का आना जाना है।
4: ये लीजिए, मैं आ गई, देखिए।
2: क्या नाम है तुम्हारा?
4: जिनी पैराम्बा।
2: क्या करती हो?
4: कॉलेज में पढ़ती हूँ।
3: सर लगता है इसे कहीं देखा है।
4: कहीं सड़क बाजार या कॉलेज जाते समय देख लिया होगा।
3: ऐसे नहीं, कहीं और देखा है।
2: यस, याद आया, अभी कुछ दिनों पहले एक सुनसान पार्क में तुम्हारे साथ हमारी मतलब हम दोनों के साथ तुम्हारी मुलाकात हुई थी।
3: हाँ वहाँ चुपके चुपके प्रेम करने या किसी से मिलने गई थी। क्यों, गई थी ना?
2: क्वाइट इंटरेस्टिंग अफेयर। अच्छा मिस पैराम्बा, तुम जरूर बेंजामिन को चाहती हो? अच्छा तो फिर उसकी कविताओं को भी जरूर चाहती होंगी?
4: जी हाँ चाहती हूँ, बहुत तेरे चाहते हैं।
2: पर क्या तुम ये जानती हो कि बेंजामिन जिस हाथ से कविताएं लिखता है उसी हाथ से आदमी का खून भी करता है?
4: जी नहीं, मुझे यकीन नहीं है इस बात पर।
2: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे भी यकीन नहीं है, पर कुछ चारा भी तो नहीं है, इसीलिए मुझे जरूरत है तुम्हारी।
4: जी, मेरी?
0: अब इसे बीच में क्यों घसीट रहे हैं अफसर साहब?
2: प्लीज मिसेस मोलाइज, जिनी तुम ये जरूर चाहोगे कि बेंजामिन बेगुनाह साबित होकर फिर तुम्हारे बीच वापस आ जाए?
4: आप कहना क्या चाहते हैं?
2: मैं ये कह रहा हूं, मतलब ये चाहता हूं सिर्फ थोड़ी सी मदद जो तुम्हारे बेंजामिन को तुम्हारे पास ही वापस ला देगी। आओ मेरे साथ आओ।
0: नहीं, वो क्यों जाएगी?
2: ओहो डरने की कोई बात नहीं है।
4: मैं कहां जाऊंगी?
3: मेरे साथ?
0: नहीं,
3: सर मैं ये कह रहा
2: हूँ जिडू फिर वही बात आओ चलो जिनी डरने की कोई बात नहीं है हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ बेंजामिन का रिश्ता किस ढंग का है हाँ देखो ना अब इस बात को उसकी माँ के सामने तो पूछा नहीं जा सकता ना
0: नहीं वो नहीं जाएगी जिनी तुम अंदर जाओ
2: नहीं वो मेरे साथ ही जाएगी
3: सर मैं कह रहा था कि
2: जिडू
3: यस सर
2: समस्ती पकड़ के ले चलो इसे
4: नहीं
2: इट्स माय ऑर्डर
4: मौसी नहीं छोड़ दो मुझे
2: अच्छा चलो

0: लगता है बाहर से मेरा तन, सुलग रहा अंदर से मेरा मन। हर अश्वेत माओ के घर घर में, धरती के कण कण में, अंबर में उमड़ पड़ा लाशों का एक जुलूस, काले ताबूतों का एक जुलूस, रंग भेद के कुत्सित लिए विचार, मिले श्वेत गिद्धों को नए शिकार। माओ के कोमल अंशों को नोच, खून सनी है इनकी पहनी चोंच, इन सफेद गिद्धों के दल छाए, मन की आग ज्वाला सी बन जाए, फैले चारों ओर आग की ज्वाल, अंगारे बन जाए जयमाल। लगातार 2 सालों से चल रहा है शारीरिक उत्पीड़न, और जारी है स्वीकारोक्ति वसूलने की असफल चेष्टाएं, लेकिन
1: क्या सोच रहे हैं मिस्टर मुलेज?
0: कौन? नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं।
1: जरूर कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं। आप
0: ये भी क्या आप लोगों का ऑर्डर है जो कुछ ना कुछ मुझे सोचना ही रहना होगा? नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं मैं। आप लोग जा सकते हैं।
1: किसी के बारे में सोचना क्या आपको अच्छा नहीं लगता मिस्टर मुलाज? मान लीजिए चीनी के बारे में। कितने दिन हो गए चीनी से आपकी मुलाकात नहीं हुई?
0: चीनी?
1: जी हाँ, चीनी आपकी महबूबा, जिसे लेकर ना जाने कितनी कविताएं आपकी कलम से अब तक निकल चुकी हैं।
0: तो अब आप लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन की खोज लेने आए हैं?
1: मिस्टर मुलाज, आज मैंने ये तय किया है कि आपको कोई जबरदस्त सरप्राइज दूं।
0: सरप्राइज मुझे?
1: हाँ। गार्ड, 4 नंबर सेल का दरवाजा खोल दो।

0: जिनी?
1: जिनी को यहाँ क्यों लाए हैं? क्यों लाए हैं जिनी को यहाँ?
2: तू कैसे हो पैच?
1: जिनी, जिनी, मैं जिंदा हूँ जिनी। तुम कैसी हो? माँ कैसी है? अच्छे हैं मैं सब।
2: पैच, ये लोग मुझे पकड़ कर ले आए हैं। पैच,
1: इसे, इसे यहाँ क्यों लाए हैं? कहिए, कहिए क्यों लाए हैं इसे यहाँ?
3: फिलिप स्लेपी का खून किसने किया?
1: नहीं मालूम।
3: आपने नहीं किया, इसका मुझे यकीन है। लेकिन दल में कौन कौन थे
0: ये तो आपको निश्चित रूप से मालूम है। बस
3: उतना ही बता दीजिए।
2: बेंच, बेंच, मुझे नहीं मालूम ये लोग मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं। मुझे डर लग रहा है।
1: जी,
3: कल कोर्ट में फाइनल हियरिंग है, वहां कोर्ट के सामने कहने से भी चलेगा।
2: बेंच, ओ बेंच,
1: जिनी,
2: मुझे बचाओ।
1: जिनी,
2: बेंच,
1: जिनी,
2: बेंच, मुझे तुम बचाओ।
1: मिस्टर थॉमसन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिनी का क्या कसूर है? उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? उसे क्यों लेकर आए हैं बताइए।
3: सिर्फ लेकर ही नहीं आए,
0: अभी तो आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ होने वाला है।
3: बता डालिए, फिलिप्स की हत्या के समय वह कौन कौन थे?
0: कहिए, बोलिए।
1: मिस्टर थॉमसन, मेरे कमजोर पक्ष पर चोट कर आप लोग सोचते हैं कि मैं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों की जो मर्जी वो आप कर सकते हैं। थॉमसन, जितना भी सताना हो मुझे सताइए, पर उसे छोड़ दीजिए।
3: सॉरी मिस्टर मनाइन, आपकी वजह से, सिर्फ आप ही की वजह से
1: मिस्टर थॉमसन,
3: आपकी फूल जैसी जिनी को कीड़ों ने काट खाया।
1: मिस्टर थॉमसन, मिस्टर थॉमसन, थॉमसन।

0: taking as well all other aspects into account, Benjamin Molloy has been proved guilty in the eye of law.
1: दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया सरकार द्वारा गठित सर्वोच्च अदालत ने अश्वेत तरुण कवि बेंजामिन मोलेयेस को जघन्य नरहत्या, राष्ट्रद्रोहिता एवं सरकार विरोधी षड्यंत्रों में लिप्त रहने के अपराध में प्राण दंड से दंडित किया है।

0: मिस्टर मोलेस, मुझे सख्त अफसोस है।
1: कौन? मिस्टर थॉमसन।
0: इस वक्त बीती बातें याद कर आपको पछतावा नहीं हो रहा मिस्टर मोलेस?
1: नहीं, कोई पछतावा नहीं, वजह भी तो नहीं, बल्कि मुझे गर्व है।
0: अब भी वक्त है मिस्टर मोलेस, अपनी राय बदलकर अगर आप सच्चाई बता दें तो।
1: धन्यवाद, आपको और कोई जरूरी बात ना करनी हो तो आप जा सकते हैं।

0: दंडित कवि की मां ने प्रेटोरिया की बोखा सरकार से पुत्र की प्राण भिक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने उस आवेदन को ठुकरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत कवि बेंजामिन मोरेस को दी गई मौत की सजा को माफ कर देने के लिए विश्व के अनेक राष्ट्र नेताओं ने प्रेटोरिया सरकार से निवेदन किया है।
1: वो इंसान नहीं है जी, वो इंसान नहीं है। आवेदन निवेदन किसी का भी कोई मूल्य नहीं है उनके पास, कोई चीज उन्हें नहीं छूती।
2: इतने बड़े झूठ को उन्होंने जबरदस्ती अपनी मनमानी जालसाजियों से सच साबित कर दिया। इस तरह का जुल्म नहीं चल सकता।
1: उनके लिए सच नाम की कोई चीज नहीं है बेटी, ना इंसाफी और झूठ। उनके कानून है, उनके औजार है।
2: ओ बेंच, तुम्हारी कविताएं कब सच होंगी बेंच, कब?

मुझे गर्व है अपने ऊपर, मेरा जीवन गौरव मंडित, जितना जीवन मैंने भोगा मुझे गर्व है उस जीवन पर। मातृभूमि के मस्तक पर लो मैंने अपने क्रुद्ध रक्त से तिलक किया है, बंदी गृह की लौह सलाखा मेरे प्राणों को बंधन में रख सकने में कभी नहीं हो सकती सक्षम। निकल पड़ूंगा मुक्ति राह पर, मुझे मिला था मात्र एक जीवन जो मैंने सौंप दिया है स्वतंत्रता को।

रक्तहीन प्राण। अभी आप इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग सुन रहे थे। आलोक भट्टाचार्य के मूल बंगला नाटक का ये हिंदी अनुवाद था। हिंदी अनुवादक थे दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: इनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपने कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनके सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान, और उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं, जो एक और बहुत ही खास शख्सियत को याद करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं। कार्यक्रम का नाम ही उजाले उनकी यादों के है, तो आज का कार्यक्रम है उजाले सदाशिव अमरापुरकर की यादों के, और ये उजाले बांटने के लिए मौजूद हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। बहुत बहुत स्वागत रीमा जी।
2: धन्यवाद धन्यवाद।
1: पिताजी की यादों के उजाले बांटने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में, विविध भारती के स्टूडियोज में आते हुए जो पहली फीलिंग है वो क्या है?
2: आकाशवाणी या विविध भारती के स्टूडियोज में मैं जब भी आती हूँ तो थोड़ा मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ, बिकॉज हमारी पूरी फैमिली का आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती, इससे बहुत ही करीबी संबंध रहा है। तो मेरी माँ भी रेडियो आर्टिस्ट थी, अलग अलग ड्रामास, एड फिल्म्स में उन्होंने काम किया था ऑल इंडिया रेडियो के लिए। मैं खुद बचपन में मराठी दो शोज कर चुकी हूँ जिसमें मैं वॉइस आर्टिस्ट थी, और सबसे जरूरी बात कि 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है जो उन्होंने आकाशवाणी के साथ की है,
1: परभणी में।
2: परभणी में तो वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था, और वहां पर वो लगभग 2 महीने टिके, तो ये टिके ही कहना सही होगा, बिकॉज उनकी वो पर्सनालिटी नहीं थी कि वो जॉब करे, क्योंकि शादी हो चुकी थी, 2 बच्चियां थी, तो इसलिए पिताजी को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैं कमा रहा हूँ, उन्होंने वो जॉब की थी।
1: ये सोचकर कितना मजेदार लगता है कि वो मराठी में बोलते होंगे कि आकाशवाणी का ये परभणी केंद्र है।
2: या और उनकी आवाज तो वैसे भी उनकी स्ट्रेंथ थी, आज भी है, मतलब आज भी जब भी हम आवाज सुनते हैं तो फैमिली मेंबर्स की तो हमारी आंखें भर आती है। उस वक्त तो उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा थी उस आवाज की, तो उनके बहुत सारे फैंस हो गए थे, और फिर ऐसे हुआ कि एक पॉइंट पे मम्मी को ऐसे लगने लगा कि अरे अभी बहुत ही ज्यादा फैंस हो रहे हैं इनके, विशेषतः लड़कियां, तो ये अगर छोड़ रहे हैं जॉब तो ठीक ही बात है।
1: वाह वाह वाह। ये रेडियो में आना उनका कैसे हुआ था, इसकी कोई कहानी हो तो वो?
2: हाँ, तो उसमें बात ऐसी थी कि जैसे मैंने कहा कि पापा बिल्कुल ही पूरी तरह से वो थिएटर, रंगमंच, नाटक, इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, उनके दिमाग में 2400 घंटे वही चलता था, और माँ की और उनकी जो मुलाकात हुई थी वो भी नाटक के दौरान ही हुई थी। मतलब मजे वाली बात यह है कि वो बचपन से, जैसे हम लोग कहते हैं किंडरगार्टन से, वैसे बचपन से वो एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़े, लेकिन कॉलेज में, क्योंकि माँ बहुत होशियार स्कॉलर, उस जमाने में जो कंसेप्ट थी स्कॉलर की, वैसी स्कॉलर थी, तो इसलिए उसने साइंस लिया हुआ था और पापा ने आर्ट्स लिया था, तो कॉलेज में भी वो एक ही कॉलेज में थे। तो जब थिएटर करना शुरू किया तब उन्हें लगा नहीं नहीं नहीं ये सुनंदा ने करना चाहिए हमारे साथ काम, तो इसलिए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी, और फिर वो थिएटर में मम्मी जो घुस गई तो फिर साइंस वायंस सब पीछे रह गया, थिएटर ही चलता रहा।

0: लकीली पापा के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे अहमदनगर में, जो आज अहिल्या नगर कहा जाता है जिसे। तो उनका ऐसा कुछ नहीं था कि बाबा तू पहले नौकरी कर, पैसे कमा, फिर तेरी शादी करता हूँ। उन्हें पता चला कि ये सुनंदा और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इनकी शादी करा देना सबसे अच्छी बात। आई थिंक पापा 23-24 साल के थे और मम्मी 23 साल की थी। उन दोनों में 6 महीने का ही अंतर है उम्र में। तो तब उनकी शादी हुई, 73 में शादी हुई, और 74 में मेरी सबसे बड़ी बहन जो है उसका जन्म हुआ। मम्मी उस वक्त LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है, वहां पर जॉब करती थी। तो मम्मी ने पापा को ये सहूलियत दे रखी थी कि
1: अपने मन का जियो।
0: हाँ तुम जियो, मैं संभाल लूंगी, मैं कमा रही हूँ, अपने बच्चों को हमें कुछ कम नहीं पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, दादाजी और दादी और चाचा जी ये सब लोग थे, तो फैमिली में वैसे पैसे की उनका ये कहना नहीं था कि तुम घर में पैसे दो, पर उनका ये कहना था कि तुम खुद के लिए कुछ कमाओ। तो और मम्मी वो कर रही थी, तो इसलिए दादाजी का भी था कि चलो ठीक है, अभी अगर तुम्हारी बीवी कमा रही है तो तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तो पहली बेटी हुई 74 में, 76 फरवरी में दूसरी बेटी हुई। तब फिर मम्मी को ऐसे लगने लगा, अरे अभी अपनी दो बच्चियां हो गई, अभी भी ये कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो रीजनल न्यूज़पेपर्स में उस समय एड आती थी। हाँ, तो फिर वो मम्मी ने वो एड देखी, और पापा का ऐसा था, वो पूना मुंबई थिएटर के चक्कर में चक्कर काट रहे थे, अहमदनगर पूना मुंबई इस तरह से उनका चल रहा था। तो उन्होंने मम्मी ने वो एड देखी न्यूज़पेपर में, और मम्मी ने बिना पापा को बताए वहां पे अप्लाई कर दिया।
1: वेरी गुड।
0: हाँ, और फिर जब ऑडिशन थी तब मम्मी ने उन्हें बताया ऐसे ऐसी ऑडिशन है, आपको जाना है और करके आना है। वो समय ऐसा था कि कमाने वाली माँ थी और घर पे दिखाना बहुत जरूरी था कि भाई मेरे मेरी फैमिली बढ़ रही है, मैं भी कमा रहा हूँ उस तरह से। सो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो अब तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ और ऑडिशन देता हूँ। और ऑफ कोर्स उनकी आवाज ऐसी थी कि सिलेक्ट होना ही होना था। तो वो सिलेक्ट हो गए और उन्होंने जॉब करी, 2 महीना उन्होंने जॉब करी वहां पर। और 1.5 महीने बाद उन्होंने मम्मी को खत लिखा कि मैं अगर ये करता रहा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा जिंदगी में। तो फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया, पर उन्होंने वो जॉब इस तरह से करी थी, तो आकाशवाणी ने उन्हें काफी हाथ दिया था उस वक्त जब उन्हें वो जरूरत थी पुश की। एक जो साइकोलॉजिकल पुश हमें लगता है मानसिक रूप से कि हमें अभी मुझे कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूं मैं, उस वक्त जो एक अचीवमेंट की फीलिंग है वो आकाशवाणी ने दी हुई है। और मेरे ख्याल से हमें भी, मतलब विशेषता मेरे बारे में मैं कहूंगी कि जब आप ऐसे घर में पैदा होते हो और बड़े होते हो कि जहां पर सुपर अचीवर्स है आपके आजू बाजू सारे, तब एक होता है कि मुझ में क्या है, शायद मुझ में कुछ नहीं है, ऐसी एक फीलिंग जो घर का सबसे छोटा सदस्य होता है उसमें आ सकती है, आने की आशंका होती है। तब मुझे आकाशवाणी ने हाथ दिया और मुझे ये समझ में आया उस वक्त कि नहीं, मेरे पास मेरी आवाज है और मैं बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कंडक्ट कर सकती हूँ। आई थिंक आकाशवाणी हमारे परिवार के लिए वैसा एक जरिया रहा है कि जिन्होंने हमें, जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं था या जब हम एकदम लो जिसे फेज कहते हैं वैसे इसमें रहे हैं, उस वक्त हाथ दिया है, जिसे मराठी में हम उभारी कहते हैं, उभारी दी है।
1: उबारा है।
0: हाँ, तो आकाशवाणी से हमारा रिलेशनशिप, हमारी फैमिली का इस तरह से
1: कितनी
0: है।
1: सुनहरी यादें आपने शेयर की सदाशिव जी के आकाशवाणी से जुड़ने की। यहां सुनंदा जी का जिक्र आता है और नाटकों का भी जिक्र आता है कि जहां वो उनके रास्ते एक साथ हुए। कोई पॉइंट ऑफ टाइम था जहां ये एहसास हुआ कि उन्हें अब सुनंदा जी के साथ जीवन बिताना है? वो कोई एक मोमेंट था जहां ये हुआ?
0: पापा उनके नाम ही की तरह सदाशिव भोला साम जिसे कहते हैं, वैसी पर्सनालिटी के थे, स्पेशली जब वो कॉलेज में थे तब। तो उनके दिमाग में एक ही पागलपन चढ़ा हुआ था, एक ही भूत सवार था, वो था नाटक, और उन्हें वही करना था। ठीक है, नाटक करते वक्त घंटों तक आप साथ में रिहर्सल्स करते हैं, सब करते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं, तो जो दोस्ती है वो दोस्ती से थोड़ी ज्यादा है, इतना उन्हें शायद समझ में आया होगा। पर उसके ऊपर कुछ करे, उसके ऊपर कुछ एक्ट करे, ये उनकी पर्सनालिटी नहीं थी,
1: पहला कदम उनकी
0: पहला
1: तरफ से नहीं
0: कदम
1: आना था।
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे याद है आज भी, मतलब ये हमारे घर में हमारे बहुत ही आर्ग्यूमेंट का विषय हुआ करता था जब पापा थे तब, कि पहले प्रपोज किसने किया, लेकिन जब अभी मम्मी ने किताब लिखी है उसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि मम्मी ने ही उन्हें एक चिट्ठी लिख के कहा था कि ऐसा ऐसा मेरी फीलिंग्स है और क्या आपको भी यही लगता है, और उन्हें वो चिट्ठी दी थी उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था कि देखो अपने दोस्तों के सामने मत खोलना ये चिट्ठी, घर जाके अकेले में खोलना, बिकॉज पापा ऐसे थे वो हमेशा दोस्तों से घिरे रहते थे, तो वो दोस्तों के सामने खोलेंगे, जोर से पढ़ेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना
1: तमाशा बन
0: डर
1: जाएगी।
0: मम्मी को लग रहा था। तो इस तरह से तो वो पॉइंट था जब मम्मी, क्योंकि मम्मी के घर पे उनके पिताजी की मौत बहुत जल्दी हो चुकी थी जब वो 10-11 साल की थी, तो उस वजह से उनके घर पे वो और उनकी माँ इतने ही थे, उनकी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी, तो अभी इसके लिए भी लड़का देखो ये करो, जब वो शुरू हुआ उनके घर पे जब वो ग्रेजुएशन के आसपास थी, तब उन्होंने कहा अभी ये मेरा ये जो पगला आदमी है उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम में जो है वो प्यार है, उसे ये समझाना अभी जरूरी हो गया है, और फिर उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी। तब फिर उनका आगे जाके इस तरह से हुआ कि फिर मम्मी ने ही थोड़ा थोड़ा, बिकॉज उस वक्त मेरे दादाजी जो थे वो बहुत कर्मठ स्वभाव के थे, तो किसी लड़की का घर पे आना, लड़कियों से दोस्ती, ये सब इम्पॉसिबल था उस समय, और अहमदनगर जैसे छोटे से शहर में। पर लकीली मम्मी के पिताजी और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, तो जब मम्मी घर जाने लगी दादी से, फिर पापा की बुआ भी उन्हीं के साथ रहती थी, उनसे इस तरह से जब बातें होना शुरू हुई, तब उन्हें समझ में आया कि कुछ तो मामला है, और फिर उन्होंने वन फाइन डे मम्मी को बुलाया घर पे और कहा कि देखो तुम्हें ये सब दिख रहा होगा कि इतना बड़ा घर है, ये है वो है, पर ये सब मैं धर्मादाय कर दूंगा, बेटों को कुछ नहीं दूंगा मैं। हाँ, तो अगर तुम ये सोचती हो कि इस वजह से है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तब मम्मी का इतना क्लियर था कि उसने कहा ठीक है मैं जॉब कर रही हूँ, मैं चला लूंगी घर, नो प्रॉब्लम। तो बहुत ही ज्यादा क्लियर इन दोनों के थॉट्स थे, और जैसा मैंने कहा कि पापा को ये शब्दों में पेश करना कि जो हमें हुआ है वो प्यार है, ये पॉसिबल नहीं था जो मम्मी कर पाई, लेकिन जिस वक्त वो कमिटमेंट हो गई उस वक्त वो कंप्लीट कमिटमेंट हुई।
1: वाह वाह।
0: तो वो हालांकि वो उन्होंने शब्दों में नहीं कहा होगा, पर वो उनके एंड तक, मतलब ये उन्हें प्यार हुआ जब वो 21 साल के थे, 64 के होने तक वो प्यार बिल्कुल वैसा ही रहा, और ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है, और उन दोनों ने वही सीख हमें भी दी है कि अगर कमिटमेंट कर रहे हो तो पूरी तरह से करो, फिर वो अपने काम की तरफ हो या इंसानों की तरफ हो।
1: क्या प्यारी
0: तो
1: बात है। यहाँ एक बहुत क्यूट बात सामने आई है और वो है एक प्रेम कहानी जो चिट्ठी के जरिए आगे बढ़ती है। हम जिस समय और समाज में हैं वहां ये यकीन करना अब जरा मुश्किल है कि चिट्ठियों के जरिए भी प्यार का इजहार हो सकता है और वो चिट्ठी बचाकर जीवन भर रखी जा सकती है। मुझे लगता है ये जगह है गाने की और वो गाना बहुत ही मुफीद है जो चिट्ठी के जरिए प्यार के इजहार की बात करता है। फिल्म है संगम।

0: एक इंटरेस्टिंग बात जो पीछे छूट गई है उसका सिरा पकड़ के आगे बढ़ते हैं। मम्मी की एक किताब है पिताजी के नाम पर, और आपने कहा कि उसमें ये जिक्र आता है कि उन्होंने सबसे पहले इजहार किया, उस किताब का नाम बताइए और वो नाम क्यों रखा गया है, इसकी कहानी बताइए।
1: हाँ ओके तो वो किताब अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है खुलभर दुधाची कहानी। खुलभर माने छोटी सी कटोरी में जितना दूध बैठता है उसको खुलभर कहते हैं, खुल मतलब उतना सा। खुलभर दुधाची कहानी, सो उतने से दूध की ये कहानी है।
0: हाँ, सवाल आता है कि ये आखिर क्या है,
1: क्या है, राइट। सो श्रावण महीना जब होता था तो अहमदनगर में या आज भी छोटे गांव में होता होगा, हर मंगलवार को और शुक्रवार को उपवास होता है, पूजा होती है, कथा कथन होता है। तो उस वक्त जो फोक टेल्स जिसे हम कहते हैं वैसी कथाएं कही जाती थी। तो उस समय सुनी हुई ये कहानी है। ये कहानी है कि एक छोटा सा गांव है, राज्य है, और वहां पर अकाल पड़ा हुआ है, बारिश हुई ही नहीं है, ठीक है, सूखा पड़ा हुआ है। और वहां पर वो राजा हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, और इसलिए वो पंडितों को बुलाता है और कहता है अब मैं क्या करूं। वो पंडित उसे कहते हैं कि जो ये महादेव का मंदिर है आपके गांव में, तो उसका जो गर्भगृह है उसे पूरी तरह से दूध से आप भर दो, तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और फिर आपको बारिश हो जाएगी। तो राजा फरमान निकालते हैं कि हर एक के घर में कल जितना भी दूध होगा, जितना भी जिसके पास होगा वो सब लाके गर्भगृह में अर्पण कर दे। तो ये सब होता है तो फिर भी वो गर्भगृह भरता ही नहीं है, इतना दूध आता है, लंबी लंबी लाइनों में लोग आके दूध डालते हैं वहां, फिर भी नहीं होता है। और जो सिपाही होते हैं वो घर घर जाकर आपके पास और दूध है, और दूध है, और दूध है, ऐसा करते हैं। तब वो एक घर में जाते हैं, वहां पे एक बुढ़िया होती है। तो वो कहते हैं आप गए थे दूध डालने, बोले नहीं नहीं मैं अभी जा ही रही हूँ। तो उसने एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में दूध लिया हुआ है, और उसने क्या किया है कि उसके घर पे जो उसके बच्चे बच्चियां पोते सब लोग हैं, उनका खाना पीना सब कुछ होने के बाद जितना दूध बचा वो लिया और वो गई और महादेव जी के ऊपर उसने चढ़ा दिया। और जिस क्षण उसने वो चढ़ाया वो गर्भगृह पूरा दूध से भर गया। तो कहानी का मतलब ये है कि आपके जो कर्तव्य है वो आप पूरा कीजिए, और फिर जो बचा कुचा है वो आप भगवान को दीजिए, भगवान को चलता है।
0: वाह वाह वाह।
1: सो बेसिकली आप अपनी जो पूरी जिंदगी है वो अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी जो जिम्मेदारियां है उनके प्रति आप अर्पण कीजिए, इस तरह की वो कहानी है। और थोड़ी बहुत मम्मी की जो कहानी है, जीवन की कथा अगर हम सोचे तो वो उसी तरह से गई है। वो भी एक गजब की अदाकारा है, बहुत अच्छा गाती है, लिखती है, बट जब उनकी शादी हुई और उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मेरा सदाशिव है, ये जो मेरा महादेव है, इसे जो करना है, इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, इसने ये करना चाहिए, तब उन्होंने अपना खुद का सब पीछे छोड़कर एक बहुत ही कर्मठ घर में जाकर बच्चियों को

0: पाला, और दादा दादी मतलब उनके सास ससुर, बुआ पापा की बुआ थी जो सन्यासिन थी, उनका सब कुछ करते हुए, ये सब कर्तव्य करते करते करते, फिर अल्टीमेटली जब उनकी बेटी की शादी हुई एट द एज ऑफ 53, फिर उन्होंने अपना लिखाई का काम और ये सब शुरू किया। और अभी ये है कि पिछले 20 सालों में उनकी लगभग 30 किताबें आ चुकी हैं। तो इसलिए वो हमें लगा कि ये जो कहानी है ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है उस बुक के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी की कहानी उस तरह से रही है। और ऑफ कोर्स भगवान, मतलब उन्होंने पापा को जिस तरह से प्यार दिया, जिस तरह से विश्वास दिया, वैसा ही पापा ने उन्हें रेसिप्रोकेट किया। पापा का भी उन पर ऐसा ही विश्वास था, जो अंधविश्वास हम कह सकते हैं थोड़ा सा था, पर वो था। और उस वजह से आई थिंक जो आज भी हमारा घर फूला फला है और इतना अच्छा है, वो उस विश्वास की वजह से है।
1: बहुत ही सुंदर घटना है ये, जो किताब के नाम की घटना है और जिस तरह से आपने उसको विस्तार दिया है, ये बहुत ही मार्मिक है। अब चूंकि अमूमन जो रवायती इंटरव्यूज होते हैं वो ये कि बचपन से शुरू करेंगे, लेकिन हम कहीं से शुरू हुए हैं तो वो बचपन की बातें हम आगे कहीं जाके करेंगे,
0: सही
1: क्योंकि
0: बात।
1: बातचीत के अंदर घटनाएं तो आगे निकल कर आएंगी।
0: राइट।
1: चूंकि बातें सुनंदा जी और सदाशिव जी के रिश्ते की चल रही हैं और कैसे उनकी डोर आपस में जुड़ती है चल रही, पहले उन नाटकों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने उस दौरान साथ में किए थे, उनसे जुड़ी कुछ कहानियां हो तो वो बताएं।
0: राइट। सो उनसे जुड़ी तो काफी कहानियां हैं जो हम सुनते सुनते बचपन से आ रहे हैं।
1: जी
0: पर उन्होंने एक जो प्ले उन्होंने किया था वो था बंडू बेबी आणि बुरखा। तो उस वक्त इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स होती थी। ये जो प्ले था इसमें बंडू और बेबी, तो पति पत्नी का कैरेक्टर था, ये इन दोनों ने किया था। और उसी नाटक के दौरान आई थिंक दे रियलाइज कि दे आर इन लव विथ ईच अदर। ये एक नाटक के बहुत सारे किस्से हैं। मतलब मम्मी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्कॉलर इसकी थी, तो जब भी उनकी एग्जाम आती थी तो वो अवेलेबल नहीं होती थी प्ले के लिए। प्ले तो करना था, अभी कॉम्पिटिशन है तो जाना तो पड़ेगा। तो उस वक्त मम्मी तो नहीं, मम्मी ने कहा मैं तो नहीं, मेरी एग्जाम है, अभी मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, आपको जो करना है करो। तो उन्होंने किसी और को वहां पर कास्ट किया। और फिर मम्मी ने कहा अगर ये लड़की कास्टिंग है तो आप नहीं करोगे ये रोल। तो इसलिए फिर पापा का रोल भी किसी और ने वहां पर किया।
1: बहुत सही,
0: ठीक है।
1: बहुत ही सही।
0: तो और वो जो था, वो उसका शो था संगमनेर नाम के एक छोटे से गांव में, अहमदनगर के पास ही है, वहां पर उसका शो था। और उस समय लाइट चली गई तो माइक नहीं थे, तो फिर आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा, मम्मी हालांकि नाटक में नहीं थी, पर क्योंकि वो यूथ फेस्टिवल जैसा माहौल था तो और किसी कंपटीशन में वो थी, तो इसलिए वो वहां गई हुई थी। तो फिर वहां पर और वो जो नई लड़की और लड़का था उनके आवाज पहुंच ही नहीं रहे थे ऑडियंस तक। तो फिर इन दोनों ने वो डायलॉग्स पीछे से जोर से वो बोले और उन लोगों ने लिप सिंक किए स्टेज के
1: वाह
0: ऊपर।
1: वाह, क्या प्रयोग।
0: इस तरह से वो हुआ। तो ये जो एक किस्सा है ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कभी भी मम्मी ने पापा से ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूं प्ले के लिए। जो भी डेट चाहिए जब भी चाहिए वो अवेलेबल होती थी इस
1: क्या
0: तरह
1: बात है,
0: से।
1: बहुत ही सुंदर। एक पूरा दौर था जब सदाशिव जी लगातार नाटक कर रहे थे और भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि नाटकों के लिए तो अलग अलग शहरों में गांव में जाना होता है।
0: सही।
1: उस दौर के कोई बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं जिन्होंने उन्हें एक मुकम्मल पहचान दी थी,
0: ऑफ कोर्स।
1: उनकी बात करते हैं।
0: उसमें मैं सबसे पहले पापा कलाकार तो थे, एक्टर तो थे ही, पर वो निर्देशन में भी बहुत रस रखते थे, वो
1: बिल्कुल
0: निर्देशक भी थे। राइट। सो अगर उनके नाटकों की बात कही जाए तो उन्होंने कुछ नाटक ऐसे किए थे, जैसे छू मंतर करके एक नाटक था, फिर बखरे का राजा जी ये एक प्ले था, छिन्न करके एक नाटक था, कन्यादान एक नाटक था, फिर हैंड्स अप, ये जो पांच छह नाटक है, काही स्वप्ने विकाई जी ये भी एक था। पर काही स्वप्ने विकाई जी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था और कंपटीशन वाला प्ले था, बाकी के ये जो सारे जो मैंने नाम लिए ये कमर्शियल नाटक थे। इसके अलावा भी बहुत सारा काम किया हुआ है, पर ये नाटक मैं स्पेशल इसलिए समझती हूँ बिकॉज ये हर एक नाटक ने कुछ इंडस्ट्री को भी दिया हुआ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका अलग अलग जिक्र मैं चाहता हूं,
0: जिक्र।
1: जैसे छिन्न
0: यस।
1: का बहुत जिक्र
0: हाँ
1: मिलता है,
0: हाँ
1: हैंड्स अप का जिक्र मिलता है,
0: करेक्ट।
1: काही स्वप्ने विकाई ची, अगर मैं
0: हाँ
1: सही प्रोनाउंस
0: हाँ
1: कर रहा हूं, उसका
0: हाँ
1: भी खूब जिक्र मिलता है कि
0: करेक्ट।
1: अलग अलग मानदंडों पर इन्होंने कुछ
0: किया है। सो
1: कामयाबी की है।
0: काही स्वप्ने विकाई ची ये जो प्ले था ये बहुत

0: पहले कुछ जो प्लेस पापा ने किए थे उसमें से था। तो उसमें वो एक रिटायर्ड टीचर का रोल करते थे जो 83 इयर्स ओल्ड होते हैं, और उस वक्त पापा की उम्र थी 23, 23, 24, मतलब ज्यादा ज्यादा। उस समय उन्होंने काफी सारे उस पे INT और ये जो सारी कॉम्पिटिशन्स होती थी उसमें काफी सारे अवार्ड्स जीते थे उस एक रोल के लिए। उन्हें लोग कास्टिंग के लिए बुलाते थे कि आप आओ हमारे यहाँ पे प्ले में, और वो हर बार जाते थे तो लोगों को लगता था ये कौन आ गया, वो तो एक बुढ़ा आदमी है जो वो रोल कर रहा है, उम्र में ज्यादा है, आपने कैसे किया, आप तो नहीं हो सकते। ऐसे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उस समय पापा की आंखें चली गई, बिकॉज लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वही इंसान है जिसने 83 साल के एक वृद्ध इंसान का रोल किया हुआ है, और वो इतना बखूबी निभाया उन्होंने कि लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि ये एक 24-25 साल का युवक है। तो वो एक प्ले इसलिए बहुत ज्यादा फेमस था क्योंकि पापा की जो एक्टिंग की रेंज थी वो एक प्ले में काफी सारी एक्सपोज हुई थी। इसके अलावा छिन्न जो प्ले है वो विजय तेंदुलकर साहब ने लिखा हुआ था, और उसकी खासियत ये है कि वो एक प्ले है जिसमें सबसे पहले और मेरे ख्याल से आखिरी बार, वही एक प्ले है जिसमें स्मिता पाटिल जी ने कमर्शियल थिएटर किया था और
1: और वो भी
0: पापा ने वो
1: पापा के
0: निर्देशित।
1: निर्देशन में।
0: तो इसलिए वो एक बहुत ही खास प्ले रहा है, और लोगों ने जो सराहा है उस प्ले को क्योंकि उसका विषय है और जो सब था, एक तो तेंदुलकर साहब की जो लिखाई है वो एक तो पाथ ब्रेकिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग होती है, और उसके ऊपर पापा का डायरेक्शन, ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट दोनों चीजें हुई थी। उसी की स्टाइल में दूसरा एक नाटक कहा जाए तो वो है कन्यादान। कन्यादान में डॉक्टर श्रीराम लागू, नीना कुलकर्णी, आशालता वाबगावकर, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे उस समय,
1: बिल्कुल
0: और उनके साथ अगेन पापा ने निर्देशित भी किया था, उन्होंने एक्टिंग भी की थी उसमें। छिन्न और कन्यादान, इन्होंने पापा को एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर डायरेक्टर के तौर से एस्टेब्लिश किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और उस समय थिएटर जिस तरह से देखा जाता था, लोग जिस तरह से देखते थे, वैसा मुझे नहीं लगता आज तक वो सुवर्ण काल फिर से आया है,
1: हम
0: ऐसा
1: उस
0: मुझे
1: दौर
0: नहीं
1: की बात कर
0: लगता।
1: रहे हैं जब टेलीविजन उस
0: हाँ,
1: तरह से नहीं आया
0: नहीं आया
1: था
0: था।
1: और महाराष्ट्र में खास तौर पर थिएटर की सशक्त परंपरा थी
0: एकदम
1: और कामयाबी के झंडे गाड़ते थे प्लेज और उनकी दास्तानें आज तक कही
0: करेक्ट
1: जाती हैं।
0: करेक्ट करेक्ट। तो ये प्ले था। उसके बाद पापा ने INT के लिए ही एक प्ले किया था, बखरे का राजा जी। तो बखरे का राजा जी ये जो प्ले था इसमें नीना कुलकर्णी और दिलीप कुलकर्णी जो उनके हस्बैंड थे वो भी एक बहुत उम्दा कलाकार थे, उन दोनों को लेकर ये प्ले बनाया गया था। पर उस समय वो प्ले चला नहीं, कमर्शियली इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, और INT को काफी लॉसेस झेलने पड़े थे बिकॉज इट वाज अ हिस्टोरिकल सेट, सब वैसे लगा था और ये सब हुआ था। तो उसके बाद पापा ने डिसाइड किया अब मैं जो करूंगा वो मैं कमर्शियली वायबल करूंगा, पैसे कमाने चाहिए लोगों, मतलब प्रोड्यूसर्स ने, राइट? तो इसलिए उन्होंने दो प्लेज किए उसके बाद डेफिनेटली, जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। एक प्ले तो था छू मंतर जो उन्होंने डायरेक्ट किया था, और इस प्ले की मजे वाली बात यह है कि उस वक्त लक्ष्मीकांत बेरड़े को फर्स्ट टाइम कमर्शियल प्ले में पापा ने कास्ट किया था।
1: हो गजब।
0: इट वॉज इज लॉन्च। तो और वो प्ले बहुत चला बिकॉज इट वॉज अ आउट एंड आउट कॉमेडी, और बहुत मजा आया लोगों को, और एक लक्ष्मीकांत बेरड़े जैसा कलाकार आया, पापा थे लक्ष्मीकांत बेरड़े थे, तो इट वॉज पिक्ड अप लाइक हाउ। उसके बाद हैंड्स अप किया था पापा ने जिसमें वो थे, भक्ति बर्वे थी, ऐसी पांच छह बहुत ही स्ट्रांग आर्टिस्ट उसमें थे, और पापा ने निर्देशित भी किया था वो प्ले, और दैट वाज अ हिस्टोरिकल प्ले। मैं इसलिए
1: बिल्कुल
0: कहूंगी क्योंकि बहुत बारी ये बात आई भी है कि जब गोविंद निहलानी जी ने वो प्ले देखा, अगेन विजय तेंदुलकर जी ने उनसे कहा था कि तुम हैंडसअप का प्ले देखो, बिकॉज उस समय निलानी जी अर्धसत्य का कास्टिंग कर रहे थे और पुलिस इंस्पेक्टर का हीरो है ये तो पता था बिकॉज तेंदुलकर साहब ने ही वो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि तुम ये प्ले देखो, इसमें ये लड़का है ये बहुत अच्छा इंस्पेक्टर निभाता है, तो तुम देखो। तो इसलिए गोविंद जी गए, उन्होंने वो देखा प्ले, और उन्होंने पापा को इंस्पेक्टर के रोल में ही थे वो देखा, लेकिन उन्होंने उनकी कास्टिंग रामा शेट्टी के लिए की।
1: वाह
0: ओके, और फिर उसके बाद तो इट इज जैसे हम कहते हैं कि हिस्ट्री है, उसके बाद

0: पापा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कलाकार का नाम उन्हें मिल गया और वो काफी सारी फिल्मों में ही बिजी हो गए। तो थिएटर वो करते रहे पर बहुत थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बाद में वो करते रहे।
1: बिल्कुल
0: तो इसलिए वो हैंड्स अप, ये एक जो प्ले है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड्स अप का ये एक मजेदार किस्सा है। उस वक्त क्या होता था, जैसे आपने कहा कि वो समय ऐसा था जब मराठी में नाटक की परंपरा बहुत बहुत स्ट्रांग थी। तो दिन में दो दो तीन तीन शो लगते थे एक प्ले के। तो और उस वक्त जैसे अब है, मेट्रो पकड़ लिया चले गए, उबर पकड़ ली चले गए, वैसा नहीं था। आर्टिस्ट को खुद ही जुगाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। पापा के पास उस वक्त एक टू व्हीलर थी। तो शिवाजी मंदिर में प्ले खत्म हुआ, वहां से उन्हें ठाणा पहुंचना था। और ये मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ये सब इतना अच्छा नहीं था बंबई में।
1: हाँ जी
0: तो पापा स्कूटर पे जाते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कपड़े नहीं बदले और वो वैसे ही निकल गए। और एक भी सिग्नल पर वो नहीं रुके। और हर बार जब उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो बिकॉज वो उस कॉस्ट्यूम में थे, उनको लगता था अरे ये तो कोई इंस्पेक्टर है, कुछ अर्जेंट काम होगा, तो सॉरी सॉरी सर करके उनको वहां भेज देते थे। तो ये कलाकार इस तरह से होते हैं, औलिया जिसे हम कहते हैं, कि वो
1: वाह
0: उन्हें सिर्फ वही दिखता है कि मेरा कर्टन और आधे घंटे में खुलने वाला है, मुझे वहां पहुंचना है बस, और उन्हें
1: क्या
0: कुछ नहीं
1: प्यारी बात है।
0: दिखता।
1: वाह, यहां भी गाने की जगह बन रही है और मुझे लगता है कि ये करते हैं कि मम्मी की पसंद का कोई गाना लगाते हैं यहां पर।
0: मम्मी की पसंद का ये जो गाना है, मेरे महबूब में क्या नहीं,
1: वाह
0: वो
1: वाह
0: वाला।
1: वाह, क्या बात क्या बात क्या बात, सुनते हैं ये गाना।

बहुत लंबी एक दिलचस्प बात हुई नाटकों को लेकर, और तेंदुलकर साहब का नाम वहां बार बार आता है। बहुत करीबी रिश्ता सदाशिव जी का तेंदुलकर जी से रहा है।

0: उससे जुड़ी कुछ घटनाएं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं आपसे सुनना चाहता हूं।
1: ओके तेंदुलकर जी, एक हम कह सकते हैं विद्यापीठ थे।
0: बिल्कुल।
1: किसी भी घटना की तरफ देखने का उनका जो दृष्टिकोण होता था वो बहुत अलग होता था। रोज की घटनाओं की तरफ भी वो जिस तरह से देखते थे और बात करते थे ये बहुत अलग था। तो उनकी और पापा की जो पहचान थी वो प्ले की वजह से हुई थी, पर सुहास अउचट करके बहुत बड़े आर्टिस्ट है, पेंटर है, उन्होंने उनको मिलाया था। एक ये अहमदनगर से आया हुआ लड़का है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये जब तेंदुलकर साहब को समझ में आया तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया। और सपोर्ट किया मतलब मैं इस तरह से कहती हूँ कि देर वर डेज, ऐसे दिन थे जब दो दो तीन तीन दिन तक पापा उनके घर पर ही रहते थे।
0: गजब।
1: हाँ, और उस वक्त तेंदुलकर साहब जो काम कर रहे थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो वो प्रोसेस का एक भाग होना एक युवा के लिए जो अहमदनगर जैसे छोटे से गांव से आया है, ये बहुत बड़ी बात थी। तो पापा हमेशा कहते हैं कि मैं तो उनके सामने जाता था तो जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है जो इंक ब्लॉट करता है, वैसे मैं, मराठी में हम उसे टिप कागद कहते हैं, तो वैसे मैं टिप कागद हो जाता था, जो भी मिले वो एब्जॉर्ब करो,
0: वाह वाह,
1: बस उतना ही। तो ये स्थान तेंदुलकर साहब का पापा के जिंदगी में था। दूसरा, जब 82 में मम्मी को बॉम्बे में ट्रांसफर मिली, तब कैसे तैसे करके पापा ने एक किराए का घर लिया था, क्योंकि हम तीनों बच्चियां, मेरी दादी और मम्मी और वो, ऐसे हम सब लोग रहने वाले थे।
0: किस इलाके में?
1: अंधेरी में ही लिया था उन्होंने, बिकॉज उस वक्त बैंड्रा बहुत महंगा था, तो इसलिए उन्होंने अंधेरी में लिया था। तो एक किराए पे छोटा सा घर लिया था, और दो साल बाद वो घर मालक ने कहा कि भाई अभी नहीं, अभी आप छोड़ दो, मुझे ये घर बेचना है। तो रातों रात एक हफ्ते के अंदर बंबई जैसे शहर में एक घर ढूंढ पाना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो पापा गए तेंदुलकर साहब के पास, बिकॉज जैसे मैंने कहा ही वॉज अ गाइड, ही वॉज अ फ्रेंड, ही वॉज अ फिलोसोफर। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है, नो प्रॉब्लम। उन्होंने सीएम साहब के लिए एक लेटर लिखा कि ये ऐसा ऐसा कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार है, और इसे बंबई में रहने के लिए घर नहीं है, तो आप इसकी कुछ मदद कर दीजिए। तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ खत लेकर पापा पहुंच गए। उस समय चव्हाण साहब सीएम थे, उन्होंने वो लेटर देखा और एक मिनट के अंदर उन्हें लेटर दिया। उस समय ऐसा था कि 2% कोटा हुआ करता था कलाकारों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए। तो उसमें से जोगेश्वरी में जो नई एक कॉलोनी बन रही थी वैशाली नगर, वहां पर हमें एक 1 BHK का फ्लैट म्हाड़ा का मिला। तो वो लेटर तेंदुलकर साहब ने दिया और इट वाज अमेजिंग। जैसा पापा हमेशा कहते थे कि आपकी जिंदगी के हर मुकाम पर आपको ऐसे इंसान मिलते हैं जो या तो आपको कुछ नया दिखाते हैं या आपको आगे पुश करते हैं। तो मेरे ख्याल से और पापा से जो बातें होती थी उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि तेंदुलकर साहब ऐसे थे जो पापा के लिए ना ही, मतलब एक नया तरीका दुनिया को देखने का तो था ही जो उन्होंने सिखाया उन्हें, पर उन्होंने उन्हें बहुत बड़ा पुश भी दिया। तो बंबई में घर अपना खुद का लेना हो या उन्हें पहली फिल्म मिलनी हो, पहली फिल्म हालांकि पापा की 22 जून 1897 थी,
0: उसकी बात आगे करेंगे,
1: उसकी आगे करेंगे, पर बड़ी फिल्म जिसमें हालांकि 3.5 सीन थे पर वो पूरी फिल्म पे छा गए थे, रामा शेट्टी छा गए था कैरेक्टर, तो वो फिल्म हो, तो आई थिंक तेंदुलकर साहब का अनन्य साधारण महत्व हमारी पूरी फैमिली की लाइफ में है।
0: बिल्कुल। एक घटना है जिसमें उन्होंने पूछा था तेंदुलकर से कि आपने अर्धसत्य में मुझे रोल क्यों दिलवाया, उसका जिक्र करें।
1: उसका ये तो एक्चुअली तेंदुलकर साहब ही बेस्ट बता पाएंगे पर उन्होंने जब पूछा तब मेरे ख्याल से जो मुझे याद है कि तेंदुलकर साहब ने कहा था कि देखो कलाकार कलाकार होता है, क्योंकि उस समय भी और आज भी हमारी इंडस्ट्री में काफी कैंप्स बने हुए हैं।
0: बिल्कुल।
1: सो पूना से आने वाले लोगों का एक कैंप है, बॉम्बे से लोगों का एक कैंप है, अभी तो बॉलीवुड में भी यूपी से आने वाले लोगों का एक कैंप है, इस तरह से, और वो कालातीत है, वो चलता ही रहता है, हर जगह वो होता है। तो उन्होंने कहा था कि कलाकार जो होता है ना, उसकी जात और उसका ये सिर्फ एक होता है धर्म, वो है कला। और तुम जिस तरह से खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो, वैसे मुझे लगता है तुम ये रोल ठीक से कर पाओगे। हालांकि उस वक्त बात ये हुई थी कि पापा को लग रहा था कि हीरो का रोल उन्हें मिलेगा, जो कि ओमपुरी जी को मिला था, क्योंकि इंस्पेक्टर हैंड्सअप में उन्होंने इंस्पेक्टर किया था, और ये रामा शेट्टी का रोल इन्हें ऑफर किया गया था। तो उन्होंने तेंदुलकर साहब से पूछा था, पर मुझे तो लगा था मैं इंस्पेक्टर का रोल करूंगा। तो उन्होंने कहा था, तुम बस जो तुम्हें काम दिया है वो ठीक से करो, तुम विलन हो या हीरो हो, दैट डज नॉट मैटर। ये फिल्म के आखिर में तुम याद रहने वाले हो लोगों को, ये भूलना मत। तो वो पापा ने सुनी उनकी बात और ही इज वेयर ही रीच्ड।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एक कलाकार की ताकत यह है कि कितना छोटा रोल क्यों ना हो, अपनी मौजूदगी, अपनी आमद को कैसे
1: सही
0: साबित किया जा सकता है।
1: बात
0: उसकी मिसाल है अर्धसत्य। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे बहुत कम मिसालें मिलती हैं जहां कुछ दृश्यों में अभिनेता ने अपनी वो छाप छोड़ी के इतिहास रच दिया।
1: राइट
0: लेकिन ये उनकी पहली फिल्म नहीं थी,
1: नहीं थी।
0: तो पहली फिल्म जो नचिकेत और जयो वाली थी, वो कैसे मिली, उसका जिक्र कीजिए।
1: वो कैसे मिली इसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगी,
0: जी
1: लेकिन पूना में उस वक्त पापा रहते थे ज्यादा करके, और वहां पर वो प्ले वगैरह कर रहे थे। तो उन्होंने कास्टिंग में उन्हें तिलक का रोल दिया गया था, और पापा उस वक्त एकदम पतले दुबले पतले से ऐसे थे। तो जयू और नचिकेत पटवर्धन उनके बहुत अच्छे दोस्त थे उस वक्त। तो आप करोगे? उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगा, नो प्रॉब्लम, चलो। मतलब पापा कहते थे कि अभी दुकान ही खोलकर बैठे हैं, तो जो आएगा वो करना तो पड़ेगा, इस तरह से उन्होंने वो किया था। तो लेकिन उन्होंने वो रोल किया उस वक्त। जयू और नचिकेत पटवर्धन ये अभी तो बहुत ही सीनियर और रिस्पेक्टेड ये है, पर वो भी काफी यंग थे उस वक्त। और फिल्म में मुझे याद है पापा ने बाद में जब राज से स्वराज तक में लोकमान्य तिलक का रोल किया, तब उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर मेहनत की थी, क्योंकि उन्हें समझ में आया था कि ये जो फिल्म हमने की है जयू नचिकेत के साथ, इसमें हालांकि मैं तिलक लग रहा हूँ फीचर्स के तौर पर, लेकिन जो उसका क्रिटिक आया था वो ऐसा आया था कि मैं मराठी में ये वाक्य कहती हूँ, यजथा लोकमान्य टिळक हा रामोश्या सारखा दिसतो। रामोशी मतलब जो क्लीनर्स होते हैं ना ऑफिसेज में या घर में, उन्हें रामोशी कहा जाता था एक जमाने में, अब तो नहीं कहते कोई। तो इस तरह से वो दिखता है। तो इसलिए उसके बाद जब पापा ने राज से स्वराज तक की, जब उन्हें फिर से एक बार तिलक करने का मौका मिला, लोकमान्य तिलक का किरदार निभाने का मौका मिला, तब पापा ने बाकायदा 6-8 महीने, उस समय ये नहीं होता था, लेकिन जिम जाकर, बिकॉज लोकमान्य तिलक की जो बॉडी थी ही वॉज वेरी वेल बिल्ट, तो इस तरह से दिखने के लिए पापा ने वो सारे एफर्ट्स लेकर वो काम किया हुआ था। ये फिल्म के बारे में जब भी पापा से बात होती थी तो वो कहते थे मैं तो थ्रिल था कि मुझे फिल्म में लिया है। हाँ, बिकॉज उनकी उम्र भी काफी कम थी उस वक्त। और क्या करना चाहिए जब आप कोई इस तरह का किरदार, जो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी इंसान का किरदार जब आप निभा रहे हो, तब क्या करना चाहिए इसके लिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीजें उन्हें उस फिल्म से समझ में आई। आज भी जब वो दूरदर्शन पे वो फिल्म लगती है तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच।
0: बिल्कुल, राज से स्वराज का जो जिक्र आया है, मैंने उनके इंटरव्यूज में देखा और पढ़ा है कि बहुत ही प्रिय रहा है ये रोल उनके लिए। और जब भी कभी उनसे ये पूछा गया है कि आपके फेवरेट रोल्स कौन से रहे, तो उन्होंने बड़ी फिल्मों और वो तमाम मशहूर रोल्स को छोड़ के इसका जिक्र किया है। वो क्यों है?
1: क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राज से स्वराज तक में जो लोकमान्य तिलक की भूमिका निभाना है, ये एक उनके लिए एक लर्निंग कर्व रहा है। 22 जून 1897 ये फिल्म में जयू नचिकेत पटवर्धन उन्हें डायरेक्ट किया था लोकमान्य तिलक की भूमिका में, और यहाँ पर अमाल अलाना जी ने उन्हें डायरेक्ट किया था राज से स्वराज तक में। अमाल अलाना अगेन एक बहुत बड़ा नाम है,
0: बिल्कुल
1: अलकाजी सर जिन्होंने एनएसडी जैसी संस्था को रूप लाया, उनकी बेटी अमाल अलाना, उन्होंने ये दिग्दर्शित किया हुआ था। और उस समय ना पापा और 10-15 साल आगे आ चुके थे करियर में एज एन एक्टर ऑल्सो। ही वॉज अ स्टार एट दैट टाइम जब राज से स्वराज तक हुई थी। तो जब उन्हें फिर से चांस मिला तो उन्होंने सोचा कि अब आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ,
0: जो मैं, कसर रह गई
1: जो
0: है,
1: कसर रह गई है वो पूरी करनी है, अभी मैं रामोशी नहीं दिखूंगा।
0: yes.
1: मुझे याद है उन्होंने वो वीक से लेके, बिकॉज उनकी कंटिन्यूटी काफी सारी फिल्म्स की होती थी। अब जैसे होता है कि कलाकार एक समय पे एक ही फिल्म करते हैं तो इसलिए वो पूरी तरह से वैसे ड्रेस्ड अप होते हैं, वैसे नहीं हुआ करता था उस वक्त। दो दिन

0: फिल्म का शूटिंग हुआ, फिर 2 दिन उस फिल्म का हुआ, इस तरह से चलता था। तो किसी भी रोल के लिए पूरी तरह से बाल निकालना या ये पॉसिबल नहीं था। पर मुझे याद है कि जब उन्हें ब्रेक था 1 महीने का, तब पापा ने जो कोर्ट सीन्स थे स्पेशली उसके लिए ये निकाले थे, बिकॉज अमाल जी ने उन्हें कहा था कि देखो कोर्ट सीन में जब लाइटिंग होती है तो विग बहुत बुरा दिखता है। हाँ एग्जैक्टली तो इसलिए उन्होंने उस समय बाल निकाल कर, और बाकी की फिल्मों में अगर आप देखोगे उस समय में जो शूटिंग हुए थे उसमें पापा ने विग्स पहने हुए हैं।
1: ओके, क्योंकि
0: हाँ तो
1: कोई रास्ता नहीं था।
0: पर उस समय कलाकार ऐसा नहीं करते थे, वो मैं बताना चाहती हूँ। तो ही वॉज वेरी वेरी इन्वॉल्व इन द स्क्रिप्ट, और उस समय तक पापा का जो रीडिंग था, पापा ही वॉज अ वोरेशियस रीडर, मतलब रोज वो 2-3 घंटा तो पढ़ना तो बनता ही है, किताबें पढ़ना उनका एक जरिया था। तो तब तक उन्होंने जो इतिहास के बारे में पढ़ा था, आई थिंक उसकी वजह से भी उन्हें वो करते वक्त, वो एक्टिंग करते वक्त बहुत मजा आया था, इसीलिए शायद वो उनका फेवरेट ये है कि मैं अभी प्रूव करूंगा। और वैसा लोकमान्य तिलक बाद में, हालांकि बहुत लोगों ने कोशिश की, पर जैसा राष्ट्रीय स्वराज तक में है वैसा लोकमान्य तिलक आज तक हो नहीं पाया है, वैसा लिखा भी नहीं गया है उस तरह से। तो आई थिंक इसलिए वो उनका बहुत फेवरेट कैरेक्टर रहा है।
1: दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज को आज भी लोग खोज खोज कर देखते हैं, और
0: हाँ
1: दूरदर्शन के आर्काइव्स पर ये अभी भी देखा जा सकता है। खोज कर
0: करेक्ट,
1: अगर आप देखें
0: हाँ
1: तो वेव्स पर शायद ये अभी भी
0: वेव्स पर
1: उपलब्ध
0: है।
1: है। तो
0: वेव्स पर ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है जो श्याम बाबू ने डायरेक्ट की थी।
1: उसका जिक्र करने से पहले यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: प्लीज
1: उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो
0: राइट।
1: बताइए कि कौन सा गाना यहाँ आना
0: यहां पर
1: चाहिए।
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि एक गाना है जो बिल्कुल पापा की जो सोच थी उनके समाज के प्रति, उनके देश के प्रति, वो बहुत ही सुंदर तरीके से जिस गाने में आई है, वो था राजी फिल्म का, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू।
1: क्या बात है,
0: वो
1: गुलजार
0: सुनते
1: साहब के
0: हैं
1: बोल,
0: ऑफ कोर्स।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। बातचीत की श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: এতক্ষণ শুনলেন বিবিধ ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সেবার অনুষ্ঠান আকাশবাণী বিলোনিয়া। এখন শুনুন দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি সংবাদ এবং দিল্লি কেন্দ্রের ইংরেজি সংবাদ।
1: আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মাই প্রশান্ত কুমার। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी

0: से बढ़ा है। दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
0: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। श्री वैष्णव आज जयपुर से खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 2,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने स्टोरिया फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड और बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड पर खाद्य उत्पादों के संबंध में 100% शब्द के इस्तेमाल से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने दोनों कंपनियों को अपने उत्पाद पैकेजिंग, वेबसाइटों और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस तरह के दावों को तुरंत हटाने का निर्देश भी दिया है। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ए ने 32 ओवर में 6 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। उधर मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi today commissioned 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agrey in Kolkata, designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by the Garden Reach Shipbuilders and Engineers. The vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic, surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said that today India is strengthening its entire maritime ecosystem and initiatives like Sagarmala are part of this broader vision.
0: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है। नई कनेक्टिविटी

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय।
1: साथ है इस समय और स्मृति मांदना का रैंक 7 और शिफाली वर्मा 20 के अपने आईसीसी रैंकिंग भी है। मार्जना कैप गेंदबाजी की शुरुआत करेंगी, 123 मैच उन्होंने खेले हैं, 97 विकेट्स उनके नाम पर हैं और सामना करती हुई भारतीय बल्लेबाज एक अहम मैच में। किशन कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत है इस अहम मैच में, भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान ये मैच जो खेला जा रहा है। अपने सुनने वालों को मैं बता दूं, मोहम्मद इशाउद्दीन हमारे स्टेटिस्टिशियन होंगे इस मैच में और भागवत सिंह रावत जो हमें बताते रहेंगे क्या क्या स्कोर इस मैच में बन रहा है। ओवर टू यू कृष्ण कुमार जी।
2: या थैंक यू एंड गुड इवनिंग ऑल लिसनर्स अक्रॉस द कंट्री। वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम दिस इन द आईसीसी T20 Women's World Cup, as important as you may probably want it to be, because remember that India and South Africa also played a bilateral recently, and also the ODI World Cup final, which India won. Here's the first ball, and Smriti starts off beautifully. Off the pads, it's been whipped away. Should get a couple for that, and India are on the way of the very first delivery. Two for the loss. Now, in the context of this World Cup, also this is a very, very important game because India won both their games. Should India win over here, they get into the driver's seat, and a lovely, confident-looking stroke on the onside off her pads by Smriti Mandana. It's a kind of a bread and butter shot for her, and that went down to mid-wicket for a couple. Once again, on the middle and leg, played defensively forward by Smriti. On the onside, no runs result. Now it'll be interesting to see how India really approach this innings, because the power play is going to be very important, and they would certainly want to have a good start with a very good power play and then build it on.

0: from there on, because South Africa is a very good batting side and they can really give it a good chase to good total. Marizan Cup. Outside the off stump, a flowing off drive. Good stop there at mid-off, inside the 30-yard. And no runs result. So after a couple of the very first delivery, two dots here from Marizan Cup. And as I was saying, you know, South Africa, we want to win over here. Remember, they lost to Australia and they lost by big margins. So if they lose again over here, they'll have a major problem in this tournament from here on. They've got Netherlands to play. They can beat them by a big margin, but Bangladesh are no pushovers, so it'll be very difficult for South Africa from there on. Once again, played on the onside for a single to the ball in the leg and middle stumps from Marizan Cup. And so it's so important, this game, that both the teams want to win and push forward for a place in the semi-final.
1: बात आपकी बिल्कुल ठीक है केके, क्योंकि ये मैच ऐसा मैच है जिसे हम आप क्वार्टर फाइनल कह सकते हैं, क्योंकि जो भी टीम जीतेगी वो अपना स्थान सेमीफाइनल में पूरा करने के लिए बहुत करीबी करीबी पहुंच जाएगी. और स्मृति और शिफाली की इस जोड़ी से भारतीय टीम को बहुत उम्मीदें हैं. शिफाली वर्मा पहली बार सामना करती हुई मैरिजन कैप का. चार गेंदें अभी तक फेंकी गई हैं और इन चार गेंदों में भारत ने तीन रन बनाए हैं. मैरिजन कैप अपनी फील्ड को कुछ एडजस्ट करती हुई. बट क्योंकि एक बात बहुत जरूरी जो है कि ये जो ओपनिंग स्टैंड है हमारा भारतीय टीम का, इस पूरी भारतीय टीम का जो बेस है इस ओपनिंग स्टैंड से बनने वाला है.
0: Yeah, I mean, it'll be very important to see how Shefali goes about this. She likes to hit it over the top. Here's Marizan Cap into Shefali Verma. That's a good ball on the off and middle. And driven into the covers, a half push, half drive. And a good stop there by Laura Wolfhard. But they get a couple for that. So Shefali Verma also, in the very first delivery, on her way to an India 5-0 loss. The first over, just the one delivery still to come from Marizan Cup. So controlled over here by Marizan Cup. Also interesting to see that five deliveries, Marizan Cup hasn't given the ball too much pace, because she knows that pace on the bat, and Shefali Verma will go after her if it's a length ball. Here is Marizan Cup into Shefali Verma on the pads. Once again, turn around the corner. That might well carry down to the boundary. The first four of the match coming up down to the square leg boundary for four.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: और शेफाली वर्मा के बल्ले से ये चार रन जो निकलकर बाहर गया, और इस चौके के साथ इस मैच का पहला चौका शेफाली वर्मा के बल्ले से निकला. और भारत ने पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बनाए हैं. और अच्छी शुरुआत, हालांकि जो गेंद थी वो ऑफ स्टंप के बाहर रखी गई थी, और ये आखिरी गेंद सिर्फ लेग स्टंप को छोड़ती हुई और उसे हल्का सा दिशा भर दी शेफाली वर्मा ने, और गेंद सीमा रेखा को छोड़कर बाहर जाती हुई. और पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मैच में भारत का स्कोर रहा 9 रन बिना किसी नुकसान पर. आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ये जो वुमेन्स टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें जो पॉइंट टेबल है ए ग्रुप में, उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी तक तीन मैच खेल चुका है और तीन मैचों से 6 अंक अर्जित कर चुका है. भारत ने 2 मैच खेले. आज भारत का बहुत ही एक महत्वपूर्ण मैच, तीसरा मैच वो खेल रहे हैं. बांग्लादेश ने 3 मैच खेले हैं, 4 अंक उन्होंने अर्जित किए. साउथ अफ्रीका का ये बहुत महत्वपूर्ण तीसरा मैच, और पाकिस्तान और नीदरलैंड्स भी 3-3 मैच खेल चुके हैं. इस्माइल अपने नए ओवर के साथ सामना करती हुई स्मृति मांदना. अच्छी गेंद थी, कवर्स पर उसे पुश किया, फील्ड किया गया बिना किसी नुकसान के, बिना किसी रन पे. 1.1 ओवर के बाद भारत का स्कोर है 9 रन. स्मृति मांदना खेल रही है 3 के अपने व्यक्तिगत योग पर, 5 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली हैं. और शेफाली वर्मा 6 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही हैं. अभी तक 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया है. और भारतीय बल्लेबाजी की जो नींव है वो बननी शुरू होती हुई, और बहुत जरूरत है कि इस ओपनिंग साझेदारी से एक बड़ा स्कोर भारत को मिले. इस्माइल अपने ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद, और उसे पुश किया मिड ऑफ पर. जब तक फेन को फील्ड किया जाता, तेजी से अपने अपने छोर बदले दोनों बल्लेबाजों ने, और इस स्कोर के साथ स्मृति पहुंची 4 के अपने व्यक्तिगत योग पर. भारत 10 रन बिना किसी नुकसान पर 1.2 ओवर्स की समाप्ति के बाद.
0: Yes, it'll be, now this is an interesting contest that we

0: You'll have to see Shabnim Ismail to Shefali Verma, because compared to Marizan Cup, Shabnim Ismail is giving more pace on the ball, and that's what Shefali Verma likes. Very first over for Shabnim Ismail also. She's also got all the experience behind her. Remember, brought out of retirement for this World Cup. Outside the off jump, and that's been driven, square driven. That's gone down to the square cover boundary for four.
1: ये लगा अब हां का चौका
2: और ये शानदार चौका शेफाली वर्मा के बल्ले से निकलता हुआ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और उसे पुश भर किया. टाइमिंग इसमें अच्छी थी, हालांकि फील्डर के पास से ये गेंद निकलती हुई और ये चार रन उनके बल्ले से निकलते हुए और इन चार रनों के साथ शेफाली का व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा 10 के 10 पर. तीन गेंदें अभी उन्होंने खेली हैं और भारत 1.3 ओवर्स के बाद 14 के अपने स्कोर पर. इस्माइल अपने ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द स्टंप्स लेग स्टंप के बाहर थी, हल्का सा उसे पुश किया और जब तक गेंद को मिड विकेट पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था अपने अपने छोर बदलने का और स्कोर पहुंचा. इसके साथ 15 रन भारत का बिना किसी नुकसान पर. 1.4 ओवर की समाप्ति के बाद भारत टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करता हुआ. निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि दूसरी इनिंग्स में जो पिच एक्सपर्ट्स की थी उनकी राय थी कि गेंद स्पिन लेगी और भारत ने अपने इस खेमे में 3 स्पिनर्स को चुना हुआ है. राइट आर्म ओवर द स्टंप्स ऑफ स्टंप के बाहर और से पुश भर किया और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन.
1: ये लगा आभा का चौका.
2: स्मृति मांदना के बल्ले से ये कवर बाउंड्री के बाहर खूबसूरत शॉट. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद को सिर्फ पुश भर किया एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से. अच्छी टाइमिंग, अच्छी प्लेसमेंट और उनके बल्ले से निकला हुआ यह पहला चौका. स्मृति मांदना पहुंची 8 के अपने व्यक्तिगत योग पर. 7 गेंदें अभी तक उन्होंने खेली है और 1.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत 19 पर. एक अच्छी शुरुआत भारतीय बल्लेबाजों को. राइट आर्म ओवर द स्टंप लेग स्टंप के बाहर और ये 4 रन.
1: ये लगा आभा का चौका.
2: लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी और उसे हल्का सा सिर्फ दिशा दी और गेंद सीमा रेखा के बाहर लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा 23. स्मृति मांदना खेल रही है 12 के अपने व्यक्तिगत योग पर. शेफाली वर्मा खेल रही है 11 के अपने व्यक्तिगत योग पर और रन रेट भारत का अभी 11.5. कैप ने एक ओवर डाला, 9 रन दिए और इस्माइल ने अभी तक एक ओवर डाला है, 14 रन दिए हैं. कोई एक्सप्रेस नहीं है. 18 ओवर बाकी बचे हुए हैं और इन 18 ओवरों में बहुत एक बड़े स्कोर की तलाश में भारतीय टीम रहेगी ताकि पहले बल्लेबाजी का निर्णय जो उन्होंने लिया उसमें वो कामयाब रहे और एक अच्छा स्कोर सामने रखे साउथ अफ्रीका के, क्योंकि बहुत ही गहरी बल्लेबाजी है साउथ अफ्रीका के पास.
0: 23 for no loss. Once again, with outside the off stump, the first ball of caps, so they've kept a sweeper cover of the very first delivery. Now, this is what's been happening in the first two overs. India, of course, winning the toss and batting first from South Africa's perspective. They've got two experienced bowlers out there, and that's Marizan Karp and Shabnim Ismail. Now, what they've been doing is either bowling on the pads or a lot of width outside the off stump, and that is tailor-made deliveries for Smriti Mandana and Shefali Verma to score off. Now, they'll have to try and hit the top of our ball in that corridor of uncertainty. Once again on the pass, the next delivery to Smriti Mandana. Nicely played on the onside for one more. So, two singles of Karp's over. And Karp, of course, gave 9 runs in the first over, whereas Shabnim Ismail gave 14. And Karp gave 1 boundary and Shabnim Ismail 2. And that's what, from India's perspective, one must say, this is a very, very good start. Very sure start. Marizan Karp this time to Shefali Verma. Once again on the pads. Overbalances offense. Shefali Verma, but plays it nicely off the pads down to square leg for a single. And he ball on the pads. He just rolled the wrists on that one. And enough runs there to get. One more to Shefali Verma. She's up to 13 of 6. Smriti Mandana is 13 of 9. India 2.3 overs. 26 for no loss. And this is certainly, that's why we say, a very, very good start for India. The current run rate already, 10.4. Here is Marizan Karp, this time to Smriti Mandana on the leg and melt. Some beautifully driven on the onside. Might well carry down to the long odd bar.

0: Hungry for food.
1: Yelaga, Abhaka Choka.
0: The timing on that was so good. Now, when a ball gathers momentum on the turf as it travels, tells you a lot about that timing. On the pads for sure, but how well was that timed? Beautifully timed. Gathered momentum on the turf as it went down to wide long on for four. Cap is certainly distraught, but if you're going to continue bowling on the pads with outside off stump, this is what's going to happen. You're going to go for boundaries.
2: 2.4 ओवर्स के बाद भारत 30 के अपने स्कोर पर पहुंचा हुआ। स्मृति मानधना 17 रन पर खेल रही हैं, 10 गेंदें अभी तक उन्होंने खेली हैं। कैप की अगली गेंद और उसे कट किया, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में एक पूरी जिसको बोलते हैं कॉरिडोर लगा रखा है ऑफ साइड पर स्मृति मानधना के लिए, क्योंकि सबको मालूम है और खासतौर पर साउथ अफ्रीका की टीम को यह मालूम है कि उनके जो बल्ले हैं वो स्केयर की तरफ ज्यादा चलता है और बहुत एक्यूरेट भी चलता है। प्लेसिंग और टाइमिंग दोनों अपने पास रखती हैं वो।
0: एब्सोल्युटली, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट यू मेड। एक्चुअली बरिजान कैप लकी टू गेट अवे विद दैट, दैट द शॉट आउटसाइड द ऑफ सम इनफ विथ जस्ट वेंट स्ट्रेट टू दैट फील्डर एट पॉइंट वाइड ऑफ द क्रीज। दैट्स बरिजान कैप एंड शी इज बोल्ड। लुक एट दैट फेरोशियस लुक ऑन बरिजान कैप। Went wide of the crease, changed the angle, brought that ball into the left-hander, and Smriti Mandana is castled. Just as we were saying, that in India have got a good start over here, 30. They lose the big wicket of the in-form Smriti Mandana, clean ball by Marizan Kapp.
2: एक बहुत ही नए तरीके की शॉट खेलने की कोशिश करी, हालांकि स्मृति मानधना ऐसी शॉट्स खेलती हैं, लेकिन अभी समय और टाइम नहीं था इस शॉट को खेलने का। पूरी तरह से बीट हुई, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रही थी मैरिजाना कॉप। एक शानदार ऑलराउंडर है और समझती है गेंद को, इसलिए उन्होंने विकेट टू विकेट बॉल रखी और एक नई जिसे स्कूप के रूप में उठाने की कोशिश की थी स्मृति मानधना ने, और पूरी तरह से बीट हुई और गेंद जो थी बिल्कुल विकेट के ऊपर थी और पूरी तरह से छकाया उन्होंने और बोल्ड किया। एक बहुत बड़ी विकेट साउथ अफ्रीका ने अपने लिए अर्जित करी और स्मृति मानधना के रूप में 17 रन बनाकर वापस पवेलियन में।
0: एब्सोल्युटली, यू नो द थिंकिंग इज व्हाट आई लाइक्ड ओवर देयर। एब्सोल्युटली, शी वेंट वाइड ऑफ द क्रीज एज वी सेड दैट, सडनली वी सॉ शी गोइंग वाइड ऑफ द क्रीज, ड्रॉप्ड दैट बॉल इन। मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज वर ऑन द पैड्स और आउटसाइड द ऑफ सम लॉट ऑफ विड्थ। For a change, went wide of the crease, brought it in, good thinking. Smriti, of course, tried to play the modern T20 game stroke, the scoop over fine leg, but also the slow ball. So it went through, the bat went early, the ball went through, and that was the end of Smriti Mandana. It's a huge wicket, I can tell you, because Smriti Mandana is in form, and that's why you saw, I mean, Marizan Kapp was so ferocious out there. Three overs bowled, 30-1. Yastika Bhatia comes in. Now India need a very, very good partnership from here on. Chloe Tryon. Well tossed up, and she's found the gap over there. Shefali Verma between extra cover and mid-off down to the wide long off boundary for four.
1: Ye laga, abha ka choka.
2: और शिफाली वर्मा के बल्ले से ये निकलता हुआ खूबसूरत चौका ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। आगे बढ़कर कुछ कदम आगे निकाले और उसे कवर बाउंड्री के बाहर उन्होंने धकेला चार रन के लिए। एक खूबसूरत शॉट लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप, लेग स्टंप के बाहर गेंद और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: Well, Shefali is not going to stop. If we're going to bowl those kind of ones, the last delivery was exactly there for the sweep. And Shefali Verma goes through with it down to the backward square leg boundary for four. Beautifully played. 38-1 India. 3.2 overs. I just wonder, was it right to bring in Chloe Tryon? Round the wicket. Here's Chloe Tryon. This time to Shefali Verma, who goes down the wicket. Lofts it out and high. Has she got the distance? Over long goal for the first six of the match.
1: ये लगा आभा का छक्का।
2: और इस मैच का ये पहला छक्का शेफाली वर्मा के बल्ले से निकलता हुआ आगे बढ़े और उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर भेजा। उन्होंने खूबसूरत स्ट्रोक पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरे टाइमिंग के साथ इस गेंद को उन्होंने सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया। 74 मीटर लंबा ये छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ और इस छक्के के साथ भारतीय स्कोर जो बढ़ता हुआ 44 रन पर पहुंचा एक खिलाड़ी के नुकसान पर 3.3 ओवर्स की समाप्ति के बाद। के अभी तक 7 चौके और 1 छक्का लग चुका है बल्लेबाजों के रूप में और शिफाली रुकने का नाम ही ले रही। अगली गेंद को उन्होंने धीरे से डिफ्लेक्ट किया डीप मिड विकेट की तरफ, एक प्रोटेक्शन लगाई गई थी जो डीप मिड विकेट पर, और जब तक गेंद को फील्ड किया गया बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले।
3: Prior to this single, she was 27 of 9. That pays a strike rate of 300. And that's an enormous strike rate for an opening batter to start off from. And that's why I would question this change. I mean, Shabnim Ismail went for a lot of runs in the first over. That's right. But she's got all the experience. And she's a very shrewd bowler. I wonder whether it was a good change to take her off. Here's Kirk Tribe this time from over the wicket. Short in lane outside the off jump. Beautifully played by Yastika Bhatia. That's her first delivery. And that's down to square third man inside the 30 yard. They want a single which is not really available over there. They yes, no, and finally decide against it, which was the right decision, certainly, because there was no run. Here is Chloe trying for the last time. It is over. That's a good ball. That's the incoming ball to the left hander. That's been punched away, and it will be cut off. The ball itself slows down just about 5 feet inside the square cover boundary. They take a couple 4 overs bowled. India 47 for 1, the current run rate 11.75. Yes, they've lost a wicket, but still it's a good start for India.
2: जी, ये बहुत अच्छी स्टार्ट है क्योंकि 47 रन का जो स्कोर है 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद 11.75 की औसत पर अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रही है। और खास तौर पर अगर आप देखें शेफाली वर्मा का जो बल्ला है उसकी टाइमिंग जो है वो बहुत बेहतरीन चल रही है। ज्यादा जोर से मारने की वो कोशिश नहीं कर रही, गेंद को प्लेस कर रही है, गेंद को टाइमिंग के साथ खेल रही है, जिसका नतीजा उन्हें मिल रहा है। अभी तक उनके बल्ले से चौके और छक्कों की खूबसूरत बरसात होती हुई और भारत 47 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। कैप ने अभी तक 2 ओवर डाले हैं, ट्राइन ने 1 ओवर डाला है और शबनम इस्माइल ने जो 1 ओवर डाला था उसमें भी उन्होंने 11 रन दिए थे। लेकिन अगर आप बात करें तो मैरिजोना कैप जिस गेंद पर के उन्होंने आउट किया था स्मृति मांधना को, वो गेंद अपने आप में सब कुछ बोल रही थी और उनका एक्सपीरियंस उसमें उन्होंने पूरा झोंका हुआ था, तभी तो उन्हें विश्व का बेहतरीन ऑलराउंडर बोला जाता है।
3: Absolutely, but that's about Marizan Kapp. That the thinking was good, as I said earlier, going from wide of the crease and bringing that ball into the left hander. Having said that, Shefali Verma is on a roll of what over here, and we've seen one glorious extra cover drive, the lofted drive over long off for a six. We've seen the sweep, we've seen the short pitch delivery being pummeled away past mid wicket. So we've seen a wide repertoire of strokes already from Shefali Verma, and that is a very good start, augurs well for India over here for sure. Yastika Bhatia is in, and you know, at this stage 47 for 1 is certainly a very good start for 4 overs. That's almost close to about 12 runs an over, 11.75. Yes, Kapp's adding a fresh over on the leg stump, and that's been driven beautifully. There's a sweeper that will cut off, and that was an attempted yorker converted there by Shefali Verma. And driven beautifully down to the fielder at position, guarding that mid-wicket boundary. And that means one more to the Indian total. Two short of a 50 now. 48 for 1 India. 4.1 overs. Remember that Harmanpreet Kaur is playing her 200th T20 International, which is a record, a global record. A fantastic moment for the Indian captain. Here is Marizan Kapp. To the left-handed Yastika Bhatia, that's a much better delivery, not much pace on that one. Beautifully driven, straight round the ground. A lovely stroke down to the side screen for 4.
1: Ye laga, abha ka choka.
2: ये यशिका भाटिया के बल्ले से जो स्ट्रेट ड्राइव निकला है वो स्ट्रेट ड्राइव इतना सीधा था कि मिड ऑफ और मिड ऑन के बीच में बिल्कुल सीधी एकदम स्ट्रेट जिसे बोलते हैं उसके साथ ये चौका मिला और बल्ले दोनों मिड ऑफ और मिड ऑन को किसी भी खिलाड़ी को मौका नहीं मिला इस गेंद को रोकने के लिए और भारत ने अपने 50 रन पूरे किए हैं 26 गेंदों का सामना करते हुए भारत का स्कोर पहुंचा है 52 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर 4.2 ओवर्स की समाप्ति के बाद यशिका भाटिया खेल रही है 6 के अपने व्यक्तिगत योग पर और शेफाली वर्मा 11 गेंदों पर 29। अगली गेंद यशिका भाटिया को हल्के से उसे पुश भर किया उन्होंने कवर्स पर गेंद को फील्ड किया गया अच्छी गेंदबाजी कर रही है कैप क्योंकि कैप को यह मालूम है कि ये जो तीसरा ओवर उनके कप्तान ने उनको लगातार दिया है पावर प्ले में ही इसलिए दिया गया है कि वो कुछ विकेट्स चटकाएं और बल्लेबाजी को नियंत्रण में रखें इसलिए आप देखें कि वो गेंद सिर्फ ऑफ स्टंप के बाहर बाहर कर रही है और थोड़ा सा अपनी लाइन को पीछा भी खींच रही है
3: From Madhav KZ, here's Marizan Kapp this time to Yashika Bhatia. Now, what is Marizan Kapp trying to do over here? Bowled a similar kind of delivery which got rid of Smriti Mandhana. Wide of the crease into the left-hander. And Marizan Kapp, of course, got the success of Smriti Mandhana. But she's trying something similar with Yashika Bhatia. And the one that was a little bit over-pitched went down the ground for a four earlier on in this over. Marizan Kapp. From by the crease to Yashika Bhatia outside the off stump and completely misses contact. Once again, one of the things that Marizan Kapp is trying definitely repeatedly is not give any pace on the ball. And this power play is going to be very, very important. 52 already. India will probably aim to get somewhere around 65, which means there'll be an excellent power play, even though they've got rid of Smriti Mandhana. But still, it'll be a very good power play if India can get to somewhere around 65 or so. Wide of the crease, last ball of Kapp's over, and she tries to scoop it over. Does Yashika Bhatia almost like Smriti Mandhana, but this time doesn't make contact and through to the wicketkeepers. 5 overs bowled, India with a run rate of 10.4, 52 for 1.
2: 10.4 के औसत के साथ ये स्कोर बन रहा है 52 अभी तक भारत का स्कोर है एक विकेट के नुकसान पर 5 ओवर से समाप्त हो चुके हैं आखिरी गेंद को अगर आप देखें तो मैरिजन कॉप ने सीधी वही गेंद डाली थी जिस गेंद पर उन्हें यस विकेट मिला था स्मृति मांदना का और इस बार यशिका भाटिया भी पूरी तरह से चकमा खा गई सेम वही स्ट्रोक खेलने की कोशिश करी लेकिन कामयाब नहीं हुई और भाग्य का बहुत साथ रहा उनके साथ कि गेंद इस समय इस बार विकेट को छोड़ रही थी विकेट पर नहीं थी हालांकि अगर विकेट पर होती तो वो भी क्लीन बोल्ड हो जाती पूरी तरह से बीट हो गई थी स्ट्रोक लगाने से पहले उन्होंने जैसे मन बना लिया था कि मैं स्कूप जरूर करूंगी लेकिन इस स्कूप्स का फायदा नहीं हो सका इस्माइल अपना अगला ओवर लेकर आती हुई शबनम इस्माइल इस पावर प्ले का छठा और बहुत अहम हो शिफाली वर्मा उनके सामने राइट आर्म ओवर द स्टंप ये गेंद अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी हल्का से उसे पुश किया और उसे खुद ही गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया बिना किसी नुकसान के बिना किसी स्कोर पर भारत का स्कोर इस समय 52 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर 10.06 की औसत से रन बन रहे हैं और अभी तक भारत ने जो विकेट गवाया है वो विकेट स्मृति मांदना का है जो स्कूप लगाने के चक्कर में मैरिजन कैप की शिकार हुई थी उनके दूसरे ओवर में और अगली गेंद उसे पुश भर किया मिड ऑन पर फील्ड किया गया गेंद को बल्लेबाजों ने अपने अपने कदम अपनी क्रीज पर जमाए रखे ताकि कोई नुकसान ना हो सके 5.2 ओवर्स का गेम जो अभी तक हुआ है उसमें 52 रन बने हैं भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से 9.75 की औसत पे और ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है
3: या आई मीन शब्दी बिस्मिल ऑल ओवर स्पीड दोस दैट शिफाली विल गो आफ्टर Shorter leg outside the outswing that's been driven beautifully into the covers. There's a sweeper cover there. It will be cut off. I like this thinking. They go through for two. That's good running. One was converted to two. And that's a very important aspect of game when you run between the wickets so very beautifully. Now, if you look at the analysis, in her first over, she gave much more pace on the ball than Shabnam Ismail. This time, the previous delivery was just 71 clicks. This is just 73 clicks. She certainly cut pace on the ball, 71 and 73 miles per hour, ensuring that She doesn't give pace on the ball in the last power play over. Here's Shabnim Ismail into Shefali Verma. Short pitch bounce up by variation. This is what experience is all about. And that's why I was saying earlier on in this over, I was a little bit surprised that after the first over, yes, she went for runs. She was taken away and Chloe Tryon came in. And Chloe Tryon was hammered all around the park. That's a lovely bouncer. When you can bowl a bouncer like that beautifully between the shoulder and the head of the batter, you have the batter in all sorts of trouble. And that's what happened to Shefali Verma over there.
2: Aap ye dekhiye is ball ko jo शबनम इस्माइल ने जो गेंद करी थी वो गेंद बिल्कुल शॉर्ट पिच भी नहीं थी, शॉर्ट गेंद थी, लेकिन उसका डायरेक्शन जो था वो लेग स्टंप कर बैट्समैन को फॉलो करता हुआ जा रहा था। इसी बीच कुछ अपील भी करी गई है प्लेयर्स की तरफ से, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की तरफ से, और अंपायर ने इसका रिव्यू मांगा है। ये शायद कॉट बिहाइंड का उन्होंने कॉट बिहाइंड का रिव्यू मांगा है। शिफाली वर्मा अभी तक 31 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही है, 15 गेंदों का उन्होंने

0: উদ্ভাবন করে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সমাধান তৈরি করে, তাদের ক্ষমতায়ন করে এবং উন্নয়নের মূলধারায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে অবদান রাখে। ঊনকোটি জেলা প্রশাসন গতকাল নয়াদিল্লিতে 108তম সামিটের মঞ্চে স্কচ পুরস্কার পেয়েছে। ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক মেঘা জৈন এবং সদ্য বিদায়ী জেলাশাসক ডক্টর তমাল মজুমদারের হাতে এই গৌরবময় পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়, জানিয়েছেন ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সাগর শোভন দেবনাথ। স্কচ পুরস্কারটি একটি অসামরিক পুরস্কার। উল্লেখ্য যে গত বছর জুলাই মাসে ঊনকোটি জেলা প্রশাসন থেকে গাঁও কো আপনাও বদলাও লাও এই ভাবনায় উদ্ভাবনী কর্মসূচি সম্পর্ক চালু হয়েছিল। গ্রামীণ জনগণ ও প্রশাসনের মধ্যে সেতু হিসেবে এই কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল। এই কর্মসূচির সফলতার নিরিখে পুরস্কার পায় ঊনকোটি জেলা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ কলকাতায় সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ভারতীয় নৌবাহিনীর কাজের জন্য তিনটি জাহাজ INS দুনাগিরি, INS সংশোধক এবং INS অগ্রয় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। নৌবাহিনীর ওয়ারশিপ ডিজাইন ব্যুরোর নকশা করা এই যুদ্ধজাহাজগুলি নির্মাণ করেছে গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স। এই যুদ্ধজাহাজগুলি নৌসেনার যুদ্ধকালীন তৎপরতা, হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে এবং সাবমেরিন প্রতিরোধী যুদ্ধ ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করবে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশীয় নকশা ও প্রযুক্তিতে নির্মিত জাহাজগুলি ভারতের আত্মনির্ভরতার প্রতীক। ভারত আজ সমুদ্রপথে তার অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে। সাগরমালা কর্মসূচির আওতায় এই উদ্দেশ্য দেশের বিভিন্ন বন্দরে আধুনিকীকরণের কাজ চলছে। নদীপথে পরিবহনকেও শক্তিশালী করে তোলা হচ্ছে। ফুটবল বিশ্বকাপের ইতিহাসে সহস্রতম ম্যাচটি আজ জাপান বনাম তিউনিশিয়ার মধ্যে খেলা হয়। জাপান 4-0 গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে তিউনিশিয়াকে। এর পাশাপাশি চলতি বিশ্বকাপের শততম গোলটিও এসে গেল নেদারল্যান্ডস বনাম সুইডেন ম্যাচে। নেদারল্যান্ডসের খেলোয়াড় কোডি গাকপো এবারের বিশ্বকাপের শততম গোলটি করেছেন। অন্যদিকে ইকুয়েডর ও কুরাসাওয়ের মধ্যকার ম্যাচ গোলশূন্য ড্রয়ে শেষ হয়েছে। ভারতীয় সময় আজ রাত 9:30 স্পেন মুখোমুখি হবে সৌদি আরবের। এরপর রাত 12:30 বেলজিয়াম খেলবে ইরানের বিরুদ্ধে। আগামীকাল ভোর 3:30 উরুগুয়ের প্রতিপক্ষ কাভো ভার্দে, আর সকাল 6:30 নিউজিল্যান্ড মুখোমুখি হবে মিশরের। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত ঘরোয়া তৃতীয় ডিভিশন লীগ ফুটবল প্রতিযোগিতায় আজ দুটি খেলা হয়। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে প্রথম খেলায় ইয়ুথ ক্লাব 6-0 গোলে সবুজ সংঘকে পরাজিত করে। পরে একই মাঠে TTAADC 9-1 গোলে পান্থুই স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়ে দেয়। আগামী 24 ঘন্টায় দক্ষিণ গোমতী উত্তর ও ধলাই জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। আগামীকাল দিনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন 24 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকতে পারে। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন 25.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত 24 ঘন্টায় বৃষ্টি হয়েছে 11.2 মিলিমিটার। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ অংশগুলো আরও একবার। সারা দেশের সঙ্গে আজ রাজ্যেও দ্বাদশ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাক্তার মানিক শাহ বলেছেন, নিয়মিত যোগ অভ্যাস শরীর ও মনের সমস্ত ধরনের ক্লান্তি অবসাদ দূর করতে মুখ্য ভূমিকা নিতে পারে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিক্ষাগত উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বকাপ ফুটবলের 33তম ম্যাচে এসে গেল শততম গোল, যা বিগত 68 বছরের মধ্যে রেকর্ড গড়ল। আজকের মতো স্থানীয় সংবাদ এখানেই শেষ হল। পরবর্তী বাংলা স্থানীয় সংবাদ প্রচারিত হবে আগামীকাল সকাল 7:35।
1: और इस एक रन के साथ 107 पर पहुंची भारतीय टीम का स्कोर 4 खिलाड़ी के नुकसान पर हरमनप्रीत कौर खेल रही है 18 पर और दीप्ति शर्मा 14 के अपने व्यक्तिगत योग पर।
2: नेक्स्ट डिलीवरी इज पुल राउंड द कॉर्नर and they go through for a run. Good calling and good response there. So 7 runs and 4 deliveries in this Malabar over so far. Malabar has conceded 23 runs in 2.4 overs, more than normally what she does by her miserly standards. India's run rate is 7.9. Malabar round the wicket this time, fetched from outside the off stump and driven down to wide long on for a single. So 4 singles and that one boundary in this over. That takes India up to 109. One delivery in this Malabar over remaining now. And if India continue to score, current rate will end up at 158. They must probably be looking at somewhere around 170. Malabar around the wicket, short and length outside the half. Just cracking away between the third man fielder and the point fielder. Down to the back foot point boundary for four. Lovely stroke for Hamilton.
3: Ye laga Abha ka choka.
1: बेहतरीन स्क्वेयर कट हरमनप्रीत के बल्ले से और गेंद स्क्वेयर बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए और इस चौके के साथ हरमनप्रीत पहुंची 23 के अपने व्यक्तिगत योग पर और भारत 113 रन चार खिलाड़ियों के नुकसान पर 14 ओवर की जो गेम है वो भारतीय टीम की हो चुकी है। हमारे जो स्टेटिस्टिशियन है मोहम्मद ईशान उद्दीन साहब ने बताया है कि हरमनप्रीत और दीप्ति शर्मा की पार्टनरशिप 30 इनिंग्स में उन्होंने अभी तक 555 रन बना लिए थे और उसमें चार बार 50 के ऊपर की भागीदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में हो चुकी है और अभी तक इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में 30 रन की भागीदारी हो चुकी है। भारत 8.07 की औसत के साथ 14 ओवर में अब तक 113 रन चार खिलाड़ियों के रूप में बना चुका है। आउट होने वाली खिलाड़ी स्मृति मांदना, शिफाली वर्मा, यशिका भाटिया और जमीमा रॉड्रिक्स आउट होकर क्रीज पर वापस जाती हुई। हरमनप्रीत 23 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही हैं और दीप्ति शर्मा 15 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही हैं। इन दोनों के बीच में अभी तक 30 रन की बहुत बहुमूल्य भागीदारी हो चुकी है और मलावा ने अपने 30 ओवर में 3 ओवर में 28 रन खर्चे हैं। हालांकि हमारे साथी कमेंटेटर के साहब बोल रहे थे बहुत कंजूस है रन देने के मामले में, लेकिन इस बार भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी गेंद पर अभी तक 3 ओवरों में 28 रन अर्जित किए हैं और भारत अभी 113 रन पर खेल रहा है। चार खिलाड़ी गंवाने के बाद बाकी के बचे 6 ओवर्स में ये दोनों बल्लेबाज एक अच्छी भागीदारी बनाने की कोशिश जरूर करेंगी ताकि भारत को एक अच्छा स्कोर दिया जाए, ताकि जो बहुत लंबी इन डेप्थ बैटिंग है साउथ अफ्रीका की उसको रोका जा सके उस चेज को चेज करने के लिए।
4: 113 for 4. Now, interestingly, 6 overs to go. Marizan Kapp has got one. Ismail has got one. So that will make it 2 overs. And Kaka has got 2. She in all probability bowled 2. That will make it 4. And Nadine de Klerk has got 3 left. She'd probably bowl 2. Though Mlaba has got 1. I presume, having conceded 28 of 3, she may not be given one more. We'll have to wait and see. But certainly, Kaap will get one, Ismail will get one, and I presume Kaka will get 2. Nadine de Klerk just the one over for 5 runs, and she got the wicket of Jemima Rodrigues' cotton bowl. So it's quite possible that we'll see more of Nadine de Klerk as well. So this Indian innings is very interestingly poised, but one important factor one must point out over here is 14 overs have been bowled, not a single extra has been given. No balls, no wides, and not a single extra has been given so far, which is brilliant effort by the South Africans.
1: ये देखिए जी कितनी किफायती बॉलिंग करी गई है, कितनी डिसिप्लिन से गेंदबाजी करी गई है कि ना कोई बाय, ना कोई लेग बाय, ना कोई नो बॉल, और सबसे इंपॉर्टेंट जो वाइड है वो अभी तक एक भी अर्जित नहीं करी गई। बहुत ही डिसिप्लिन बॉलिंग करी गई है। यशिका भाटिया 15 पर आउट हुई थी, शिफाली वर्मा ने 31 रन बनाए थे और सबसे स्मृति मराना जो शुरू में आउट हुई थी 17 रन उन्होंने बनाए थे, 12 गेंदों का सामना किया था। हरमनप्रीत कौर खेल रही है 23 के योग पर, अभी तक उन्होंने 20 गेंदों का सामना किया है और दीप्ति शर्मा जिन्होंने अभी तक 10 गेंदें खेली हैं और उन्होंने 15 रन अर्जित किए हैं। दीप्ति शर्मा के बल्ले से एक चौका निकला है, हरमनप्रीत के कौर बल्ले के से 2, जमीमा रॉड्रिक्स ने आउट होने से पहले एक चौका मारा था, यशिका भाटिया ने आउट होने से पहले बेहतरीन 3 चौके अपने बल्ले से जड़े थे, शिफाली वर्मा ने भी 3 चौके जड़े थे और शिफाली वर्मा ने 4 चौके और एक छक्का जड़ा था आउट होने से पहले, और स्मृति मांदना ने आउट होने से पहले 3 चौके जड़े थे अपने 17 के योग पर। ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पर भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान ग्रुप ए का ये एक बहुत ही अहम मैच खेला जा रहा है। 14 ओवर्स में बिना किसी एक्स्ट्रा के भारत के अब तक 113 रन है चार खिलाड़ियों के नुकसान पर।
4: The wickets are really have lost so far. Smriti Mandana bowled by Kaap for 17. Shefali Verma called by Jafta of Ismail for 31. Yastika Bhatia, LBW to Kaka for 15. Jimmy Marotix, the last to go, cotton bowled by De Klerk for 12. And ever since, it's been Harmanpreet Kaur, the Indian captain, and Deepti Sharma are there in the middle. Kaur is 23 of 20 and Deepti Sharma is 15 of 10. So these two have really gotten together and they'll want to play till the very end and end this innings with a flourish. India were going at about over 11 and a half, and when they started losing wickets, obviously the run rate went down to around 7.7 in the last couple of overs, up to over 8, close to about 8.1 now, which means India will end at around 160 or a little more than that, but they'll want to look at least about 180. Shabnam Ismail from right of the crease, first ball on the leg and middle stumps, turned around the corner nicely by Deepti Sharma. They go through for one and they're happy with just the one, so the over starts off on a single. Shabnam Ismail 1 for 26 in 3 overs prior to this one, and she got the wicket of Shefali Verma, caught by Chafta. That's a lovely delivery, almost I'll call it a snorter, short pitch delivery, and Shefali Verma in two minds whether to play it or not. In the meantime, it was so well directed, a bouncer between her shoulder and the head, which is the perfect place in which you can pull a bouncer, have the batter in two minds. Also came a little bit slower off the wicket, and that's what happened when she ended up getting the faintest of tickles out to the gloves through to Chafta. Shabnam Ismail this time over the wicket, this short and length, that's been pulled away, a short arm pull or a short arm jab you can say, down to Kapp there on the mid wicket boundary for a single. So two singles in this over so far. Now very clearly Harmanpreet and Deepti have realized this is over number 15, and they will want to play at least another over or over and a half, and after that go after the bowling and get some boundaries in. Ismail two singles in his over so far, and she's bowling around the off stump. From round the wicket this time to Deepti Sharma on the leg and middle stumps for a change, and that's been turned away on the onside for a single. And when she's bowling to Harmanpreet Kaur, she's bowling over the wicket, pitching it on the off stump for Deepti Sharma. What she is doing is going wide of the crease, round the wicket, and trying to bring the ball in, also hitting the deck hard.
5: ये देखिए जी, बहुत मुस्तैदी से गेंदबाजी करी जा रही है, क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में उनका शुमार है शबनम इस्माइल का, और दोनों बल्लेबाजों को वो अलग तरीके से गेंदबाजी कर रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ये दोनों बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, और खास तौर पर हरमनप्रीत कौर को वो गेंद लेग स्टंप के बाहर देना पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि एक बहुत स्ट्रांग जोन है हरमनप्रीत कौर का अपनी ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और ये बॉल्ड बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधा विकेट के ऊपर, और भारत ने अपने कप्तान के रूप में एक बहुत बड़ा विकेट खोया है हरमनप्रीत कौर के रूप में। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि शबनम इस्माइल गेंद को ऑफ स्टंप पर रख रही हैं, और ऑफ स्टंप के आसपास वो गेंद को इसलिए रख रही हैं ताकि उस गेंद को कट ना किया जा सके, और एक गेंद टप्पा काने के बाद थोड़ा सा अंदर की आई और हरमनप्रीत कौर उसे कट करना चाहती थी, गेंद का अंदरूनी हिस्सा लगा और गेंद सीधा स्टंप पर, और भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका हरमनप्रीत कौर के रूप में, जो 24 के अपने व्यक्तिगत योग पर आउट हुई, 22 गेंदों का उन्होंने सामना किया, और ये 116 रन भारत के पांच खिलाड़ियों के नुकसान पर 14.4 ओवर्स की समाप्ति के बाद एक बड़ी विकेट इस्माइल शबनम इस्माइल ने अपने आप के पास अर्जित करी है, और इसीलिए उन्हें दुनिया के एक बेहतरीन गेंदबाजी के रूप में, गेंदबाज के रूप में जाना जाता है, और इस विकेट के साथ भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ 116 रन पांच खिलाड़ी के नुकसान पर आउट होकर जाती हुई भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने 24 रन बनाए आउट होने से पहले, और शबनम इस्माइल 3.4 ओवर्स में अभी तक उन्होंने 28 रन खर्चे। अगली गेंद ऋचा घोष ने उसे हल्का सा पुश भर किया और बॉल को फील्ड किया गया मिड ऑफ पर, बिना किसी स्कोर के, बिना किसी नुकसान पर भारत 116 रन पांच खिलाड़ी के नुकसान पर। ये 15वां ओवर चल रहा है और भारत के अभी 116 रन अर्जित किए हैं, 7.82 की औसत से ये बल्लेबाजी हो रही है भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से। इस्माइल 3.5 ओवर्स में अभी तक उन्होंने 28 रन दिए हैं, और दो विकेट अपनी टीम के लिए उन्होंने अर्जित किए हैं। और 116 रन पांच खिलाड़ी के नुकसान पर अभी जो एक बहुत ही बहुमूल्य विकेट भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर जो अपना 200वां T20 इंटरनेशनल मैच खेल रही थी उनका अर्जित किया, उन्होंने बोल्ड किया, उन्हें 24 के व्यक्तिगत योग पर 22 गेंदें उन्होंने खेली थी। आखिरी गेंद इस ओवर की एकदम विकेट टू विकेट की गई बॉल और ऋचा घोष ने उसे हल्का सा पुश भर किया, खुद इस्माइल ने उसे फील्ड किया और ओवर की समाप्ति 116 रन पांच खिलाड़ी के नुकसान पर।
2: What a spell of bowling, the last three overs by Shabnim Ismail. The first over went for 17, the remaining three have gone just for 11. That tells you the story of Shabnim Ismail. The first over went for 14, I beg your pardon, the first over went for 14, the remaining three have gone for 14. That's each over is less than 5 an over, and that tells you a story how and one of the reasons that she's been successful in over number 2, 3 and 4, she realized quickly enough with all the experience, cut the pace on the ball. The first over was consistently above 120, 122 or thereabouts. And from the second over onwards, it was around 111, 107. So that is what has got her the success. And got the big wicket of Harmanpreet Kaur. First ball of a fresh over. Short lane outside the off stump from Kaka. This time to Deepthi Sharma. And Deepthi Sharma square cuts it away. Probably gets the feeling she missed out on that because after quite some time, there was width on the delivery. Otherwise, they bowled really nagging line and length. Have the South Africans to the Indians. Here is Kaka from over the wicket to Deepthi Sharma. A lot of width on that one, and Deepthi Sharma goes after it, doesn't quite connect. That's because that was bowled slower through the air, very slow delivery, and Deepthi Sharma not picking the slow one, and the ball going through to Sinalo Chafta. So two dot balls to start the over. That's the 16th one of the innings, and Kaka really bowling very intelligently over the wicket, and there's been pushed gently in the onside. They go through for one, just the one run in three deliveries in this over so far from Ayabonga Kaka. That'll bring in Richa Ghosh. Now Richa Ghosh, we know, can dunk the ball. Now if the wicket is slower, the ball is not coming onto the bat, sometimes a batter who's got the power can generate power and hit the ball out of the park over boundaries. Now Richa Ghosh has got that kind of power. It'll be an interesting contest between Kaka and Richa Ghosh. What's important to see is what's the line that Kaka now bowls to Richa Ghosh. And here is Kaka from over the wicket to Richa Ghosh. That's the off stump, right on the off stump, and Richa Ghosh has to push it down to long on. Now no width, no pace, and that's a good way to go for also bowling the ball exactly on the off stump, trying to hit the top of off.
5: आप ये देखिए कि गेंदबाजी कितनी डिसिप्लिन्ड हो रही है, विकेट टू विकेट गेंद कराई जा रही है ताकि बल्लेबाज को मौका ना मिले एक अच्छा शॉट खेलने का, एक लंबा शॉट खेलने का, इसलिए बहुत सीधी गेंद करी जा रही है अगली ओवर ऑफ स्टंप के बाहर और उसे सीधा खेला, लेकिन लॉन्ग ऑन का लॉन्ग ऑफ का फील्डर बिल्कुल स्ट्रेट रखा गया था इसी शॉट को रोकने के लिए ताकि कोई स्कोर ना बन सके, और भारत 118 रन पांच खिलाड़ी के नुकसान पर 15.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद।
2: द फर्स्ट सिक्स ओवर्स अ पावर प्ले, इंडिया स्कोर 59 फॉर 2, जस्ट 13 डॉट्स, 7 टू 15, 7 overs 15, 57 runs came on 3 wickets, and Deepthi Sharma waits for that one at the very last moment, plays a lovely cut, a very late cut one can say, and that goes down to the third wind boundary for 4, the last ball of Packers over.
3: Yeh laga abha ka choka.
5: और इस चौके के साथ भारत का स्कोर पहुंचा 122 रन पांच खिलाड़ी के नुकसान पर। दीप्ति शर्मा के बल्ले से ये स्क्वेयर कट करने की कोशिश थी, बाहरी किनारा जरूर लगा और थर्ड मैन की दिशा के बाहर ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। 4 रन के लिए भारत का स्कोर पहुंचा 122 रन पांच खिलाड़ियों के नुकसान पर, ये 122 रन भारत ने अर्जित किए हैं 16 ओवर्स में 7.63 की औसत के साथ। इस्माइल शबनम इस्माइल ने 4 ओवर्स में 28 रन दिए हैं, और अभी अभी खाका ने अपना तीसरा ओवर किया पूरा। आयबन खाका ने 3 ओवर 17 रन 1 विकेट, मैरिजोना कैप ने 3 ओवर में 21 रन दिए, और डी क्लार्क अपने दूसरे ओवर के साथ। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और उसे हल्का सा दिशा दिया, और थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन।
3: ये लगा आभा का चौका.
4: I just suspect that ball probably slipped out of the clerk's hand. Have a look at that as we see that again. But good scoring opportunity. And going after that, Rajisha goes, gets the outside edge down to the third bed boundary for four. Good start to the over from India's perspective. 126 for five. De Klerk this time. This is a much better delivery on the off and middle stumps. And that's been driven down to orthodox mid wicket for a single. And Malaba, the fielder on that occasion. The first ball of that over was she probably went for the yorker on that occasion, but that ball slipped from her palm, I get the feeling, the more we see it again and again. Run rate for India now is 7.8. De Klerk after the boundary coming back with just a single, readjusting her field. 127 for 5 now. 22 is Deepthi Sharma. She's the strike of De Klerk over the wicket. De Klerk close to the stumps. Outside the leg stump, goes for the sweep, but no pace on that one. The slow ball, and just goes gently lobbing across on the onside for one more to India. One more to Deepthi Sharma. India now 128 for 5.
5: Bharat 128 run, 5 khiladi ke nuksan par. Deepthi Sharma khel rahi hai 23 ke apne vyakti ka jyog par. Aur Richa Ghosh, jo abhi abhi aayi hai, unhone pehli gend par chauka lagaya 6 ke apne vyakti ka jyog par ballebazi karti hui. 16.3 overs ke baad bhartiya team ne 128 run banaye. Ye gend off stump ke bahar cut karna chahti thi, kamyab nahi hui. Aur wicket ke piche khadi jo wicket keeper hai, unhone use mustaidi se gather kiya bina kisi nuksan ke aur bina kisi score ke. Kyunki aapko
4: they're not picking the slow one. Yeah. That's the important factor over there. It's every delivery, one after one, cutting pace on the ball. Once again, Richard Ghosh was trying to place it on the offside. Ball coming so slowly in the air that the ball is going through. This is good bowling. After the first four, coming back well. De Klerk this time, and Richard Ghosh goes after it and pulls it to wide long on just for a single. Once again, doesn't get it from the meat of the mid because she couldn't get under the ball. So slowly does the ball come. And also, it's an interesting thing to think about. India 129. Now, this wicket is not as conducive as probably one thought. The ball is coming slower off the wicket, much slower than one anticipated. It could be that even a 160 score could be good. De Klerk for the last time in the double, then slipped around the corner to bad ball outside the leg stump. Down to the square leg boundary for four.
3: ये लगा आभा का चौका.
5: दीप्ति शर्मा के बल्ले से निकला हुआ ये बेहतरीन शॉट लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर. गेंद को सिर्फ उन्होंने दिशा भर दी और गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई. और इस चौके के साथ भारत का स्कोर पहुंचा 133 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर. और दीप्ति शर्मा धीरे धीरे अपने बल्लेबाजी से मुस्तैदी से 27 के अपने व्यक्तिगत योग पर पहुंचती हुई. बाकी बचे तीन ओवर में भारतीय बल्लेबाज अच्छा रन बनाने की कोशिश करेंगे. हमारे स्टैटिस्टिशियन मोहम्मद उशान उदीन साहब ने बताया कि ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा ने इसी साल अप्रैल में जो दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम गई थी, भारत को 65 रन की एक साझेदारी छठे विकेट के लिए दी थी. जोहानसबर्ग में यह मैच खेला गया था और भारत हालांकि इस सीरीज में हार गई थी. अगली गेंद ऋचा शर्मा ने उसे मिड विकेट की तरफ खेला और जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, नए ओवर की पहली गेंद थी ये. मलावा के ने ये गेंद डाली थी. मलाबा ने अभी तक 3.1 ओवर में 29 रन दिए हैं बिना किसी विकेट के. भारत का स्कोर पहुंचा हुआ है 134 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर. 17.1 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत का ये स्कोर है. साउथ अफ्रीका ने अभी तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है, जिसमें कैप ने 3, इस्माइल ने 4, ट्रायन ने 2, मलाबा अपना चौथा ओवर डालती हुई. लेफ्ट आर्म ऋचा घोष को ये गेंद लेग स्टंप के बाहर और ये वाइड का इशारा, पहला वाइड इस मैच का साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने डाला है. 17.1 ओवर्स के बाद ये पहला एक्स्ट्रा रन अर्जित किया है साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों ने. अगली गेंद और उसे उठाकर मारा है लॉन्ग ऑन पर. इस गेंद को बहुत ही मुस्तैदी से फील्ड किया गया, लेकिन तब तक पर्याप्त समय था. ऋचा शर्मा और ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा के पास दो रन चुराने के लिए और छठे विकेट की भागीदारी में अभी तक 21 रन अर्जित कर चुकी हैं ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा। भारत का स्कोर 137 रन पांच खिलाड़ी के नुकसान पर 17.2 ओवर्स के बाद। मलाबा अपने ओवर की अगली गेंद और लेग स्टंप के बाहर और उठाकर मारने की कोशिश करी थी, लेग के ऊपर एक आसान सा कैच और इसी के साथ आउट होकर वापस जाती हुई दीप्ति शर्मा जो कि एक अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद और उसे उठाकर मारना चाहती थी। अच्छा कैच पकड़ा गया मैरिजॉन कैंप द्वारा। अच्छी फील्डर है, अच्छी गेंदबाज है और अच्छी बल्लेबाज भी है और भारत ने अपना छठा विकेट खोया दीप्ति शर्मा के रूप में जिन्होंने 29 रन बनाए 21 गेंदों का सामना किया और इन 29 रनों में शानदार तीन चौके भी शामिल थे और ये विकेट उन्होंने बॉलर को गिफ्ट के रूप में दिया। हालांकि वो स्कोर को थोड़ा तेजी से बढ़ाना चाह रही थी लेकिन नाकामयाब हुई और एक बहुत ही बेहतरीन कैप जो कैच पकड़ा गया मैरिजॉन कैप के द्वारा जिसकी बदौलत भारत ने अपना छठा विकेट किया खोया। 137 रन भारत ने अभी तक बनाए हैं 17.3 ओवर्स की समाप्ति के बाद ऋचा घोष के कंधों पे और अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी अगले 2.3 ओवर्स में भारत कितना स्कोर खड़ा कर सकता है भारत इस मैच में। अगली गेंद गेंद स्पिन लेती हुई आप ये देखिए टप्पा डलने के बाद पूरी तरह से गेंद बाहर निकली और अनुदिति उसको मारना चाहती थी पूरी तरह से बीट हुई। खुशकिस्मत रही गेंद ने बल्ले का कोई बाहरी किनारा नहीं लिया और नुकसान ना हो सका। मलावा अपने ओवर की पांचवी गेंद के साथ अच्छी गेंद ऑफ और मिडल पर और उसे हल्का सा पुश भर किया। ऋचा घोष ने एक रन चुराया और अरुणदिति ने अपना खाता खोला और ऋचा घोष अब सामने मलाबा के चौथे ओवर की आखिरी गेंद पे 17.5 ओवर्स के बाद भारत का स्कोर है 138 रन छह खिलाड़ी के नुकसान पर। मलाबा अपने ओवर की अगली गेंद ऋचा घोष को जोर से मारने की कोशिश थी लेकिन नाकामयाब रही। मिडॉन पर खड़े फील्डर के सीधा हाथों में बिना किसी स्कोर के बिना किसी नुकसान के और 18 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर पहुंचा है 138 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अभी अभी जो बल्लेबाज आउट होकर गई हैं दीप्ति शर्मा एक अच्छा उन्होंने बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था 29 के अपने व्यक्तिगत योग पर आउट हुई थी 21 गेंदों का उन्होंने सामना किया था आउट होने से पहले और इन 29 रनों में तीन चौके उनके बल्ले से निकले थी। दीप्ति शर्मा कॉट मैरिजॉन कैंप बोल मलाबा 29 रन ऋचा घोष खेल रही है 8 के अपने व्यक्तिगत योग पर। हालांकि उनके बल्ले से अभी तक कोई जोरदार स्ट्रोक नहीं आया जिसके लिए वो जानी जाती हैं पहचानी जाती हैं और अगले 2 ओवर में वो स्ट्रोक्स क्या हमें देखने को मिलेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। खाका अपने ओवर के साथ तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर।
6: हाय बुग्गा खाका स्टार्ट्स अ फ्रेश ओवर राइट आर्म ओवर द विकेट एंड राइट टू द ब्लॉक होल डग आउट बाय अरुंधति रेड्डी देयर फॉर अ सिंगल बट दिस इज व्हाट इंडिया वांट दे वांट ऋचा घोष ऑन एज मच स्ट्राइक एज पॉसिबल शी इज द वन दैट कैन डू डैमेज to the South African bowling over here. Kaka, so far 1-18 in 2 overs prior to this one. And Richard Ghosh now. Ayabonga Kaka over the wicket to Richard Ghosh. Once again goes for the block hole and that's been driven down to long off for a single. So just the 2 singles so far. Good from South Africa's perspective. 18.2 overs. They bowled very disciplined manner right throughout. Just the 1 wide. And we have only 10 deliveries remaining in this innings of 20 overs. That tells you a story in itself. No balls, no wides. Here's Ayabonga Kaka. This time reach a goal to Arundhati Reddy. Makes room for that. But Kaka thinks well. Follows the batter on that occasion. Bowls right on the pads and Arundhati Reddy can do no more than dig it out for another single. Gets the nod from her captain. Does Kaka. Then Wolfart telling Kaka, well bowled. Because she followed the batter and didn't give any room to Reddy, who was trying to go inside out on that one. Here's Ayabonga Kaka to Richa Ghosh, who comes down the wicket. And she once again follows. Has she found the gap? A lovely stop there, right on the mid-wicket boundary. But I just reckon they'll probably get a couple for that. Lovely fielding once again by the South Africans. That is Chloe Tryon there, who dived right across and prevented what could have been a boundary. So another two saved over there. They would have saved at least about 8 or 10 runs by good fielding, around 8 for sure in this innings, which now has got another 8 deliveries left. Yes, Ayabonga Kaka this time to reach a goes once again the path. This will go down to the square leg boundary for 4.

0: Babu, Coco, Hilaga, Abhaka, Choka.
1: और ऋचा बल्ले ऋचा घोष के बल्ले से ये निकला हुआ चौका जिससे स्कोर भारत का पहुंचा है 147 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। और एक अच्छा शॉट था, उसे सिर्फ दिशा भर दी और गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बहुत देर के बाद ये एक चौका भारतीय बल्लेबाजों के हाथ से आया है। हालांकि कोशिश पूरी करी गई थी लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ लॉन्ग पर लेग पर खड़ी फील्डर के द्वारा, लेकिन नाकामयाब रही और भारत का स्कोर पहुंचा 147 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर 18.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद। लेग स्टंप के बाहर गेंद और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर वाइड के रूप में 4 रन।
0: ये लगा आभा का चौका।
2: This is what the pressure of a boundary can do even to an experienced campaigner like Kaka, and also the initial movement of Richa Ghosh trying to give her some little bit of room, Kaka trying to follow the batter, and on this occasion Richa Ghosh not moving as much and a bit premeditated. Kaka over there thinking that she'd probably move more to the leg side, and that's why it ended up being 4 wides. Costly runs. Kaka this time to Richa Ghosh, this time tries to hit the tram lines wide of the off stump, gets it perfect. That's a dot ball, but an expensive over there from Ayobuka Kaka. 13 came of that, and the end of 19 overs. India 152 for 6. We'll have to wait and watch whom the ball is given to for the last over. Definitely, I believe it will be Marizan Kapp, because she's bowled so well. The last over will be bowled with Marizan Kapp.
1: भारत का स्कोर इस समय 152 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। भारत ने पहले 50 रन बनाए 26 गेंदों का सामना करते हुए, दूसरे 50 रन यानी कि 51 से 100 के बीच में 51 बॉलों में उन्होंने ये 50 रन अपने बनाए और 101 से 150 का आंकड़ा पार करने के लिए भारतीय बल्लेबाजों ने 30 गेंदों का इस्तेमाल किया तीसरे 50 रन को पार करने के लिए। और भारत इस समय 19 ओवर की समाप्ति के बाद 152 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। ऋचा घोष खेल रही है 15 रन के अपने व्यक्तिगत योग पर और अरुंधति खेल रही है 3 रन के अपने व्यक्तिगत योग पर। भारत का रन रेट है 8 और मैरिजन कैप अपने आखिरी ओवर के साथ, पहले 3 ओवर में उन्होंने 21 रन दिए थे 1 खिलाड़ी के नुकसान पर और राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, लेकिन बॉलिंग मार्क पर आकर शायद कुछ डिस्ट्रैक्शन हुई है, कुछ दिक्कत उन्हें महसूस हुई है, इसलिए वो वापस दोबारा से अपने बॉलिंग मार्क पर जाती हुई। मैरिजोना कैप ने 3 ओवर में 21 रन दिए, शबनम इस्माइल ने 4 ओवर में 28 रन, ट्रेवन ने 2 ओवर में 23 रन, मिलावा ने 4 ओवर में 33 रन, आयमोंगा खाका ने 4 ओवर में 31 रन और नदीन दिकलाक ने 2 ओवर में 16 रन। अगली गेंद और उसे खेला गया है डीप कवर्स की तरफ, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन बल्लेबाजों ने चुराया और इस 1 रन के साथ भारत का स्कोर पहुंचा 153 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। ग्रुप ए का ये जो अहम मैच आज ओल्ड ट्रैफर्ड के इस मैदान पर खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने अभी तक 153 रन अर्जित किए हैं 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। ऋचा घोष अब सामना करती हुई मैरिजन कैप के आखिरी ओवर की दूसरी गेंद राइट आर्म ओवर द स्टंप्स और उसे उठाकर मारने की कोशिश करी, लेकिन एक फिर से आसान सा कैच शॉट फील्डर ने जो लॉन्ग लेग पर शॉट फाइन लेग पर जो फील्डर था उसके हाथों में बल्ले ने गेंद का बाहरी किनारा लिया गेंद ने और सीधा चढ़कर फील्डर के हाथों में बिना किसी गलती से इस कैच को लपका और भारत को अगला झटका मिला ऋचा घोष के रूप में। हालांकि भारत को बहुत उम्मीद थी कि आखिरी ओवर में ऋचा घोष के बल्ले से कुछ आक्रामक स्ट्रोक्स देखने को मिलेंगे। कॉट खाका बोल्ड कैप ऋचा घोष 15 के अपने व्यक्तिगत योग पर वापस जाती हुई, 14 गेंदों का उन्होंने सामना किया और भारत एक इस विकेट के साथ 153 पर 7 खिलाड़ी आउट हुए। भारत के ऋचा घोष अभी अभी आउट होकर वापस जाती हुई 15 के व्यक्तिगत योग पर। 19.2 ओवर के बाद भारत का स्कोर पहुंचा हुआ 153 रन 7 खिलाड़ी के नुकसान पर।
2: Once again the slow ball doing the trick over there for me, and that's what I've been saying right throughout this innings. They have not given any pace on the ball at all, and Marizan Kapp with all the experience, and what Richa Ghosh did there was went through with this stroke. The ball came in later, took the top edge and ballooned up to the field at short fine leg, and that was easily taken by Kaka. As here is Kapp, this time

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्री हिट 20 में। मेरा नाम है मुनीश जौली, मेरे साथ मुदिता है और हमारे साथ तीन खास मेहमान यहां पे मौजूद हैं। वैशाली माथुर, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रविंद्र सिंह, बीसीसीआई से क्वालिफाइड कोच और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उत्थरा गणेशन। और आप जानते ही हैं कि 159 रनों का लक्ष्य भारत ने दिया है साउथ अफ्रीका को। कुछ लोग कह रहे थे कि ये बैटल ऑफ वॉरियर्स है, वो वॉरियर जो 50 ओवर का जो फॉर्मेट था उस वर्ल्ड कप के फाइनल में खेले थे, लेकिन ये मुकाबला कुछ वैसा ही लग रहा है। सबसे पहले वैशाली आपसे जानना चाहूंगा, यहां पे खुश हैं स्कोर के साथ?
1: थोड़ा और बेटर हो सकता था, क्योंकि पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो वो कहीं ना कहीं लैक हो गई है एंड कोई भी ऐसा बैटर नहीं था जिसके बैट से कॉन्टिन्यूस स्कोर आया हो।
0: ओके,
1: एंड उसके साथ अगर देखा जाए इस मैच की बैटिंग लाइनअप के बारे में तो मोस्टली आउट एक ही वे में हुए हैं एंड उस पे हमें फोकस करना चाहिए।
0: वो भी समझा दीजिए किस वे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा मदद
1: हमें अकॉर्डिंग टू बॉल खेलना चाहिए था, जो हम उसको कट करके खेल रहे थे वो नहीं करना था हमें। हम हमेशा लेग की साइड पे क्यों रन देखने की कोशिश करते हैं, जब हम कवर्स के ऊपर से भी हम इतना जिगरा रखते हैं कि मार सकते हैं तो वो भी हम कर सकते थे। उसको माइंड, जो भी बैटर आ रहा था, जेमिमा भी आई तो उनको ये देखना चाहिए था कि बैटर कैसे आउट होके गया कि वो गलती हम भी ना करें।
0: एक और शख्स हमारे साथ यहाँ है रविंदर जी, लेकिन एक मोहतरमा है जिनकी आवाज बड़ी मीठी है, कोयल सी उनकी बोली है। आपके चेहरे में स्माइल कम होगी पर 159 अच्छा स्कोर होता मुदिता
2: जी, लेकिन शायद उम्मीद से कुछ कम रह गया जो हमारे एक्सपर्ट्स ने पहले उम्मीद जताई थी। रविंदर, जो हम पहले बात कर रहे थे मिडिल ऑर्डर की, कि अगर उन पर प्रेशर आया तो क्या वो उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, आज के प्रदर्शन को देखकर क्या कहना चाहेंगे आप?
3: देखिए, स्टार्ट तो अच्छा ही था, तीन पहले जो स्मृति आउट हुई 3 में 30 थे, 6 में 54 रन थे, स्टार्ट में दिक्कत नहीं थी, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जब विकेट जो गई हैं वो सबसे बड़ी बात है कि विकेट थोड़ा स्लो था, इतना विकेट के जो स्लो था, उनके शॉट्स पे जो रिवर्स जो उल्टे खेल रहे थे, रिवर्स वगैरह कर रहे थे, उसके लिए थोड़ा पेस चाहिए आपको बॉल के अंदर। पेस होगा तभी आप उसको शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से मार सकते हैं, लेकिन अगर आप में पेस नहीं, फ्लाइटेड बॉल है उनको आप मारोगे तो फाइन लेग पे कैच ही जाएगा। सबसे बड़ी गलती करी स्मृति ने, जो इतना बढ़िया बैटिंग करते करते 3 ओवर में ये 30 रन का स्टार्ट था, उसके बाद ये गलत शॉट खेला। 160 रन इस विकेट में मुझे कम लग रहे हैं, 180 का हमारा जो था कि 180 तो बनने चाहिए, लेकिन अब डिपेंड, विकेट स्लो है, स्पिनर्स हमारे पास अच्छे हैं, तो ये मैच हो सकता है कि अगर स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म करें तभी हमारी, तभी मैच में कुछ फाइट।
0: सो कमिंग टू यू उत्तरा, नो क्रेडिट टेकन अवे फ्रॉम द फास्ट बॉलर्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑफ कोर्स मार्जिन कैप 2 for 27 in 4, शबनम इस्माइल 2 for 22 in 4, बट अपार्ट फ्रॉम दैट something which I feel did the damage for the Indian innings were the 40 dot balls, almost 40 dot balls that the Indians played.
4: I think the dot balls had a dual effect. One, of course, they kept the scoring low, and two, those dot balls were the ones that forced Indian players to go for shots which otherwise perhaps they would not have done. Like Vaishali said, there were no partnerships, and that was also because every couple of dot balls or every 3 or 4 dot balls meant they tried to go for a big shot without realizing that just swinging your bat does not bring you runs, especially when you're up against players like Cap and Ismail, who have a ton of experience between them. They know exactly what pace to bowl and when to hold themselves back. It's not always going all out that pays out, and that is where that's why I said that it played a dual role. It did not just stop the runs, but it also forced Indians to go for shots, which meant that they ended up losing wickets in ways that they shouldn't have done, and eventually we see that in the scoreboard.
2: जी, आपने बात करी शबनम इस्माइल और मरजान कैप की, वैशाली जैसी आशंका थी कि पावर प्ले में, और दे गॉट द ब्रेक थ्रूज इन द पावर प्ले, हमारे दोनों टॉप बैटर्स पावर प्ले में, जो हम डर रहे थे जिस बात से, वही आज फिर से हुआ है। शबनम इस्माइल जो अभी तक उतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाई थी, लेकिन आज के मैच में शफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर का विकेट उन्होंने निकाला है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उनका विकेट जरूर निकाला है, लेकिन अभी हम अगर बात करें उनकी बैटिंग लाइनअप की भी ना, तो वो काफी बेटर कर सकते हैं, और हमारे पास सबसे बेस्ट जो एक स्ट्रांग पिलर है वो है हमारे पास जो प्रेमा है, वो खेल रही है आज और वो सबसे स्ट्रांग पिलर है, और उन्होंने बैटिंग में भी काफी अच्छा किया है, और जब शेफाली वर्मा एंड श्रुति जब खेल रहे थे तो उनको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए था कि कैप उनके सामने बॉल डाल रही है, जो सबसे पहले T20 में जिन्होंने हैट्रिक ली थी वो वही इंसान है जिन्होंने सबसे पहले हैट्रिक ली थी, तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो उनको अकॉर्डिंग टू बॉल खेलना वहां स्मृति के लिए बहुत जरूरी था, उनको अवे जाके नहीं खेलना चाहिए था। एंड जो अगर साउथ अफ्रीका के मैच के बाकी लास्ट टू मैचेस जो उन्होंने खेले हैं उनके बारे में अगर उनकी बैटिंग को लेकर बात करें तो अभी तक कोई कंसिस्टेंसी है नहीं उनकी बैटिंग में, एक लोरा के अलावा अभी तक देखा नहीं गया कि किसी के बैट से काफी स्कोर अभी तक आया हो, 20 रन्स अबव बने हो, तो वो एक लैकिंग यहाँ पे हो सकती है। एंड हम इस पिच पे सबसे ज्यादा स्पिनर्स की विकेट्स भी हैं, तो हमारे पास ये बेनिफिट है कि हम श्री चरणी वो अभी मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, सेकेंड नंबर पे हैं, तो वो एक बेनिफिट दूसरा हमें वो भी मिल सकता है।
2: जी, इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक कॉलर जी, अपना नाम बताएं और आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी वेंकट रेड्डी जी, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछे। रविंदर,
3: बिल्कुल सही, रेड्डी साहब ने बिल्कुल सही बोला कि ये जो हमारे शॉट्स खेल रहे हैं रिवर्स शॉट्स, बड़े बड़े शॉट्स खेलने जा रहे हैं ग्राउंड, ये विकेट्स हैं, विकेट्स उतना आसान नहीं है, स्लो विकेट आ रहा है। अगर वो सिंगल सिंगल, जैसे अभी मनीष ने बात भी करी कि काफी डॉट बॉल्स हैं, उन डॉट बॉल्स में अगर 10-20 रन और फालतू बनाते थे तो भागने रहे तो 180 के आसपास बन सकते थे, तो लेकिन अब जो बन चुका है बन चुका है, इसमें 160 रन है, इससे इसी में फाइट करना है आपको।
0: और हम लोग मार्जिन कैप के बारे में बात कर रहे हैं, हम बाकी बॉलर्स के बारे में बात कर रहे हैं, भूलना नहीं चाहिए कि लॉरा वुलवार्ट एक बहुत experienced player hai, and Nutra, when she comes in, she brings in that I won't say the terror, but of course the pressure that's going to mount on the Indian bowlers.
4: Exactly, and like Vishali said ki unki batting bahut achhi nahi chali hai ab tak, but that shouldn't have a bearing on India taking them lightly, because like I said ki jo experience hai and spin ko hi dhyan mein rakhte hue Laura ne bola bhi tha toss ke time pe ki wo Dane Van Niekerk ko team mein leke aaye hain, aur so that they can play the spinners better, unke paas experience hai, and I don't think कि India should take them lightly. दो मैच उनकी अगर बैटिंग बहुत अच्छी नहीं चली है तो ऐसा नहीं है कि हमारी बैटिंग भी मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी चली थी, एंड इट डज प्ले एट एनी लेवल, एट इवन द हाइएस्ट लेवल, द लास्ट मैच दैट टू टीम्स प्ले इट इज ऑलवेज देयर इन द बैक ऑफ देयर माइंड, एंड द लास्ट मैच दैट दीज टू दैट द लास्ट सीरीज दीज टू टीम्स प्लेड इंडिया लॉस्ट 1-4, सो कह सकते हैं और नहीं अफेक्ट होना चाहिए, पर बिल्कुल ओलंपिक लेवल पे भी जब जाके कोई दो राइवल्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनका पिच लास्ट एनकाउंटर जो होता है वो उनके माइंड में रहता है, एंड दैट कॉन्फिडेंस माइट जस्ट बी द डिफरेंस बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया टुडे, बिकॉज इतना जो टारगेट है वो इतना ट्रिकी है कि यहां पे आपकी परफॉर्मेंस से ज्यादा आपका माइंड कितना कंट्रोल में है आपके शॉट्स के, जो बैटिंग करने के लिए आएंगे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स वो अपने शॉट्स पे मेंटली कितना कंट्रोल रख पाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
2: एब्सोल्युटली वैशाली, अभी हम बात कर रहे थे साउथ अफ्रीकन टॉप ऑर्डर की, जो सामने स्कोर कार्ड्स हैं हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और पाकिस्तान के अगेंस्ट जैसा खेला है, ना तो टॉप ऑर्डर बहुत प्रभावित कर पाया है उनका, और मिडिल ऑर्डर में तो केवल मार्जिन कैप हैं जो डबल फिगर्स में स्कोर कर पाई हैं, क्या वो भारत के लिए आज एक उम्मीद की किरण है कि वहां पर अगर ये टारगेट करेंगे, मिडिल ऑर्डर चल नहीं रहा है उनका भी?
1: देखिए, पहले तो लोरा आती है, लोरा पे हमें सबसे पहले फोकस करना चाहिए, उसकी विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका एंड इंडिया का जो मैच हुआ था अभी रिसेंटली अप्रैल में, वहां पे लोरा ही थी जिन्होंने 92 स्कोर किया था नॉट आउट, तो उनकी विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद जो अभी तक देखा गया है, एनरी बहुत बेटर नहीं कह सकते बट वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी है उनकी, तो इन दो के अलावा अभी तक किसी की कंसिस्टेंसी है नहीं. एंड स्पिनर हमारे बहुत ही अच्छे आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स हैं एंड दे नो कि कहाँ किस बॉलर किस बैटर को किस वे में उनको बॉल डालनी है, तो ये एक बेनिफिट है हमारे पास.
0: आप प्रेमा रावत के बारे में बार बार आप कह रही हैं, आपने उन्हें क्लोजली देखा है, किस तरह की वैरायटी है उनके पास?
1: देखिए वो मैंने पहले भी बताया था कि वो रिस्ट स्पिनर है और रिस्ट स्पिनर को साउथ अफ्रीका की टीम जैसे खेलती है उनके लिए वो बेनिफिट नहीं में हो सकता कि उनके लिए वो हमारी प्रेमा के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि उनको खेलना इतना इजी नहीं है एंड वो स्लो के साथ बॉल डालती है
0: उनके. तो आप अगर कप्तान होती प्रेमा को आप कब लेकर आएंगी स्कोर को देखते हुए?
1: अगर मैं कैप्टन होती स्कोर को देख के तो मैं ओपन भी करवा सकती थी उनको और सबसे पहले मैं नंदिनी से ना डलवा के क्रांति गौड को लेके आती क्योंकि नंदिनी शर्मा ने लास्ट मैच में कहीं ना कहीं लेग की साइड पे दिए थे रन्स, तो वो बेनिफिट हमारे फेवर में नहीं था.
0: अब रविंदर जी आपसे मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे कि स्कोर हमने देख लिया, अब स्ट्रैटेजी जैसा उत्तरा भी कह रही हैं, वैशाली भी कह रही हैं, मुदिता भी कह रही थी कि अब जो स्ट्रैटेजी है आपको माइंड गेम लगाना पड़ेगा. यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम किस प्लानिंग के साथ उतरती है तो वक्त बताएगा, लेकिन आप सोचते हैं अब जिस ग्राउंड पे चेजिंग करते हुए टीम ज्यादा फायदेमंद रही है, जीती ज्यादा है, पावर प्ले एक बहुत बड़ा एक क्रूशल फैक्टर रहने वाला इंडियन टीम के लिए,
3: बिल्कुल पावर प्ले डिसाइड करने वाला है 6 ओवर मैच के लिए. अगर वो 6 ओवर में ये 30 रन के आसपास रोकते हैं और एक दो विकेट निकाल देते हैं तो मैच वापस आ सकता है, लेकिन अगर यही पावर प्ले में अगर वो शूट 6 ओवर 50 रन बन जाते हैं, देखिए आप क्लर्क को भूल रही हैं, दोनों मैचों में रन किए उन्होंने, दोनों मैचों में रन किए, वॉलवर्ट को पहचानते हैं और डर्कसन प्लेयर अच्छी हैं और ये जो मैच है इस मैच में उनको पता डूडाई मैच है और ये जो 6 ओवर है ये मैच का पूरा मैच का जो मुझे लगता है डिसाइड कर देगा कि आपका मैच कहां किस तरफ जाना है.
2: जी उत्तरा भारतीय स्पिनर्स के लिए तैयारी तो साउथ अफ्रीका ने भी की है, टैस्मैन ब्रेट्स और दानिवान निकल को वो लेकर के आए हैं, कितना फर्क डालेंगे वो आज के परफॉर्मेंस पे?
4: मुझे लगता है कि ये इस पे डिपेंड करेगा कि वो कितना सद के खेल रही हैं और टारगेट को ये देख के ना खेलें कि सिर्फ 158 है या 159 का टारगेट है हमारे सामने तो बहुत आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये जो 150 से 170 75 वाला जो बीच का गैप होता है वो सबसे ट्रिकी होता है और अगर इंडियन स्पिनर्स उनको रोक सकें और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर सकें जैसा उन्होंने डॉट बॉल्स के साथ किया था तो हमारे चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे.
2: जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी अपना जी आगे बढ़ते हैं हम. मनीष आप
0: कॉलर को हम लास्ट प्रोग्राम में लेते हैं क्योंकि बहुत जल्द हमें ओल्ड ट्रैफर्ड जाना पड़ेगा और बहुत जल्दी से रविंदर जी मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ जो भारतीय टीम उतर रही है अभी मैदान पे बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव लग रही है, एवरीबडी स्माइलिंग हडल बना के जोश के साथ वो चल रहे हैं, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है.
3: बिल्कुल फर्क पड़ता है बॉडी लैंग्वेज का, आपके रन कम है लेकिन आपकी जो बॉडी जो फील्डिंग के समय आप उस फील्डिंग से भी 10-15 रन रोक सकते हैं, उस अपने ग्रेड को 160-170 बना सकते हैं, फील्डिंग बहुत मैटर करती है.
0: राइट देन समय बहुत कम हमारे पास, कुछ सेकंड्स में ही मैं जवाब चाहूंगा. वैशाली योर वर्डिक्ट क्या होने वाला है?
1: चकाचौंध होने वाला है.
0: ओ पटाखे मंगवा लूं?
1: बिल्कुल मंगाने चाहिए.
0: मैं तालियां बजा दूंगा. उत्तरा योर टेक?
4: इट्स गोइंग टू बी क्लोज और जल्दी तो नहीं डिसाइड होगा, एंड तक जाएगा, विल गो डाउन टू द वायर.
0: 19.1 साउथ अफ्रीका ऑल आउट,
4: 19.5 आल्सो.
0: ऑलराइट रविंदर जी योर टेक?
3: एडवांटेज साउथ अफ्रीका.
0: मुदिता बोल के गई है कि बड़ा ये क्लोज होने वाला है, कहीं सुपर ओवर ना हो जाए. मुदिता वेल डन एंड ऑफ कोर्स अब यहां इस प्रोग्राम फ्री हिट 20 से आप सभी लोगों से विदा ले रहे हैं क्योंकि बहुत जल्द साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी शुरू होने वाली है. इंडियन बोलर्स अटैक के लिए तैयार हैं. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए.

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का ये अहम मैच आज ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 158 रन 7 खिलाड़ी के नुकसान पर बनाए और अब साउथ अफ्रीका की टीम को चेस करने होंगे ये 158 रन 20 ओवर में। तस्मीन ब्रिट्स और लौला वॉलोडाट दोनों क्रीज पर पहुंच चुकी हैं इस रन चेस का आगाज करने के लिए और भारत ने शेफाली वर्मा के हाथ में गेंद थमाई है इस रन चेस को रोकने के लिए। शेफाली वर्मा ने अभी तक 109 मैचेस में 15 विकेट्स अर्जित किए हैं के 6.6 ओवर्स की इकोनॉमी के साथ। कुछ नया करने की शायद भारतीय टीम की तरफ से कोशिश की जा रही है।
2: This is very, very interesting start. Shefali Verma being given the ball and very clearly, I mean, India did say that they elected to bat because the wicket will eight spin when the second inning starts and we have a spinner in the form of Shefali Verma. She was a very successful World Cup final against this very South African team. Remember, she got crucial wickets, back-to-back wickets, but that was an ODI format and that could also work in the minds of the South Africans. So there is a psychological angle as well, and also the strategy here is try and bring a spinner in as early as possible and not give pace on the ball at all. Shefali Verma, once again, look at that. That's good bowling. She bowled wicket to wicket on that occasion. The first ball, just a trifle outside the off stump. This one was in the off and middle. And Laura Wolfart, of course, knows exactly what they need to do. They've got to get that 159. So important for the South Africans to win this game. Because if they lose this one, they're in deep trouble. And Shefali Verma, two dots. She started well over the wicket this time. Now the wicket comes Wolfart and gets the first runs for South Africa. Goes to the pitch of that one, a controlled drive out to the long arm. South Africans are on their way in the chase of 159, one for no loss.
1: भारत के 158 रन का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने शुरुआत की है ब्रिट्स और वॉलोडाट के रूप में। शेफाली वर्मा अपने ओवर की चौथी गेंद हल्का सा उसे पुश भर किया ब्रिट्स ने, मिड विकेट के पर गेंद को फील्ड किया गया बिना किसी स्कोर के, बिना किसी नुकसान पर। चार गेंदें अभी तक फेंकी गई हैं शेफाली वर्मा द्वारा और ये चारों गेंदें बड़ी स्लो फेंकी जा रही हैं। 100

0: about 7 feet inside the fine leg boundary, but was going down the leg side. A couple to end the over, one over bowled, and South Africa 3 for no loss, chasing 159. But yes, you know, this is a very interesting start, I must say, that starting off with Shefali Verma with clear instructions. Bowl around 75, 76, 76, 77 kilometers per hour. No pace at all on that delivery. Not much turn though, but ball not at all coming to the bat. Also, holding the ball back in the air, not giving it too much flight, ensuring it is not pitched short, just that length. And the first over has been good from India's perspective, just three.
1: सिर्फ पहले ओवर में 3 रन बनाए शफाली वर्मा ने. बड़ी अच्छी गेंदबाजी करी नपीतुली गेंदबाजी. लॉरा वॉलवर्ट का स्कोर है अभी 1 रन और ब्रिट्स 2 पर बल्लेबाजी करती हुई 3 रन अर्जित किए साउथ अफ्रीका की टीम में. और भारत ने जो 158 रन का लक्ष्य रखा है चेस करने के लिए, नंदनी अपने ओवर के साथ तैयार. ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद गैदर किया गया बगैर किसी स्कोर के, बगैर किसी नुकसान के. लॉरा वॉलवर्ट दुनिया की बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक मानी जाती हैं. लंबा खेलने की क्षमता रखती हैं, वक्त के हिसाब से अपने बल्लेबाजी को मोड़ती हैं. जब तेज होना आता है तो तेज बल्लेबाजी करती हैं, और जब संयम से विकेट को संभालना एक छोर से, तो वो काबिलियत उनमें भरपूर है.
0: नंदिनी शर्मा हैज द नैक ऑफ पिकिंग अप विकेट्स. इट्स इंटरेस्टिंग दैट शी इज been given the second over. That's been paled away beautifully down. That carries down to the cover boundary for 4. That has been outside the
2: option.
1: और ये पहला चौका निकलता हुआ तास्मिन ब्रिट्स के बल्ले से, माफ कीजिएगा, लॉरा वॉलवर्ट की बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, उसे सिर्फ दिशा भर दी और गेंद सीमा रेखा के बाहर.
0: Short outside the off stump, width outside that, and that went down to the cover point boundary for 4. Nandini Sharma, right arm over the wicket, closer to the thumb this time to Laura Wolfart on the off and middle stumps, and that's played down to short mid wicket inside the 30 yard. Good fielding there by Arundhati Reddy. What would have otherwise gone down to the boundary, because that was played directly to her though, had it been 3 or 4 feet to the left or right, that could have carried down to the body. But nonetheless, the ball came at rapid pace, and good fielding there by Arundhati Reddy. All this will matter. Nandini Sharma, right arm over the wicket once again, closer to the top, short in lane, and that's been pulled away. There's a fielder kept precisely for that, right on the square leg boundary, and just the one.
1: This 1 run ke saath score pahuncha 8 par. Laura Wolfart पहुंची 6 पर अपने व्यक्तिगत स्कोर पर. 7 गेंदें अभी तक उन्होंने खेली हैं, और ब्रिट्स खेल रही हैं 2 के अपने व्यक्तिगत योग कर. और साउथ अफ्रीका ओल्ड ट्रैफर्ड के इस मैदान पर 158 रन का पीछा करते हुए 8 रन पर पहुंचा 1.4 ओवर्स की समाप्ति के बाद. नंदिनी शर्मा अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार अपने ओवर के साथ. अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग दीप्ति शर्मा द्वारा. बॉल को गेदर किया गया और बिना किसी स्कोर के, स्कोर अब है 1.5 ओवर्स के बाद 8 रन. अच्छी फील्डिंग थी ये दीप्ति शर्मा की, नहीं तो ये गेंद अगर उनके हाथ से छूटती तो सीमा रेखा के बाहर जाती. गेंद को सिर्फ दिशा भर दी थी. ब्रिट्स खेल रही है 2 पर और वॉलफार्ट 6 पर.
0: 4 रन सेव देयर फॉर श्योर. ब्यूटिफुल फील्डिंग बाय दीप्ति शर्मा इनसाइड द 30 यार्ड. And the third one, that short in length, the next delivery from Nandini Sharma, not much pace on that one. And Brits trying to pull it around the corner. Ball coming so slowly off the wicket. Doesn't quite get it from the middle of the blade. Dot ball to end the over. And South Africa, after 2 overs, are 8 for no loss. So India, having seen the way in which the wicket is played for 20 overs, very clearly have decided we won't give any pace on the ball. Shefali Verma was bowling somewhere around 75 to 77 kilometers per hour, and Nandini, being a pace bowler, was cutting pace on the ball because they realized that's what works.
1: 8 run banaye hain South Africa ne apne pehle 2 overs mein. Shefali Verma ke over mein 3 run bane, Nandini ke over mein 5 run bane. Wolfart ke balle se abhi tak nikle hain 6 run, aur Brits ke balle se nikle hain 2 run. Arundhati apne over ke saath. राइट आर्म ओवर द स्टंप। फुल टॉस।

0: गेंद और उसे मोड़ा है डीप मिड विकेट की तरफ, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था एक रन चुनाने के लिए, अपने अपने छोर बदलने के लिए। ग्रुप ए का ये जो मैच खेला जा रहा है भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान, ये तीसरा मैच दोनों टीमें अपने ग्रुप में खेल रही हैं। भारत ने अभी तक पहले दो मैचेस में 4 अंक अर्जित किए हैं और साउथ अफ्रीका ने अपने पहले दो मैचेस में सिर्फ 2 अंक अर्जित किए थे, इसलिए ये मैच दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण। अरुणादिति अपने ओवर की अगली गेंद के साथ।
1: Arundhati ready from over the wicket, closer to the stumps. Good ball there on the off and middle stumps that kept lower than what Tasman Brits expected. And at the last moment, she had to hurry through with a defensive prod back along the wicket. And the score for South Africa is 9 for no loss. Importantly, they have not lost any wicket. And we saw Shefali Verma bowling the first over. Then the second one, Nandini Sharma. And now we see Arundhati ready. Once again, closer to his thumbs on the off and middle. That's been pulled away short in length and will be cut off by Jimmy Rodrigues. Plays precisely for that kind of a pull at orthodox mid wicket. Just the one. So just 2 singles being conceded by Arundhati Reddy so far.
0: लॉरा वॉलवार्ट खेल रही हैं 7 पर, ब्रिट्स खेल रही हैं 3 पर और इस समय साउथ अफ्रीका का स्कोर है 10 रन 2.3 ओवर्स की समाप्ति के बाद। अरुंधति रेड्डी का ये 54वां मैच है और राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, अपनी क्रीज छोड़ी और उसे उठाकर मारा है 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर।
1: लवली स्ट्रोक देयर बाय लॉरा वॉलवार्ट, full credit to her. Arundhati Reddy, short in length, she followed the batter because Lora Wolfart made room for that stroke and Reddy followed the batter. Even then Wolfart waited for it, picked her spot and hoisted it over mid-wicket for a 6. This is a much better ball. The next one from Arundhati Reddy once again follows Wolfart but almost to the block hold outside the leg stump. And Wolfart gets a run as she digs it out on the onside. So Wolfart has started off in a very positive manner in this inning so far. She's 14 of 10. And that 6 was something that she really executed beautifully. And there is the square leg plugged, mid-wicket plugged. 2 fielders outside the 30 yard. The next delivery is outside the off. So punched into the covers. Prema Rawat completes the fielding. 3 overs bowled, 17 for no loss.
0: साउथ अफ्रीका 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद 17 रन और सामना पीछा करती हुई भारत के 158 का 159 रन उन्हें बनाना है इस मैच को जीतने के लिए। और लॉरा वॉलवार्ट का ये जो छक्का था उन्होंने अपने लिए जगह बनाई, जगह बनाकर उसे स्क्वेयर लेग बाउंड्री के ऊपर से बहुत बेहतरीन तरीके से शॉट मारा और अपने लिए 6 रन अर्जित किए, टीम के लिए 6 रन अर्जित किए। और इस छक्के के साथ ये दर्शाया है उन्होंने अपने माइंडसेट को कि वो कैसी बल्लेबाजी कर सकती हैं और क्यों उन्हें विश्व के सर्वोत्तम बल्लेबाजों के रूप में शामिल किया जाता है, शुमार उनका किया जाता है। इसीलिए भारतीय गेंदबाजों को एक नपीतुली गेंदबाजी करनी होगी लॉरा वॉलवार्ट को रोकने के लिए और जल्द विकेट चटकाने के लिए। श्री चन्नी को गेंद दी गई है चौथे बॉलर के रूप में गेंदबाजी करने के लिए तैयार और उनके सामने है लॉरा वॉलवार्ट जो कि 14 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही है। की गेंद ऑफ और मिडल पर और उसे हल्का सा पुश किया, लॉन्ग ऑन पर खड़ी प्रेमा ने उसे फील्ड किया बिना किसी स्कोर के और 17 रन 3.1 ओवर्स की समाप्ति के बाद।
1: Interesting strategy here by Harmanpreet Kaur. 4 different bowlers in the first 4 overs. Short in length, comes down the wicket, does Wolfart. And seeing her coming down the wicket, Chandni holds it back. This is good thinking by the bowler. Cricket is played in the mind as much as on the field of play. And we saw that in that delivery. Seeing Wolfart coming down, not giving the ball air, holding it back. Pitching a trifle shorter, faster through the air as well. Chandni round the wicket. This time gives it air. And right to the block hold almost, and Wolfart gets a delivery where she has to hurry through with a stroke and first bounce back to Sri Chandni. And this is good contest between the left arm orthodox bowler. 3 dots to a bowler of Wolfart's class. Here is Sri Chandni now to Lora Wolfart round the wicket. Wolfart makes room for that and Sri Chandni follows her, but she
2: pulls it down.

0: to Arundhati Reddy at Orthodox Bedwicker for just the one. So four deliveries in this over, just the one run.
1: इस समय साउथ अफ्रीका की टीम खेल रही है 18 रन बिना किसी नुकसान कर. रन रेट जो है 4.91 है और रिक्वायर्ड रन रेट इस समय बढ़कर पहुंचता हुआ 8.63. अगली गेंद मिडल और लेग पर थी, उसे हल्का सा पुश भर किया जब तक डीप मिड विकेट से आकर गेंद को फील्ड किया जाता, वापस थ्रो किया जाता श्री चन्नी के पास. बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था एक रन चुराने के बाद. 3.5 ओवर्स के बाद साउथ अफ्रीका की टीम पहुंची है 19 रन पर 149 रनों का पीछा करते हुए. अगली गेंद एक बार फिर से श्री चन्नी ने फॉलो किया लॉरा वॉलफार्ट का को और उन्हें मौका ही नहीं दिया, उन्हें जगह ही नहीं दी कि वो अपना स्ट्रोक खेल सकें और गेंद सीधा मिड ऑन पे खड़े फील्डर के पास. ओवर की समाप्ति. एक बहुत ही अच्छा और अहम ओवर श्री चन्नी का जिनमें उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए और लॉरा वॉलफार्ट को उन्होंने बांध के रखा किसी भी स्ट्रोक खेलने के लिए, अपनी टाइमिंग के लिए भी बांध के रखा, गेंद को थोड़ा धीमे रखा और उन्होंने फॉलो किया बल्लेबाज को ताकि वो हाथ अपना ना खोल सके.
0: We were talking about during the last few overs of the Indian innings that this wicket is slower than expected. Somewhere around 160 could be a good total. Shefali Verma starts a fresh over. Well tossed up this time on the leg and middle and gently placed on the onside. They go through for one, think of a second, it's not there. Yes, we were saying this is a slow wicket, so 160 or thereabout will be an interesting chase for South Africa. It could be a good battle. That's the way this innings has started for South Africa. 20 on board. Only 4 overs done as there's a fielder now being pushed right on the wide long arm boundary, patrolling that boundary. We could see one that is tossed up now, trying to see if Woolwart would come down the wicket and loft it. We'll have to wait and watch. Here is Shefali Verma. Now to Woolwart. That's a good delivery. Now this is good thinking. You put a bowler, put a fielder right on the long on boundary and push it faster through the air and flatter through the air, and that's the way you can fox a batter.
1: दिमाग के साथ गेंदबाजी करी जा रही है और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो कुछ ऐसा स्ट्रोक खेलें जिससे वो गलती करें. राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. धीमी गेंद एक बार फिर से छकाया गेंदबाज ने लॉरा वॉलफार्ट को स्ट्रोक्स खेलने के लिए मजबूर किया लेकिन नाकामयाब रही. अच्छी गेंदबाजी उनको फॉलो कर रही है गेंदबाज, धीमे फेंक रहे हैं और जहां जरूरत है गेंद को तेजी से भी फेंका जा रहा है.
0: शेफाली वर्मा दिस टाइम टू वॉलफार्ट. दिस टाइम शी कम्स डाउन द विकेट, शी इज लॉफ्टेड ओवर द बॉलर्स एंड डाउन टू द बाउंड्री फॉर 4.
2: ये लगा आभा का चौका
1: और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा 24 रन 4.4 ओवर्स की समाप्ति के बाद. और इस चौके के साथ लॉरा वॉलफार्ट पहुंची 19 पर. अच्छी स्ट्रोक आगे निकली और अपने बल्ले को खोला और गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और 4 रन अर्जित किए अपने लिए और टीम के लिए. शेफाली वर्मा अगली गेंद मिडल और ऑफ लेग स्टंप पर और उसे हल्का सा मोड़ा डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर के पास. पर्याप्त समय दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन चुराने के लिए. अच्छी गेंदबाजी हालांकि हो रही है लेकिन लॉरा वॉलफार्ट एक मंझी हुई बल्लेबाज है, वक्त के हिसाब से देख रही है कि गेंद कैसे आ रही है और जो पिछला शॉट उन्होंने 4 के लिए खेला वो उनकी बल्लेबाजी को दर्शा रहा है.
0: लास्ट बॉल ऑफ द ओवर साहब टू डस्टिन प्रिट्स, दैट्स जस्ट अ शेड आउटसाइड द ऑपोजिट टू द कवर्स. 6 रन्स ऑफ दैट शेफाली वर्मा ओवर, 5 वाज गॉन. South Africa 25 for no loss. We can already see there's a good contest between bat and ball. So 159 is not going to be that easy. We did discuss that. It's a slower wicket. Somewhere around 160 will be a good contest. And that's what we are seeing. We're also good thinking by Harmanpreet Kaur. She's used different bowlers in the first 5 overs. And what's meant from India's perspective, because of that is they've not allowed the South African batters to settle down with one bowler, and the bowlers we've seen in operation have asked good questions.
1: Ashish Nichar ne apne naye over ke sath pehli gend off stump se bahar thi aur Lora Wolfart usko marna chahti thi lekin nakamyab rahi aur long on par khade fielder ne use field kiya mise bina kisi score kar. Score 25 run bina kisi nuksan ke. पावर प्ले का ये आखिरी ओवर श्री चन्नी के हाथ में गेंदबाज. अगली गेंद और ये सीधा कैच और ये आउट. लॉन्ग अबाउट व्हाट कॉटन बोल्ड शिव चरनी और कामयाब हुई हरमनप्रीत की यह रणनीति जिन्होंने बांध के रखा हुआ था लॉरा वॉल्फार्ट को और श्री चरनी ने अपनी ही गेंद पे उन्हें कैच किया ललचाया आगे बढ़ी लेकिन स्ट्रोक खेल नहीं सकी और गेंद सीधा बॉलर के हाथ में.
0: दिस इज व्हाट प्रेशर कैन डू एंड वेल टॉस्ड अप लॉरा वॉल्फार्ट ट्राइड टू गेट अंडर इट प्लेट द लॉफ्टेस्ट स्ट्रोक ओवर द बॉलर्स हेड द बॉल कमिंग स्लो थ्रू एंड अ गुड कॉटन बॉल देयर बाय श्री चरनी एंड द इंडियंस आर डिलाइटेड ऑफ व्हाट They've got the big fish, Lora Wolfart, Cotton Bowl Sri Chandni for 20. That's a huge wicket. We all know that in the South African batting lineup, Lora Wolfart means a lot. And now there'll be pressure, even more pressure. Remember, now the required run rate has gone above 9. And with Lora Wolfart back at the pavilion, the required run rate above 9 is massive pressure for South Africa.
1: 25 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर अभी अभय लॉरा वॉल्फार्ट आउट होकर जाती हुई कॉटन बोल्ड श्री चरनी बहुत अच्छी गेंद करी थी उन्होंने मजबूर किया था वॉल्फार्ट को आकर स्ट्रोक खेलने के लिए नाकामयाब रही और एक अच्छा मुस्तैद कैच उन्होंने अपनी ही बॉलिंग पर पकड़ा और पहली विकेट के रूप में कप्तान वापस जाती हुई जैसा कि आप बताया जा रहा था के बता रहे थे कि रन रेट बढ़ रहा है और ये बढ़ता हुआ रन रेट बहुत प्रेशर क्रिएट करता है इस अहम मैच में 4.69 के औसत से बल्लेबाजी हो रही है रिक्वायर्ड रन रेट बढ़कर अब 9.14 पर पहुंच गया है यानी कि आने वाले ओवर्स में हर बल्लेबाज को तेज बल्लेबाजी करनी होगी और इस तेज बल्लेबाजी को रोकने के लिए जो रणनीति भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपनाई थी उसमें अभी तक उनको पूरी कामयाबी मिलती हुई 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया शेफाली वर्मा नंदनी शर्मा अरुंधति रेड्डी और श्री चरनी जिन्होंने अभी अभी एक बड़ी मछली अपने जाल में फंसाई लॉरा वॉल्फार्ट के रूप में अभी अभी उनको कॉटन बोल्ड किया 20 रन बनाए लॉरा वॉल्फार्ट ने अपने इस बल्लेबाजी में और वापस जाती हुई तस्मीन ब्रिज खेल रही है 5 के अपने व्यक्तिगत योग पर 11 गेंदे वो खेल चुकी हैं इन 5 रनों के लिए और 25 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर 159 रन का पीछा करती हुई साउथ अफ्रीका की टीम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड में ये एक अहम मैच ग्रुप ए का खेला जा रहा है हालांकि ग्रुप बी की जहां तक हम बात करें तो लगभग 2 टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं आज वेस्टइंडीज ने एक अहम मैच जीता श्रीलंका के खिलाफ और उन्होंने भी अपने 6 अंक अर्जित कर लिए इससे पहले इंग्लैंड 6 अंक अर्जित करके सूची में सबसे ऊपर है और ग्रुप बी जो अभी तक पूरा खुला हुआ है उसका एक आज बहुत बड़ा मैच खेला जा रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पर जिसमें 159 रन का पीछा कर रही है साउथ अफ्रीका की टीम और ट्रैक्शन अभी टीम पर आती हुई
0: जैक्सन देन दे नीड अ बिग पार्टनरशिप टैस्मन ब्रिस हैजंट रियली गॉट इनटू द नॉर्मल ग्रुप दैट शी डज बट गिव फुल क्रेडिट टू द इंडियन बॉलर्स श्री चांदनी रन द विकेट Once again on the leg and middle, gentle roll of the wrists from Dirksen. And on the onside, no runs result. Now Sri Chandni bowls wicket to wicket, doesn't give the ball much air. And really also changes the line and length of every delivery. The next one is well tossed up and she's bowled! Dirksen is clean bowled! A brilliant delivery! As I said, well tossed up. Dirksen's eyes lit up. She said, let me go after it. Talk it over. Completely missed. And that's wicket number 2 for South Africa.
1: ये होता है जी जाल में फंसाना इसी बोलते हैं मछली को जाल में फंसाना फ्लाइटेड गेंद और उठाकर मारने की कोशिश करी गेंद में स्पिन आई जिसके लिए हरमनप्रीत ने पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी का निर्णय जो लिया था वो बिल्कुल सामने झलकता हुआ और बॉल ने स्पिन किया और ये एक बड़ी मछली एंड्री ड्रैक्सन के रूप में फंसी इस स्पिन गेंदबाजी के श्री चरनी की और शून्य पर आउट होकर वापस जाती हुई और पावर प्ले में ये दूसरी विकेट अर्जित करी है श्री चरनी ने अपने दूसरे ही ओवर में 2 बल्लेबाज जो अभी तक आउट होकर वापस गए हैं वॉल्फार्ट जो श्री चरनी की शिकार बनी खुद ही उन्होंने अपनी गेंद पर उसे कैच किया और एंड्री ड्रैक्सन जो कि शून्य पर क्लीन बोल्ड बोल्ड बाय श्री चरनी और एक बड़ी मछली को फिर से फंसाया अपने जाल में
0: गिव द बॉल मोर एयर अलाउड टू गिव द सर्फेस द बॉल टर्न्स fundamentals. We saw that in that delivery. Shree Chandni gave the ball air. Henrik Dirksen's eyes lit up. She said, let me go off it. Talk it over the bowler's head. The ball gripped the surface, turned and hit the top of off. Shree Chandni. This time once again giving the ball more air to the new batsman Marizan Kapp. Played back along the wicket. Excellent delivery in the previous one. What a brilliant. It's a dream ball of a left-arm orthodox bowler. Two wickets, no runs so far in this over. Shree Chandni to Marizan Kapp. Played straight to mid-off. A maiden double wicket by Shree Chandni there. What an over. And the power play ends. South Africa struggling. 25 for 2. Now need to score at close to 9.6 from here on. Chasing 159.
1: भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान ये जो अहम मैच खेला जा रहा उल्ट्रा फिट पर पावर प्ले में भारत ने 59 रन बनाए थे दो खिलाड़ी के नुकसान पर, यानी कि पहले 6 ओवर में भारत ने 59 रन बनाए थे और साउथ अफ्रीका ने पहले अपने पावर प्ले में यानी कि पहले 6 ओवर्स में 25 रन बनाए दो विकेट नुकसान पर। भारत ने 13 डॉट बॉल्स खेली थी और साउथ अफ्रीका ने इस दौरान पहले पावर अपने पावर प्ले में 6 ओवर्स में 23 डॉट बॉल्स खेली हैं। इसका मतलब ये है कि जो भारतीय गेंदबाज हैं, खासतौर पर जो भारतीय स्पिनर हैं, जिसकी वजह से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल सफल होता दिखाई दे रहा है। 6 ओवर में 25 रन, दो खिलाड़ी नुकसान और 23 डॉट बॉल्स।
0: वन मोर चेंज द डिबिटन प्रेमा रावत नाउ outside the leg stump and that's been pulled away around the corner. Will be cut off by Arundhati Reddy. A diving effort and they're through for two. Brits goes up to 7 with that. 132 needed from 83 deliveries. This is getting to be tougher. Required run rate around 9.5 and they've lost Laura Wolfart on so much, on whom so much depends, and also the wicket of Dirksen. Prema Rawat once again outside the leg stump. That will swept around the corner. Ricochets. A diving effort there by Smriti Mandhana. And they go through for one. They go through for two. And also good running between the wickets by the South Africans. Getting three. They convert two into three over there. So that takes South Africa into their 30s now. 30 for two. And Tasman Brits is 10. Tasman Brits realizes now that she has to be the aggressor of the two, trying to take the attack to the debutant, knowing that there'll be nerves for Prema Rawat, and this is a good opportunity to get the up the scoring rate, if not boundaries, at least get twos and convert twos to threes. 5 runs in the first two deliveries of Prema Rawat. 129 needed for South Africa of 82 deliveries from here on. So the run rate, as I said, is 9.44. The next one is turned round the corner for a single. So 6 runs in the first three deliveries. And this is good thinking by the Indian captain, Harmanpreet Kaur. Rotating her bowlers. We've already seen 5 bowlers in operation so far. And this is just the 7th over.
1: साउथ अफ्रीका का स्कोर 31 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर। प्रेमा अपने ओवर की अगली गेंद और हल्का सा उसे पुश भर किया ब्रिट्स ने। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 32 रन, दो खिलाड़ी के नुकसान पर। आउट होने वाले प्लेयर वॉल्फार्ट 20 रन बनाकर आउट हुई और डर्कसन ने बगैर स्कोरर्स को तंग किए हुए, जैसे कि हमारे रावत साहब हमें बता रहे हैं कि ये स्कोर अब रन रेट पहुंच चुका है 9.53 का। अगली गेंद और उसे कट करने की कोशिश, लेकिन स्क्वायर पॉइंट पर खड़ी फील्डर दीप्ति शर्मा ने उसे मुस्तैदी से फील्ड किया। वापस भेजा गया गेंद को प्रेमा रावत के हाथ में। प्रेमा रावत अपने ओवर की आखिरी गेंद, ऑफ साइड फील्ड, एक पैक फील्ड इस समय, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। अच्छी गेंद उठाकर मारने की कोशिश नाकामयाब रही, लेकिन नुकसान भी कोई नहीं हुआ और ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर रहा 32 पर 2 साउथ अफ्रीका 7 ओवर की समाप्ति के बाद 13 ओवर जो बचे हुए हैं उन 13 ओवर्स में 127 और रन चाहिए होंगे साउथ अफ्रीका को 9.77 की औसत से। अभी जो स्कोर बन रहे हैं वो 4.57 की औसत से बन रहे हैं। भारत ने अभी तक

0: पांच गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। शिफाली वर्मा ने दो ओवर किए हैं, नंदनी शर्मा ने एक, अरुंधति रेड्डी ने भी एक ओवर किया है, प्रेमा रावत ने अपना पहला ओवर अभी भी समाप्त किया और श्री चन्नी ने अपने दो ओवर में एक मेडन, दो रन और दो बहुमूल्य विकेट्स अपनी टीम के लिए अर्जित की हैं। वॉलफॉर्ड को 20 पर कॉटन बोल्ड किया और ग्रेक्सन को अपनी ही गेंद में क्लीन बोल्ड किया।
1: 32 for 2 एंड द एक्सपीरियंस दीप्ति शर्मा कम्स इन। ऑल द ड्रामा हैज हैपेंड बिफोर दीप्ति शर्मा कम्स इन, दैट टेल्स यू। And the reverse sweep comes out from Tasman Brits. That will carry down to the boundary for 4.
2: ये लगा आभा का चौका
0: और 14 गेंदों के बाद ब्रिट्स के बल्ले से ये चौका निकला है साउथ अफ्रीका की टीम के लिए और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 36 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर 7.1 ओवर्स की समाप्ति के बाद दीप्ति शर्मा छठे बॉलर के रूप में कप्तान हरमनप्रीत ने उनका इस्तेमाल किया। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ब्रिट्स तैयार हैं गेंदबाजी का सामना करने के लिए और उसे हल्का सा पुश किया और पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास छोर बदलने के लिए। हालांकि डायरेक्ट हिट लगी, हाथ उठाया जरूर गया था लेकिन स्क्वेयर लेग पर खड़े अंपायर ने उसे नकार दिया क्योंकि बल्लेबाज अपनी छोर पर, अपनी क्रीज पर पहुंच चुके थे।
1: शॉर्ट लेंथ दैट वाज एंड दैट वाज पुल्ड अवे डाउन टू शॉर्ट फाइन लेग, हाफ हार्टेड वाज रिच घोष एज अ थ्रो केम इन टू द स्ट्राइकर्स एंड डायरेक्ट हिट बट नो हार्म फॉर साउथ अफ्रीका। 5 कमिंग ऑफ द फर्स्ट टू डिलीवरीज। दीप्ति शर्मा वंस अगेन डाउन द लेग साइड to Marizan Kapp this time, who wants to play the sweep once again. So slow was the ball off the wicket that Kapp almost goes through with it and then the ball comes after that. In fact, takes the reverse of the bat on its way back. Deepti Sharma this time, Kapp, and once again that's miscued. Will go down to long arm but not exactly as Kapp would have probably wanted to. The ball was in the air for a fair length of time.
0: मैरिजन कैप ने हालांकि इसको उठाकर मारने की कोशिश करी थी लेकिन पूरी तरह नाकामयाब रही। गेंद दीप्ति शर्मा से थोड़ी सी दूर थी इसलिए वो उसे लपक नहीं पाई अपने अगले बॉल के साथ। खुद फील्ड किया, अच्छी गेंद बिल्कुल सीधी ताकि बैट्समैन को मौका ही ना मिल सके और इस समय साउथ अफ्रीका 38 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर 7.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद अपने ओवर की आखिरी गेंद और उसे उठाकर मारने की कोशिश की गई। जी हां, छका दिया उन्होंने फील्डर को। हालांकि कोशिश पूरी करी गई थी लेकिन गेंद उनके ऊपर से निकलकर पीछे जाती हुई और पर्याप्त समय था दो रन अपने बल्ले के साथ अपनी टीम के लिए जोड़ने का। ब्रिट्स को, ब्रिट्स पहुंची 18 पर, कैप खेल रही हैं 2 पर और साउथ अफ्रीका 8 ओवर्स की समाप्ति पर 40 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर 5 रन प्रति ओवर की औसत से गेंद बल्लेबाजी हो रही है और 9.92 रिक्वायर्ड रेट बढ़कर पहुंचता हुआ।
1: Yeah, South Africa clearly realizing that they need to do something different because we saw twice an attempt in that over of Deepti Sharma to go for the reverse sweep. The required run rate is 9.92, which means that almost 10 and over. So even if they score at a 6 or 7 and over, this run rate will keep creeping up. And when it goes beyond 12 and over, it gets to be very, very difficult, even if you have some big batters. So South Africa from here on will certainly want to ensure they don't keep the run rate going up too much. The next first ball of a fresh over from Arundhati Reddy. A run that off stump, just a shade outside off, played into the covers and a dot ball once again. This is excellent thinking by Harmanpreet Kaur, rotating the bowlers beautifully, realizing that South Africa under pressure, now bringing in Arundhati Reddy by way of pace.
0: अरुंधति रेड्डी ने अपना पहला ओवर में 9 रन दिए थे और अपने दूसरे ओवर के साथ अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं। पहली ओवर डॉट बॉल थी और दूसरी गेंद जो थी उसमें एक रन चुराया, बॉल को लॉन्ग ऑन पर फील्ड किया गया और कैप के स्कोर पहुंचा 3 पर और ब्रिट्स खेल रही हैं 18 पर। एक साझेदारी बनाने की कोशिश कर रही हैं दोनों बल्लेबाज, काफी एक्सपीरियंस है दोनों के पास और साउथ अफ्रीका

0: की नजरें इन दोनों बल्लेबाजों पे होंगी ताकि इस गेम को, इस पार्टनरशिप को कुछ लंबा किया जाए.
1: Arun is ready to test and press from close to the stumps outside the off stump. Driven into the covers, a little bit of a ricochet gives the opportunity for the batters to go across for a single, and that single will take South Africa up to 42 for 2. Now in terms of number of runs and balls, 117 needed of 69 deliveries. The equation is getting to be tougher now, close to 10.2 the required run rate for South Africa. As here is Arundhati Reddy, converted that into a full toss, drilled down to wide long on. They go through for one, want a single, which is not there really, and they have to be content with just a single. Prema Rawat, the debutant, the fielder on that occasion, 116 needed from 68 deliveries. Now the last delivery from Arundhati Reddy, slower through the end, just 97 kilometers per hour, giving no pace on the ball at all to the batters. This here is Arundhati Reddy into Tasman Bint, this time short in length, and just the one will result. That's played on the onside. They want a single, which is not there.
0: अभी तक इस ओवर में चार सिंगल्स आए हैं और श्री चन्नी ने जो अपने पहले दो ओवर किए थे उन्होंने दो रन देके दो विकेट्स जो अर्जित करी थी उसका प्रेशर अभी तक इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी पर दिखती हुई है. कैप ने अभी तक 10 रन, 4 रन बनाए हैं 10 गेंदे खेलने के बाद, और ब्रिट्स 20 रन पर खेल रही है अगली बॉल और मारने की कोशिश, लेकिन फिर नाकामयाब रही. स्पेयर लेग के फील्डर के पास गेंद पहुंची, बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय अपने अपने छोर बदलने का. ओवर की समाप्ति और 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है साउथ अफ्रीका पर का 45 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर, और बाकी जो 11 ओवर यानी कि 66 गेंदें बची हैं उन पर 114 रन उनको चाहिए 10.38 की औसत से.
1: 10.36, 10.4 the required run rate. The last wicket fell when the score was 25, so these two have added 45 for the third wicket. So this is the biggest partnership so far. They've got to lick in, these two, Kapp and Tasman Blitz, but they can't wait for too long before upping the ante. It's only 10.4 now, so every over where you score less than 10 runs an over is going to increase that and take it to 11, 12 and 13. First ball of a fresh over from Prema Rawat, that's played over the infield on the offside down to the extra cover boundary for 4.
2: ये लगा आभा का चौका.
0: मार्जन कप के बल्ले से पहला चौका निकलता हुआ प्रेमा का ये गेंद था, थोड़ा सा फ्लाइटेड जरूर था लेकिन इनसाइड आउट हुई और उसे कवर बाउंड्री के ऊपर से उन्होंने 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया. इसीलिए इनका शुमार वर्ल्ड की जो बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं उनमें किया जाता है, गेंदबाजी के रूप में भी और बल्लेबाजी के भी ये दोनों में सक्षम है, और इसका आज बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी साउथ अफ्रीका की टीम को कि मार्जन कैप किस अंदाज में और कितनी देर तक बल्लेबाजी करते हैं. अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर और उसे उठाकर मारा है 4 रन.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: अंपायर की तरफ से इशारा है, एज यू कैन सी एट द बाउंड्री एट बैकवर्ड स्क्वायर लेग एंड इट वाज एयरबोर्न फॉर अ फेयर लेंथ ऑफ टाइम एंड मैग्निफिसेंट अटेम्प्ट देयर बट जस्ट इल्यूडिंग. ओ दैट जस्ट टुक द फिंगर टिप्स and went over the boundary for a 6, but one must give full credit for the attempt that was made on the square leg boundary over there. So, but from South Africa's perspective, 10 runs in the first two overs, and this is what we were discussing, they'll probably go after the debutant in this particular over, Prema Rawat. Here is that's once again down the leg side, and she says, was it that a wide? It is a wide.
0: और ये वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से 56 पर 2, 9.2 ओवर्स की समाप्ति के बाद. भारत ने अपने पहले 50 रन बनाए थे 26 गेंदों का सामना करते हुए, और साउथ अफ्रीका ने अपने पहले रन बनाए 56 गेंदों का सामना करते हुए. भारत साउथ अफ्रीका ने अपने 50 रन बनाए और अगली गेंद को डीप कवर्स की तरफ पुश किया गया बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था एक रन चुराने का और इस ओवर में अब तक 12 रन आ चुके हैं, तीन गेंदें हुई हैं और इसमें एक वाइड है। 57 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर 63

0: बॉलों में 102 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को इस रन चेज को पूरा करने के लिए अगली गेंद। आगे निकलकर मारने की कोशिश, लेकिन प्रेमा ने खुद फॉलो किया बैट्समैन को और मजबूर किया कि उसे रक्षात्मक तरीके से खेला जाए और खुद गेंद को फील्ड किया।
1: 32 ऑफ 25 डिलीवरीज इज पार्टनरशिप, सो दे आर गेटिंग इनटू अ ग्रूव, अ फ्यू ओवर्स लाइक दिस एंड यू नो दीस टू हैव द एबिलिटी। हियर इज द लास्ट डिलीवरी ऑफ प्रेमा रावत, सो जस्ट अ ट्राइफुल शॉट दैट्स बीन पुल्ड अवे डाउन टू मिड विकेट, हाफ वे डाउन टू द बाउंड्री एंड बिफोर द रिटर्न कैन कम देयर थ्रू for a single, and the three boundary riders are deep square leg, deep mid-wicketer long on, or on the on side, and should there be anything short, the batters will try to pierce it through that gap, those two gaps that are there, as here is Prema Rawat, the last time in this over, wide of the off stump, waits for it, does by his hand cap, steers it down to the fielder, inside the 30 yard, that is Deepti Sharma, direct hit. Richard goes up. Will the umpire refer it? And she says, no, I'm quite happy. And this over has cost India 16 runs. And at the end of 10 overs, halfway mark, South Africa chasing 159. 59 for 2, 100 needed in the remaining 10.
0: 10 ओवर में 100 रन चाहिए, यानी कि 10 रन प्रति ओवर की औसत से अब साउथ अफ्रीका को ये स्कोर चेस करने के लिए रन बनाने पड़ेंगे। आखिरी ओवर पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के पाले में गया, 17 रन आए उस ओवर में, और दोनों बल्लेबाज मैरिजोना कैप 17 पर खेल रही हैं, और ब्रिट्स अब अपने पैर जमाती हुई, अपनी आंखें जमाती हुई पहुंच गई हैं 21 के अपने व्यक्तिगत योग पर। 22 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली हैं, उसमें एक चौका शामिल है, और मैरिजोना कैप ने अभी तक 15 गेंदों में 17 रन बनाए हैं, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल है। 113.33 की औसत से वो अभी तक बल्लेबाजी कर रही हैं। 59 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने अभी तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। शेफाली वर्मा ने 2 ओवर्स में 9 रन दिए हैं, नंदनी शर्मा ने 1 ओवर में 5 रन, अरुंधति रेड्डी ने 2 ओवर में 14 रन, श्री चंदी ने 2 ओवर 1 मिडन 2 रन 2 विकेट। नंदनी अपने ओवर के साथ राइट आर्म ओवर स्टंप, ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी, कावर्स में उसे धीरे से पुश किया, पर्याप्त समय था बल्लेबाजों को छोर बदलने के लिए, और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 60 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। 10.1 ओवर्स की गेंदबाजी भारतीय गेंदबाज अब तक कर चुके हैं। मैरिजन कैप खेल रही है 18 पर। ब्रिट्स अब सामना करेंगी नंदनी के ओवर का दूसरी गेंद का, जो 21 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही है। नंदनी शर्मा राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और उसे उठाया है लॉन्ग ऑन का फील्डर। एक बार तो दिलचस्पी जरूर ले रहा था इस कैच को पकड़ने के लिए, लेकिन गेंद उनसे काफी आगे गिरी और उनको फील्ड किया गया, वापस थ्रो किया गया, लेकिन तब तक पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास एक रन चुराने के लिए। 61 पर स्कोर पहुंचा।
1: Yes, I got the feeling that she wanted it played over long off, did Brits, and the ball came slower off the wicket, and that's why it went over the bowlers at in the air. But well short of Radha Yadav there. Two singles in this over so far. 98 needed of 58. Nandini Sharma. Right in the block hole. Well bowled. Slower through the air. And Marizan Kapp can do no more than push it back along the wicket. And Richa Ghosh from behind the stumps applauds that delivery. This is getting to be a good over. Remember, the last one was a touch expensive. This was a slow ball. Right in the block hole there, very well bowled by Nandini Sharma, and she's happy with it, the wicketkeeper is happy with it. Just the 2 runs in the first 3 deliveries. Nandini Sharma to Marizan Kapp, and this time she wants to go through with the stroke, and once again very, very well bowled. So this is getting to be a very good over, and Marizan Kapp has to concede another dot ball as the ball goes through.
0: स्कोर 61 पर। 61 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर 10.4 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, और इस ओवर में एक बहुत ही अहम जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है मैरिजोना कैप और नंदनी के बीच में। लेग स्टंप के बाहर उसे स्कूप किया लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
2: ये लगा आभा का

0: this time the experienced Marizan Cup getting better of Nandini Sharma. Picks it up from outside off and deposits it over the fielder there inside the 30-yard circle at fine leg. Well over her, soaring over her, down to the fine leg boundary for four. So six runs in this over so far. Remember, they need around 10.25. Can Nandini Sharma end this well? Kaf will lead the boundary. Last ball coming up, and Kaf sweeps it around the corner. Will she get it down to the back of square leg boundary? Will be cut off beautifully, and they go through for two. So eight runs in this over from Nandini Sharma, and 11 overs bowled. South Africa chasing 159.67 for two.
1: 67 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर मैरिजन कप खेल रही है 24 के अपने व्यक्तिगत योग पर और तास्मिन ब्रिट्स खेल रही है 22 के अपने व्यक्तिगत योग पर आउट होने वाले दो खिलाड़ी लॉरा वॉलफार्ट 20 रन बनाकर आउट हुए थे और एनरी डक्सन ने स्कोरर्स को तकलीफ नहीं दी थी शून्य पर आउट होकर गई थी दोनों विकेट्स 25 के स्कोर पर गिनी थी और उसके बाद अब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने एक अच्छी साझेदारी करी है करीब करीब अभी ये पार्टनरशिप 42 रन तक पहुंच गई है दोनों बल्लेबाजों के बीच में बहुत अहम ये पार्टनरशिप है साउथ अफ्रीका के पर्सपेक्टिव को लेकर क्योंकि अगर इस मैच में बने रहना है दीप्ति शर्मा ने ओवर की शुरुआत करती हुई ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी और उसे स्क्वेयर लेग की तरफ खेलना चाहती थी ब्रिट्स नाकामयाब हुई गेंद उनके शरीर पर लगी कोई नुकसान नहीं कोई स्कोर नहीं स्कोर 67 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर 11.1 ओवर्स के बाद 53 गेंदों में 92 रन चाहिए
0: डाउन द विकेट कम्स ब्रिट्स टू द नेक्स्ट डेलिवरी फ्रॉम दीप्ति शर्मा हॉइस्ट इट हार्ड एन आई फॉर अ सिक्स ओवर द बॉलर्स हेड
2: ये लगा आभा का छक्का
1: बेहतरीन शॉट था ये ब्रिट्स का आगे आई और बल्ले को पूरी तरह गेंद के नीचे लाकर जोरदार प्रहार लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए एक बेहतरीन स्ट्रोक और 76 मीटर लंबा यह छक्का था ब्रिट्स के बल्ले से निकला हुआ और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 73 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर अगली गेंद मारना चाहती थी और यह अपील आउट अंपायर की तरफ से इशारा आउट का लेकिन ब्रिट्स ने थर्ड अंपायर से मदद मांगी है कि क्या यह गेंद उनके बल्ले को लगकर पैड पर गई है
0: शी सीम्स प्रीटी कॉन्फिडेंट द मोमेंट द अंपायर गिव इट आउट शी वेंट अप इमीडिएटली इफ शी इज नॉट गॉट बैट ऑन टू दैट दैट वॉज डेड स्ट्रेट सो द ओनली थिंग इज शी फील शी गॉट ग्लव और बैट ऑन टू दैट As the third umpire is having a good look at that, was there an inside edge? Onto that is what the third umpire will have a look at. And that will tell us whether there was bat onto that. And it does appear that probably there was bat onto that. And the umpire will have to reverse the decision. So, very clearly, Tasman Brits knew that there was bat onto that and she got it spot on 86 needed of 51 six runs in three deliveries from Deepti Sharma so far and this is going to be a very interesting contest because now the South Africans will want to up it it's around 10 runs and over as we keep saying they don't want to take it too high next delivery from Deepti Sharma down the wicket comes Brits and drives it in a controlled manner down to mid-wicket right on the boundary and they get a couple for that. Now what the South Africans are doing to counter the Indian spinners is using their feet, trying to come to the pitch of the delivery and good stop there right on the mid-wicket boundary by Radha Yadav who's one of the better fielders in the Indian squad. 50 partnership of 37 deliveries, Marizan Cup. Getting 24 of that and 25 to Tasman Brits. Right in the block hole. Drilled away down to long on. And they go through for one. With that single 76 for 2. 83 needed of 49.
1: 11.5 overs ki jo gendbazi bhartiye gendbazon ne kare. Usme 76 run bane hai. 49 balon mein 83 run aur chahiye. South Africa ko is match ko jeetne ke liye. Aur Bharat ko chahiye. 8 victory.

0: विकेट्स इस मैच को जीतने के लिए। हालांकि इस ओवर में एक अपील थी जिसे वापस किया गया, अगली गेंद हल्का सा पुश भर किया गया लॉन्ग ऑन पर जमीमा के पास। जब तक गेंद पहुंचे बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले। 12 ओवर की गेम की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 77 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। मैरिजन कप खेल रही है 25 के अपने व्यक्तिगत योग पर 21 गेंदों का उन्होंने अभी तक सामना किया है। इस 25 रनों में दो चौके और एक छक्का शामिल है। और तास्मिन ब्रिट्स जो अब बहुत ही मुस्तैदी से अपनी आंखें जमा चुकी हैं और एक बहुत ही जिम्मेदारी वाली पारी खेल रही हैं 31 के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर हैं। 28 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली हैं, एक चौका और एक छक्का जो उन्होंने पिछले दीप्ति शर्मा के ओवर में लगाया था उसके साथ उनका व्यक्तिगत स्कोर है 31 रन। साउथ अफ्रीका का स्कोर है 77 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। 12 ओवर्स की समाप्ति के बाद 6.42 के रन रेट पर अभी बल्लेबाजी हो रही है और 10.25 की औसत चाहिए। अगली गेंद श्री चरनी की, अच्छी गेंद वापस खेला उसे कप्तान हरमनप्रीत कौर ने। एक बार फिर से अपने जो मेन बॉलर है श्री चरनी को वापस गेंदबाजी के लिए बुलाया है। सिर्फ उनकी मंशा यह है कि विकेट हासिल करी जाए। अगली गेंद और उसको उठाकर मारा है और ये एक कैच की कोशिश थी लेकिन नाकामयाब रहे। गेंद सीमा रेखा पर फील्ड करी गई, एक अच्छी फील्डिंग का मुजहरा। राधा ने गेंद को कैच करने की कोशिश जरूर करी थी लेकिन गेंद उनके हाथ से छटकी। दो रन चुराए बल्लेबाजों ने, एक अच्छा प्रयास जरूर था लेकिन क्रिकेट को जब आप इस लेवल पर खेलते हैं तो ऐसे कैचेस पकड़ने बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने अपनी टीम को जीत के लिए अग्रसर करना हो। श्री चरनी अपने ओवर की अगली गेंद सामने उनके मार्जिन का और इस गेंद को उन्होंने उठाकर मारा है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रन।
1: वेल टॉस अप बाय श्री चरनी दिस टाइम आउटसाइड द ऑफ स्टंप।
0: और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा हुआ 83 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर। मैरिजन कप जैसे खिलाड़ी को आप अगर जीवन दान देंगे तो वो अपनी प्रतिभा का जौहर आपको जल्दी दिखाएंगी। और अगले ही गेंद पे उन्होंने चौका जड़ा जिसे कहते हैं ना जले पर नमक छिड़कने की बात। और स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ 83 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर मैरिजन कप जो है वो अब पहुंच गई है 31 के अपने व्यक्तिगत योग पर। और साउथ अफ्रीका 83 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर। श्री चरनी अपने ओवर की अगली गेंद और उसे हल्का सा पुश भर किया डीप मिड विकेट पर। बॉल को फील्ड किया गया लेकिन बहुत तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, दो रन चुराए बल्लेबाजों ने, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। हालांकि जमीमा रॉड्रिक्स का जो थ्रो था वो बिल्कुल विकेट के ऊपर था लेकिन ब्रिट्स और मैरिजन कप ने अपने अपने छोरों को अच्छे से संभाल के रखा और ये दो रन के साथ स्कोर पढ़कर पहुंचा 85 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर।
2: दिस इज वॉट यू कैन अचीव इफ यू ड्रैग द बैट वेरी वेल ड्रैग्ड इन बाय टैस्मिन ब्रिट्स ओवर देयर एंड नाउ 85 for 2, 74 or 44।
0: मैरिजन कप अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाती हुई जो अभी अभी उन्हें एक जीवन दान मिला था उसके बाद उन्होंने अपनी बल्लेबाजी का जलवा और दिखाना शुरू किया और इस खूबसूरत चौके के साथ उनका स्कोर पहुंच गया 37 रन। और श्रीलंका साउथ अफ्रीका बढ़ती हुई आगे तेजी से 89 for 2 12.4 ओवर्स के बाद 43 गेंदों में 70 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को इस मैच जीतने के लिए। श्री चरनी अपने ओवर की आखिरी गेंद और उस गेंद को हल्का सा डीप मिड विकेट की तरफ मोड़ा और एक रन चुराया बल्लेबाजों ने, 90 पर पहुंच गया साउथ अफ्रीका का स्कोर इस सिंगल के साथ। और 13 ओवर्स की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका 90 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर। बाकी बचे 7 ओवर यानी कि 42 गेंदों में 69 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को इस अहम मैच को जीतने के लिए और भारत को अब बहुत जल्द चाहिए होंगे साउथ अफ्रीका की कुछ विकेट्स इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए। हालांकि पिछले ओवर में एक मौका जरूर लगा था लेकिन कैच को

0: लपका नहीं गया और जीवनदान मिला मैरिसन कप को, और मैरिसन कप ने उस जीवनदान के बाद अपने बल्ले को घुमाना शुरू किया। दो चौके उन्होंने उसके बाद जरूर लगाए और स्कोर भर बढ़कर पहुंचता हुआ साउथ अफ्रीका का 90 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर 13 ओवर्स की समाप्ति के बाद।
1: दिस पार्टनरशिप हैज बीन गुड फॉर साउथ अफ्रीका 65, कैप इज 38, टेस्ट विकेट इज 31, द रिक्वायर्ड रन रेट इज 9.9 ऑलमोस्ट। Now, 7 overs remain. If these two stay there for another 2 or 3 overs, then South Africa can probably think that even 10 or 11 per over is possible with wickets in hand. From India's perspective now, India would like to get a wicket or two if possible over here, because these two are well entrenched, are Marizan Cup and Tasman Bridge. Both of them are really looking good. Remember, the last over from Shree Channi was expensive. She bowled so well in her first two overs, and in the last over we saw her getting pummeled for boundaries as well. 69 needed of 42, and one of the reasons has been that Karp and Brits have started using the feet, not allowing the ball to grip and turn, getting to the pitch of the ball and playing ground strokes as well as lofted strokes, and also hit a couple of sixes. Shefali Verma coming in this time to Marizan Cup, short to the lane, and that's been hit away into the covers, and that's well fielded by Deepti Sharma. No runs, so dot ball. Every dot ball will matter, every boundary will matter, and every good fielding effort will matter. Indians have said four to six runs already. Shefali Verma short in the lane, and that's played past Midon inside the 30-yard circle for a single. Singles are okay from India's perspective. South Africa will certainly need boundaries from here on. Karp is 31, Brits is 31, Karp is 39, partnership is 66, 10.2 the required run rate from here on. And this one is played into the covers. They want to run and they get it in the end also. Good calling, good response. But from India's perspective, Shefali has started quite well over here. Just two runs of three deliveries. She's cutting pace on the ball. 67 needed of 39 deliveries. Both the dugouts are quite tense, because next two or three overs will define which way this is going. Shefali gives that ball more and drilled too long off. One of the things we've seen in this over is they're not giving the ball too much air, not allowing the batters to use their feet, come to the pitch of that punt. She's holding it back, and after quite three or four overs, we've seen the ball being pitched short, faster through the air.
0: बिल्कुल जी, अगली गेंद और उसे धीरे से पुश भर कर दिया लॉन्ग ऑन की तरफ एक रन के लिए। लॉन्ग हैंडल्स का इस्तेमाल हल्का हल्का सा मैरिसन कप की तरफ से किया गया, जो उन्होंने स्ट्रोक्स लगाए, दो चौके लगाए, वो लॉन्ग हैंडल्स के साथ उन्होंने दो चौके लगाए थे, और उसके साथ अब भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचना शुरू किया और फ्लाइट को भी कम किया, जिससे बल्लेबाजी थोड़ी मुश्किल होनी शुरू हुई। मैरिसन कप खेल रही है 40 के अपने व्यक्तिगत योग पर। शेफाली वर्मा के ओवर की आखिरी गेंद और एक तेज स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के खड़े फील्डर्स के पास। एक रन के लिए पर्याप्त समय था 14 ओवर्स की समाप्ति के बाद। स्कोर पहुंच गया साउथ अफ्रीका का 95 रन दो विकेट्स के नुकसान पर। अगली 36 गेंदों में 64 रन दरकार है साउथ अफ्रीका को इस मैच को जीतने के लिए। भारत ने 158 रन बनाए थे अपने पहले 20 ओवर्स में, और अब बल्लेबाजी करते हुए 95 रन बनाए हैं साउथ अफ्रीका ने अभी तक 14 ओवर्स में। बाकी 6 ओवर्स में 64 रन उन्हें बनाने हैं 10.67 की औसत से। अच्छे बल्लेबाजी, अच्छा पार्टनरशिप दोनों ने बिल्ड किया। अभी तक 70 रन बनाए हैं इन्होंने तीसरे विकेट के लिए। मैरिसन कैप्स खेल रही हैं 41 पर और ब्रिट्स खेल रही हैं 33 के अपने व्यक्तिगत योग पर। भारत ने अभी तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। शेफाली वर्मा ने 3 ओवर किए, 14 रन दिए हैं। नंदिनी शर्मा ने 2 ओवर किए हैं। अरुंधति रेड्डी 2 ओवर, श्री चरनी ने 3 ओवर किए हैं। प्रेमा रावत ने 2 ओवर किए हैं, जो उनका पहला मैच है, और दीप्ति शर्मा ने अभी तक 2 ओवर डाले हैं। टर्मिन ब्रिट्स और मैरिसन कप ने दोनों के बीच में ये चौथीवां अर्धशतक की साझेदारी है। इससे पहले उन्होंने 69 रन की साझेदारी करी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, 58 रन की भी पाकिस्तान के अगेंस्ट 2023 में, 96 रन की भारत के अगेंस्ट 2024 में, और आज 70 रन से ऊपर वो जोड़ चुकी हैं ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के इस ग्राउंड में। एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ भारत और

0: साउथ अफ्रीका के दरमियान ये एक अहम मैच जो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पर खेला जा रहा है.
1: सिक्स ओवर लेफ्ट नाउ इन दिस इनिंग्स एंड यू नो श्री चंडी हैज गॉट वन ओवर लेफ्ट, शील डेफिनेटली बोल दैट. शेफाली वर्मा हैज गॉट वन, शील बोल दैट. Now, after that, four overs. Deepti Sharma has got two overs left. Definitely she'll bowl that. So, what is interesting to see, the remaining two overs out of the six, after Shefali bowls a one over, Sri Chandi bowls one, Deepti bowls two, two more will remain. And Nandini Sharma, Arundhati Reddy and Prema Rawat, the three bowlers that we've seen apart from Shefali, Sri Chandi and Deepti, who will get the remaining two overs, may not be the debutant, Prema Rawat. She's been expensive. Can't blame her. It's her first game. It could probably be two overs shared between Nandini Sharma and Arundhati Reddy. That could be the way in which the remaining six overs could be bowled.
0: भारत ने अब जब पहले बल्लेबाजी करी थी अपने 20 ओवर में 158 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर, जिसमें 39 डॉट बॉल्स थी, 18 चौके उसमें शामिल थे और एक छक्का भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए थे अपने 158 रन पूरा करने के लिए.
1: फर्स्ट बॉल ऑफ अ फ्रेश ओवर एंड एज वी हैव टू वेट एंड वॉच हु एक्चुअली स्टार्ट्स ऑफ द बॉलिंग ऑपरेशंस. First for the first ball of a fresh over, but from India's perspective, we've seen some wonderful fielding as well as just the odd catch that was dropped. One would say that was a good attempt, actually, to be very fair to Radha Yadav, rather than say that that was a drop catch. It was a wonderful effort. She's one of the better fielders India's got. So six overs remaining now, and 10.67 the required run rate, and this partnership has yielded 70. Yes, Arundhati Reddy, we said she'll probably bowl one over. She's got the ball in her hand, and South Africa now 95/2 required run rate 10.67 from here on. From close to the sums, full toss that's been clobbered away, but there is a fielder there, Jemima Rodrigues, patrolling that boundary at mid-wicket, just the one. 63 of 35 from here on for South Africa to go through. If one were to look at it, this is even more a crucial game for South Africa than it is for India, while it's important for both, because India, if they win here, they'll be in the driver's seat. Arundhati Reddy, and that's been lofted over the bowler's head. That'll go down a couple of bounces to the side screen for four.
2: ये लगा आभा का चौका,
0: और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर साउथ अफ्रीका का पहुंचा हुआ 3 अंकों पर 100 रन, दो खिलाड़ी के नुकसान पर 14.2 ओवर्स के बाद ये स्कोर 100 पर पहुंचा. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और सीधे बल्ले से उसे उठाकर मारा बॉलर के सर के ऊपर से 4 रन के लिए. अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर पैड पर लगी और भागकर 1 रन चुराया, और स्कोर इस 1 रन के साथ 101 पर पहुंचा दो खिलाड़ी के नुकसान पर 14.3 ओवर्स के बाद. साउथ अफ्रीका ने अपने पहले 50 रन पूरे किए थे 56 गेंदों पर, और दूसरे 50 रन हमारे स्कोरर रावत जी बता रहे हैं उन्होंने 30 गेंदों में पूरे किए. इसका मतलब बल्लेबाजी अब काफी तेज हो रही है. अरुंधति रॉय अपने ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर, गेंद थी उसे स्कूप कर दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: Bad ball from Arundhati Reddy down the leg side, and all that the batter had to do is help it on its way, which she did so beautifully. Marizan Kapp just lofting it nonchalantly down to the fine leg boundary for 4. Turning out to be expensive this over from Arundhati Reddy. 54 of 32 now. 14.4 overs. 5 point to go after this. Partnership is now worth 80, and the required run rate just a touch over 10.13. Remember, the last wicket fell when it was 25. Looks like a long, long time back. Arundhati Reddy. This time to Marizan Kapp, who picks it up from outside the off stump and deposits it down to the mid wicket boundary for 4 more.
2: ये लगा आभा का चौका,
0: और इस चौके के साथ मैरिजन कप का अर्धशतक पूरा. 34 गेंदों में इन्होंने अपने ये अर्धशतक पूरा किया. इन 50 रनों में 6

0: रनों के साथ स्कोर पहुंचा 52 और 111 दो खिलाड़ी के नुकसान पर 15 ओवर में। मैरिसन कप की ये छवीं अर्धशतकीय पारी थी, उनके बल्ले से आए हुए ये छवीं अर्धशतकीय पारी थी उनके करियर की। और आज इस महत्वपूर्ण और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मैच में उन्होंने अपनी टीम के लिए अभी तक 52 रन अर्जित किए हैं और अपनी टीम को मुश्किल वाली जो छोर था उसमें से बाहर निकालने की अपने पूरी कोशिश करते हुए, जो रन रेट एक समय बढ़कर 10.9 तक चल गया था वो अब घटकर 9.6 रह गया है, यानी कि बचे 5 ओवर्स में साउथ अफ्रीका को 48 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए।
1: Yes, indeed, this partnership is now taking the match down to the wire. They are making a fight of it. 111 for 2, Kaf is 52, Tasman Blitz is 37, this partnership 86. And that's come at a very good run rate as well, particularly in the last 2-3 overs. The last over from Arundhati Reddy was 16 runs, very, very expensive, the most expensive of this inning so far. Deepti Sharma has the ball in hand, 48 of 30 needed from outside the off stump. She wants a pummeler, does Brits, and the ball ricocheting on the onside for just a one, should be leg byes, and the impact was certainly outside off. The Indians having a thought there, but very clearly inside, very impact very clearly outside off. Now Harmanpreet Kaur has a word with Deepti Sharma, some thoughts being exchanged, because these next couple of overs are going to be so important in the context of this game. If South Africa manage to get a couple of more good overs, they can take it through. But if India can squeeze South Africa in the next couple of overs, beginning from this one, from Deepti Sharma, she's got all the experience behind her, some readjustments being made in the field. One thing is get the field in place, the other is break the momentum. Remember, South Africa have got two good overs, so one way is to take your time and break the momentum that's been developed now by Marizan Kap and Tasman Brits. That's a good idea as well.
0: 112 दो खिलाड़ी के नुकसान पर 15.1 ओवर्स की समाप्ति के बाद, और अब दीप्ति शर्मा बिल्कुल तैयार। राउंड द स्टंप्स ये गेंदबाजी कर रही है और उसे हल्का सा ग्लाइड किया स्क्वेयर बाउंड्री की तरफ, डीप पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया, एक रन चुराया बल्लेबाजों ने और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 113 दो खिलाड़ी के नुकसान पर। 7 से 15 ओवर्स में भारत ने 57 रन बनाए थे, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 16 डॉट्स खेली गई थी और इसी दौरान 7 से 15 ओवर में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने 86 रन बनाए हैं और 13 डॉट्स इनमें खेली गई हैं आंकड़ों के हिसाब से। अगली गेंद और बहुत तेज शॉट खेला है, अच्छी फील्डिंग बाउंड्री के ऊपर, इस बाउंड्री को रोककर 2 रनों में तब्दील किया जमीमा रॉड्रिक्स ने, लेकिन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 115 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर। 6 हाफ सेंचुरीज जो मैरिसन कप ने अभी तक बनाई है, 75 रन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे, 60 रन श्रीलंका के खिलाफ, 57 रन भारत के खिलाफ, 56 रन पाकिस्तान के खिलाफ, आज भारत के खिलाफ अभी वो 53 रन पर खेल रही हैं और इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 52 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली थी। स्कोर 115 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर 15.3 ओवर्स में। 27 गेंदों में 44 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को इस मैच को जीतने के लिए और भारत को जल्द जल्द कुछ विकेट्स ताकि मैच में वापसी करी जा सके।
1: 44 of 57 comes down the wicket once again. That Tasman Brits drives it in a controlled manner to long on. 116 for 2. Fielded there by Jemima Rodrigues. And so this over so far, no boundaries in the Deepti Sharma over. Will she end it well? 116 for 2. 43 of 26 needed from here on. Deepti Sharma so far conceding only singles in this 16th over. Round the wicket and once again ball very close to the tab lines, have been driven, will be cut off by Shefali Verma, wide of long off inside the boundary, they go through for a couple. So this is a good over, just the singles and the couple in the last ball. 41 of 25 needed now. Remember, the required run rate is now just under 10.

0: So can she end it well, Deepthi Sharma? Not concede a boundary. A single or two will do, because that will then up that required run rate even further. 9.84 it is right now. From round the wicket to Madison Karp, who's drilled it. Pass extra cover to the boundary for four.
1: Ye laga, abha ka choka.
2: मैरिजन कप के बल्ले से ये निकला बेहतरीन शॉट, कवर बाउंड्री के बाहर चार रन, फुल टॉस गेंद थी, न्योता दिया गया था मैरिजन कप को शॉट खेलने के लिए और उस न्योते को उन्होंने स्वीकारा और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। 122 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर मैरिजन कप की एक बेहतरीन पारी जो अभी तक उन्होंने खेली है 59 रनों की, और साथ में उनका साथ दे रही है ब्रिक्स, जिन्होंने अभी तक बनाए हैं 40 रन अपनी बल्लेबाजी में, और ये 40 रन के लिए उन्होंने 35 गेंदों का इस्तेमाल किया है। मैरिजन कप जो अभी तक खेल रही है 59 के अपने व्यक्तिगत योग पर, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल है, 155.26 की औसत से ये बल्लेबाजी कर रही है। 122 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर पूरी तरह गिरफ्त बनाई हुई है साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने। इस मैच पर जो एक समय पे जो रन रेट था वो 10 से पार था, अब वो घटकर 9.25 रह गया है। अगले 24 जो गेंद है, जो 24 गेंदों में 37 रन की जरूरत है साउथ अफ्रीका को इस अहम मैच को अपने नाम करने के लिए, और वहीं भारतीय खेमा चाहेगा कि इस पारी को जल्द से जल्द तोड़ा जाए, इस जोड़ी को जल्द से जल्द अलग किया जाए ताकि प्रेशर वापस साउथ अफ्रीका पर डाला जाए।
0: She certainly has got one over. She's bowled 3 for 15 with 2 wickets. So certainly she will bowl one over. 4 overs in the South African innings so far. Shefali has bowled 3 for 14. So she'll bowl one over. Those will be 2 overs for sure. Another 2 overs. Deepthi Sharma has been a touch expensive today. 28 she's conceded of 3. But she's got all the experience. And she bowls at the death for India. So she'll probably get one. And then there's one over to be bowled amongst Nandini Sharma, Arundhati Reddy, and Prema Rawat. So it's Shefali Verma, as I expected, with the ball now to bowl what will be the 17th over, as 37 is needed of 24. Karp and Brits together, 97 this partnership. Close to 100. What a partnership this has been for South Africa after they lost Wolfart and Dirksen relatively early. 122 for 2 now. Indians have also bowled in a disciplined manner so far. Just the 3 extras, and of which 2 have been legged by. So just the 1 wide. We saw South Africa bowling very disciplined manner in 20 overs. They conceded just the 1 wide. India also so far in 16 overs, just the 1 wide ball. First ball of Shefali on Mazovic. Lofted hard and high. Taken! Taken there, right on the mid-wicket boundary. That's the wicket India wanted. Tasman Britt goes. A crucial wicket at a very important juncture.
2: 97 run ki ye bhagedari शेफाली वर्मा ने अपने हाथों से तोड़ी, और एक अच्छा कैच केयर लेग बाउंड्री के ऊपर, और ब्रिट्स आउट होकर वापस जाती हुई। 40 रन का उनका योगदान रहा इस 97 रन की जो भागीदारी थी। हालांकि स्क्वेयर लेग बाउंड्री के ऊपर से वो एक लंबा शॉट खेलना चाह रही थी लेकिन नाकामयाब रही, और एक अच्छा कैच पकड़ा गया बाउंड्री के ऊपर श्रीचरणी द्वारा, और तस्मीन ब्रिट्स 40 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर वापस जाती हुई। 39 रनों के लिए उन्होंने 36 गेंदें खेली और वापस श्रीचरणी के हाथों कैच हुई। शेफाली वर्मा ने ये एक अहम विकेट दिलवाया जिससे भारतीय टीम अब वापसी करने की कोशिश जरूर करेगी। 122 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर साउथ अफ्रीका 16.1 ओवर की समाप्ति के बाद शेफाली वर्मा अपने चौथे ओवर की पहली गेंद पर एक अहम भागीदारी को तोड़ने में कामयाब हुई, और श्रीचरणी ने बगैर किसी गलती से उस कैच को लपका, और अब नए बल्लेबाज नादीन डी क्लार्क क्रीज पर, जिनके नाम पर 61 मैचेस हैं शेफाली वर्मा की अगली गेंद को खेलते हुए। अच्छी गेंद, एकदम यॉर्कर, और एक अहम समय पर उनका बल्ला नीचे आया और गेंद बल्ले से लगकर शॉट थर्ड मैन के फील्डर के पास गई बिना किसी स्कोर के, बिना किसी नुकसान के।
0: राइट टू द ब्लॉक ऑफ शेफाली वर्मा, शी स्टार्टेड वेरी वेल।

0: into Nadine de Klerk. Once again, a good ball. She can only turn it round the corner. Nadine de Klerk in such situations can be extremely dangerous, but she's not been given the opportunity of going after the bowling. She just failed two deliveries, but both those have been bowled beautifully by Shefali Verma. The first one right in the block hold. The other one also almost close out there, not allowing Nadine de Klerk to get right under it. 16.3 overs, 123 for 3, 36 now needed of 21. The required run rate is 10.3 now, gone above 10 and over. Shefali Verma, short in length, that's stalked over the bowler's head. That'll go one bounce to the side screen for 4. The umpire having a look at that, she probably wants to see whether she's got the distance on that. Is it 6 or 4? So we'll wait for the final decision of 6 runs.
1: Ye laga abha ka chakka.
2: और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ 129 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर मार्जन कप एक बेहतरीन पारी खेलती हुई अगली बॉल और उसे उठाकर मारने की कोशिश और यह कैच छूट गया उनके हाथ से। हालांकि कोशिश जरूर करी गई थी लेकिन एक आसान सा कैच निकलता हुआ हाथ से आज फील्डिंग में वो जान वो मुस्तैदी नहीं दिखाई देगी। ये एक सीधा कैच था, रेगुलेशन कैच, नाकामयाब रहे फील्डर और अगली गेंद उसे हल्का सा पुश भर किया कवर्स की तरफ। कोई स्कोर नहीं, मार्जन कैप 66 पर दूसरा जीवनदान उन्हें मिलता हुआ और ये कितना कीमती साबित होगा, कितना कीमती साबित होगा इस मैच के कंटेस्ट को देखते हुए। क्या साउथ अफ्रीका इस छूटे हुए कैच की बदौलत इस मैच को जीतेगी और क्या भारत वापसी करने की कोशिश करेगा। यह कैच आराम से उनके हाथ में आया था लेकिन छटक कर बाहर जाता हुआ।
0: मार्जन कैप ड्रॉप्ड ऑन 25 एंड 65 ऑन बोथ ओकेशंस बाय राधा यादव हु इज वन ऑफ द बेटर फील्डर्स इन द इंडियन स्क्वाड। सो बिट ऑफ एन आयरनी देयर, बट द फर्स्ट वन आई वुड से वाज अ वेरी गुड एफर्ट बाय राधा यादव। द सेकंड वन सर्टेनली शुड हैव बीन टेकन। शी चर्नी नाउ this time to Kapp, and Kapp has drilled it down to long off to Shefali Verma for a run. This is going to be a very crucial over because Sri Channi has bowled so well prior to this, just 15 runs, you know, 3 overs and 2 wickets. So this will be a crucial over. 28 needed of 17. If they get good number of runs in this over, then they could push it through South Africa. Round the wicket now, Sri Channi. That's fetched from outside off and the slower through the air. The bat went through first. The ball followed after that. And should be leg byes there as it ricochets down to the offside to point. Yes, leg byes signaled by the umpire. And Marizan Kapp is 67 or 41, 133 for 3 now. Two deliveries in the over gone. Chandni from round the wicket. A touch short in land, and they'll go off for the peel. Richard Gales goes off for a stumping. We'll have to wait and watch. What's the final decision? No, I think very clearly the umpire says, no, I've got the verdict. And it's 26 of 15 needed then.
2: 133 team khiladi ke nuksan par Marzan Kapp. सट पर खेल रही है और नादीन डक्लाक जो अभी अभी आई है उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया है, अभी तक 1 रन बनाया, पूरी तरह से छकाया था इस बॉल पर श्री चरनी ने। और अपने इस ओवर की अगली गेंद और इसे इनसाइड आउट मारा है कवर्स बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: Beautifully played, a boundary coming at a very crucial stage, inside out, over the infield, pummeled away, down to the cover boundary for 4, and they get 4 runs at a crucial stage to the South Africans, 22 of 14 needed, Sri Channi to de Klerk now, this time she's bowled it, clean bowled, she was trying to play the scoop, fetch it from outside off, over final leg, and the ball coming much slower off the wicket.

0: man going and disturbing the furniture. Once again, Sri Chandni gets India a crucial wicket, and that's the dangerous Nadine de Klerk. South Africa now 137 for 4.
1: 137 चार रन चार खिलाड़ी के आउट होने पर बाद और अभी अभी आउट होकर गई हैं नादीन डी क्लर्क, जो उसे स्कूप मारना चाहती थी, गेंद विकेट टू विकेट कर दी थी श्री चन्नी और उसका फायदा उन्हें मिला। बोल्ड किया गया, सात गेंदें खेली थी, हालांकि पिछली बॉल पे उन्होंने बेहतरीन कवर ड्राइव मारा था इनसाइड आउट निकलकर चार रन के लिए, लेकिन श्री चन्नी ने अपनी लाइन को सीधा रखा, विकेट टू विकेट जो क्रिकेट के बेसिक्स है उसको फॉलो किया और नतीजा एक अच्छी विकेट उनके नाम पर आती हुई। अब ट्रेन क्लोई ट्रेन विकेट पर आती हुई अगले बल्लेबाज के रूप में और मैरिसन कप एक छोर संभाले हुए सट सट के अपने स्कोर पर 41 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली हैं, 13 बॉलों में 22 रन चाहिए। आशीष चन्नी अपने चौथे ओवर की आखिरी गेंद के साथ बॉलिंग मार्ग पर और सामने ट्रायन तैयार अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और एक अच्छा शॉट उनके बल्ले से निकलता हुआ कवर बाउंड्री के बाहर, चार रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: Went outside the off stump for a change by Sri Chandni and Chloe Tryon rocking onto that back foot, punching it through that arc of the offside, through to the cover boundary for four. Once again, they managed to get a boundary of the last ball, a very crucial boundary in the context of the game. Now, two overs remaining and required run rate is under 10 back. It's 9 runs per over. What is needed is 18 of 12 deliveries. Now they will fancy themselves as well, the South Africans. Cap is on strike. See, 67 of 41. This will be a very important over. Shefali is done. Sri Chandni is done. Deepti has got one over left. Deepti Sharma, in all probability, 18 of 12. Now Deepti Sharma has got loads and loads of experience in these kind of situations. In the death overs, she generally bowls. But I tell you what, at the other end is Marizan Kapp, who's also got loads and loads of experience. And she knows how to hold her nerve in these kind of situations. She's firmly entrenched there. 67 of 41. And here is Deepti Sharma. From out of the stump, now this time it's pummeled away down to backward square leg, straight to Prema Rawat for a single, 17 of 11. India won't mind the singles. What they don't want is boundaries. From South Africa's perspective, couple of boundaries here and they'll be in the driver's seat. What India will want Deepti Sharma to do is, can she get two or three good balls here? Give just the one, maybe two, not the boundaries, not the over boundary. Deepti Sharma, this time Chloe Tryon, that's a good ball, kept low after pitching, and she's pulled it away once again to Jemima Rodrigues. So just the two singles and two deliveries.
1: Deepti Sharma apna pura ka pura jo experience hai unke paas, jo tajurba hai, wo usko jhokti hui aur koshish ye kar rahi hai ki is over mein koi loose ball na kari jaye, koi aisi ball na di jaye jisse aaram se koi stroke lage aur char run mile, aur unka sabse bada focus rahega Marizan Kapp. Ye gend aur use utha ke mara Marizan Kapp ne, सीमा रेखा के बाहर, छह रन।
2: ये लगा आभा का छक्का।
0: गिवन द बॉल अ लॉट ऑफ एयर इन द स्लॉट इन द आर्क, इट वेंट आउट ऑफ द पार्क, दैट्स व्हाट Marizan Kapp से 67 मीटर बाउंड्री एंड आई टेल यू व्हाट, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑल राउंडर्स विमेन्स क्रिकेट हैज एवर सीन इज taking us South Africa within a couple of strokes of victory. 10 needed of 9. Couple of boundaries from here. 1-6 will take South Africa home. What an innings this has been by Marizan Kapp. 74. And that ball from Deepti Sharma, lot of air. She fetched it in the slot as well, as I said. And hard and high, bent over mid-wicket for a 6. Now the Indians, lot of discussions happening, because they know that this is within South Africa's grasp. 10 needed of 9. And Marizan Kapp is on strike, more importantly. Deepti Sharma to Marizan Kapp. On the leg stump, she once again pummeled it. This time it will be cut off by Jemima Rodrigues on the mid-wicket boundary. So 9 needed of 8.
1: 150 रन चार खिलाड़ी के नुकसान पर 18.4 ओवर्स के बाद आखिरी 50 रन 26 गेंदों में साउथ अफ्रीका ने बनाए, पहले 50 56 गेंदों में, फिर 50 30 गेंदों में और आखिरी 50 26 गेंदों में बनाए हैं साउथ अफ्रीका में। और इसमें बहुत बड़ा जो हाथ है वो मैरिजन कप का है जो इस समय 75 रन पर खेल रही है 44 गेंदों का सामना करते हुए। दीप्ति शर्मा अपने ओवर की अगली गेंद, पांचवी गेंद ऑफ स्टंप पे बाहर, उसको निकलकर लेग स्टंप के बाहर निकलकर मारने की कोशिश की, कामयाब हुई, एक रन चुनाने के लिए पर्याप्त है क्योंकि अब सामना करेंगी मैरिजन कप इस ओवर की आखिरी गेंद का। 151 रन चार खिलाड़ी के नुकसान पर 159 रन बनाने हैं साउथ अफ्रीका को ग्रुप ए के इस तीसरे मैच को अपने नाम करने के लिए। लेग स्टंप के बाहर गए और उसे उठा के मारा है, 6 रन, मैरिजन कप के बल्ले से निकला हुआ यह बेहतरीन स्ट्रोक 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर।
2: ये लगा आभा का छक्का।
0: मैरिजन कप, व्हाट एन इनिंग्स हैव यू प्लेड ओवर हियर, 81 नॉट आउट ऑफ 45 डिलीवरीज एंड 7 फोर्स 4 सिक्सेस, व्हाट एन इनिंग्स इन सच अ क्रूशियल गेम, होल्ड्स अ नर्व that went soaring over mid-wicket for 6 and now South Africa just 2 needed off the last over and this must be South Africa's game without any doubt. 81 of 45, Marizan Kapp has played like a champion that she's been and the South African dressing room now wears a very happy look. This was a crucial game for them and boy oh boy have they now taken it to victory, on the doorstep of victory over here literally. 2 of 6, this is South Africa's game for sure. Chloe Tryon will take strike to the first ball of the last over. And the first ball of the last over, that's been steered away to the vacant slip region. Might well carry down to the third mid boundary for 4. South Africa win. Laura Mosala is a happy captain. This is a magnificent win for South Africa. And South Africa have won this crucial game, beating India by 6 wickets at Old Trafford, Manchester. A magnificent victory in a crucial game in the ICC Women's T20 Cricket World Cup. So South Africa win by 6 wickets. And please stay back for our sponsored special program, Player of the Match.
1: 158 रन सात खिलाड़ी के नुकसान पर भारत ने बनाए थे पहले अपने 20 ओवर की बल्लेबाजी करते हुए और पीछा करते हुए 19.1 ओवर की समाप्ति के बाद 161 रन चार खिलाड़ी के नुकसान पर मैरिजन कप ने बनाए 81 रन और बेहतरीन पारी उन्होंने खेली और ये दो अंक अपनी टीम के लिए अर्जित किए।